मीडियम वेव 305.8 मीटर अर्थात 981 किलो हर्ट्स और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की छठवीं तिथि, तदनुसार 27 मई 2026। 5:57 होने को हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को हैं। समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शुभारंभ में सुनिए हरिराम आचार्य रचित देशगान समूह स्वर में।

0: इस भक्ति पद के साथ ही हमारी आज की वंदना अब यहीं संपन्न होती है। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए चिंतन, आलेख श्रीमती रोहिणी चिमोटे का है।
1: यदि प्रेम सच्चा है तो उसे किसी भी नकली दिखावे या आडंबर की आवश्यकता नहीं होती। सच्चा और निस्वार्थ प्रेम हमेशा ही सफल होता है। मनुष्य स्वभाव है कि किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता में वो एन केन प्रकारण जीत दर्ज करना चाहता है। मनुष्य का ये प्रतिस्पर्धी स्वभाव ही कभी कभी उसके विनाश या पतन का कारण बन जाता है। संसार में शायद ही ऐसा कोई जीव होगा जो हार को सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहता हो। साम दाम दंड भेद के सारे शस्त्र असफल हो जाते हैं तो उसके पास हार के विकल्प को स्वीकार करने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं रहता। जीत हार के लिए छोटा बड़ा या अमीर गरीब होना जरूरी नहीं होता। आवश्यकता होती है दृढ़ विश्वास और लक्ष्य को पाने की लालसा की। निश्चल मन से किया गया हर प्रयत्न सफल होता है। राजकुमार वासुसेन एक रियासत के मालिक थे। वे विवाह योग्य हो चुके थे। सारे वैभव और सुंदरता उनके पास थी, इसलिए राज्य की कई युवतियां उनसे विवाह करने को उत्सुक थीं। इसी कड़ी में राजमहल में कार्यरत दासी की पुत्री भी मन ही मन राजकुमार वासुसेन से विवाह करने का स्वप्न अपनी मासूम और चंचल आंखों में समाये हुए थी। परंतु उसकी गरीबी और दरिद्रता उसे इस विवाह से रोक रही थी। राज्य में अनेक बड़े बड़े घराने जिनमें स्वयं मंत्रियों, सेनाध्यक्षों और बड़े बड़े सेठ साहूकारों की कन्याएं कतार में थीं, ऐसे में दासी पुत्री का सपना पूरा होना आसान नहीं था। वासुसेन की मां ने एक दिन विवाह स्वयंवर के लिए राज्य की सारी युवतियों को आमंत्रित किया। नियत तिथि को सैकड़ों युवतियों के साथ ये दासी पुत्री भी उस स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए राजभवन में प्रवेश करने वाली ही थी कि राजमाता ने उसे रोका। यह सारा दृश्य राजकुमार वासुसेन देख रहे थे, क्योंकि दासी पुत्री का प्रेम निश्चल और पाक साफ था। इसलिए उस दासी पुत्री को उसी क्षण राजकुमार के हृदय में स्थान मिल गया था। स्वयंवर प्रारंभ हुआ और वासुसेन ने उपस्थित सभी युवतियों को फूलों के कुछ बीज देते हुए कहा कि इस बीज से आपको अपने गमले में एक सुंदर फूल उगाना है। जिसका फूल सबसे सुंदर होगा वही वासुसेन की रानी बनने की पात्रता रखेगी। सभी युवतियां राजकुमार द्वारा प्रदत्त बीज लेकर चली गईं। इनके साथ दासी पुत्री भी पूरे मनोयोग से उस प्राप्त बीज को गमले में डालकर जतन करने लगी। खाद पानी के साथ ही साथ देखरेख भी की। लेकिन पर्याप्त समय बीतने के बाद भी जब गमले में फूल नहीं खिला तो दासी पुत्री मायूस हो गई। उसे पूरा विश्वास हो गया कि अब उसका विवाह वासुसेन के साथ नहीं हो सकता। बड़ी मायूसी के साथ वो बिना फूल का गमला लिए राजभवन पहुंची। दासी पुत्री ने देखा कि वहां एक से एक सुंदर फूल लिए सैकड़ों राजकुमारियां उपस्थित थीं और वासुसेन से अंतिम परिणाम जानने के लिए उत्सुक थीं। दासी पुत्री को कतई ये भान नहीं था कि उसके निश्चल और पाक प्रेम ने बीज बंटवारे के दिन ही राजकुमार के दिल में प्रवेश पा लिया था। वासुसेन जैसे ही राजभवन में पधारे, उपस्थित सभी कन्याओं की बाँछें खिल उठीं। हर कोई अपने गमले और वासुसेन को देखती। राजकुमार ने परिणाम की घोषणा करते हुए कहा कि यहाँ एक से एक सुंदर फूल खिले हैं, लेकिन वे सब नकली हैं। सिर्फ एक गमला जो बिना फूल का है वही विजयी घोषित किया जाता है, क्योंकि जिस दिन मैंने बीज वितरित किए थे वे सभी निर्जीव थे। सभी ने मुझे धोखा दिया है, छला है। सिर्फ दासी पुत्री ने ही पूरे मनोयोग से मेरे निर्देशों का पालन किया है। शेष सभी अपने असत्य का प्रमाण लेकर आई हैं। देखा आपने, इस तरह दासी पुत्री को उसकी सत्य प्रियता का पुरस्कार राजलक्ष्मी के रूप में मिला। सच्चा और निश्चल प्रेम असत्य और आडंबर पर भारी पड़ा।
0: श्रीमती रोहिणी चिमोटे का लिखा चिंतन अभी आपने सुना। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 6:35 हुए हैं और ये समय है श्री रामचरित मानस कांड का। एपिसोड नंबर 182

श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को वन की मात्र एक झलक दिखाकर लौटा लाने में जैसा राजा दशरथ ने चाहा था सुमंत्र सफल नहीं हुए। शोक और संताप की मूर्ति सुमंत्र महाराज के सम्मुख उपस्थित होकर उस करुण दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। श्री राम ने कहला भिजवाया है कि पिता के अनुग्रह से वन में उन्हें सभी प्रकार से सुख मिलेगा। पिता की आज्ञा का पालन कर वे सकुशल वापस लौट आएंगे। नगर वासियों के लिए उन्होंने विनय पूर्वक अनुरोध किया है कि वही लोग उनके परम हितैषी होंगे जो सब प्रकार से महाराज को सुखी और संतुष्ट रखेंगे। प्रिय अनुज भरत के लिए संदेश है कि राज्याभिषेक हो जाने के बाद भी वे नीति के मार्ग पर चलकर मन वचन और कर्म से प्रजा का पालन और माताओं का सम्मान करें।

0: श्री रामचरित मानस गान अभी आपने सुना। आज की कड़ी में मुख्य स्वर श्रीकांत पारगांवकर का था और संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है, हमारा पशुधन। इस कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय है पशुओं में हीट स्ट्रेस की रोकथाम के लिए प्रबंधन। जानकारी देती हुई डॉक्टर वंदना भगत।
1: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज की हमारी वार्ता का विषय है दुधारू पशुओं की हीट स्ट्रेस से बचाव। छत्तीसगढ़ की गर्म जलवायु को देखते हुए गर्मियों के मौसम में हमारे दुधारू पशुओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, चाहे मौसम सूखा हो या नमी वाला, तब पशु अपने शरीर की गर्मी को सही तरीके से बाहर नहीं निकाल पाते, तब यह स्थिति पैदा हो जाती है। आमतौर पर पशु पसीना और हांफने के जरिए शरीर को ठंडा रखते हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा गर्मी में यह व्यवस्था काम नहीं कर पाती और पशु हीट स्ट्रेस यानी गर्मी के तनाव में आ जाते हैं, इस स्थिति में पशुओं के शरीर का तापमान बढ़ जाता है, सांस तेज चलने लगती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पशु कम खाना खाता है और ज्यादा पानी पीता है। इसका सीधा असर दूध उत्पादन पर पड़ता है। इससे दूध उत्पादन कम हो जाता है, पशुओं की प्रजनन क्षमता घट जाती है और गंभीर हालत में पशुओं की मौत तक भी हो सकती है। हर साल गर्मी के कारण किसानों को दूध उत्पादन में भारी नुकसान उठाना पड़ता है। देसी नस्लों के पशु गर्मी को थोड़ा बेहतर सह सकते हैं, लेकिन विदेशी और क्रॉसब्रीड गायें ज्यादा प्रभावित होती हैं। भैंसों में यह समस्या और ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी त्वचा काली होती है, उनमें पसीने की ग्रंथियां कम पाई जाती हैं, जिससे वे जल्दी गर्मी अवशोषित कर लेती हैं और गर्मी के प्रति ज्यादा प्रभावित होती हैं। पशु गर्मी की एक उचित सीमा तक ही गर्मी को सह सकते हैं। जैसे विदेशी गायों में लगभग 24 से 26 डिग्री सेल्सियस, देसी गायें 33 डिग्री सेल्सियस और भैंसे लगभग 36 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक गर्मी सहन कर सकती हैं। इससे ऊपर के तापमान को पशु का शरीर नियंत्रित नहीं कर पाता और वे हीट स्ट्रेस की स्थिति में आ जाती हैं। गर्मी के तनाव के लक्षण को किसान भाई आसानी से पहचान सकते हैं। हीट स्ट्रेस की स्थिति में पशुओं में निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे तेज और कमजोर नाड़ी का होना, तेज सांसें लेना, पशुओं द्वारा ज्यादा लार टपकाना, शरीर का तापमान बढ़ना, पशुओं की मुंह का सूखना, दूध कम देना, पशुओं का वजन कम होना और कमजोर अवस्था में पशुओं का रहना। गंभीर स्थिति में पशुओं को हीट स्ट्रोक भी हो सकता है, जिससे शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता। अब सवाल यह है कि इससे बचा कैसे जाए। इससे बचने के लिए सबसे पहले पशुओं को ठंडा और छायादार वातावरण देना बहुत जरूरी है। अगर पेड़ की छाया उपलब्ध हो तो सबसे अच्छा है, नहीं तो कम से कम 9 फीट ऊंची सेट बनानी चाहिए, जिससे कि पशु छाया में रह सके। पशु आवास की छत को सफेद रंग से पेंट करना चाहिए या उस पर भूसी डालने से भी गर्मी कम करने में मदद मिलती है। सेट में हवा का आवागमन अच्छा होना चाहिए, इसके लिए पंखे या कूलर का उपयोग किया जा सकता है। गर्मी में पानी का छिड़काव बहुत फायदेमंद होता है। पशुओं के शरीर पर समय समय पर पानी डालते रहना चाहिए और पंखा भी चलाना चाहिए। भैंसों के लिए पानी में बैठना या तालाब में लोटना सबसे अच्छा तरीका है गर्मी से बचने के लिए। इसीलिए भैंसों के आवास में आपको वैल्यूम टैंक की व्यवस्था जरूर करें, जिससे भैंसे पानी में लोट सके। पोषण की बात करें तो गर्मी में पशु चारा कम खाते हैं, इसलिए उन्हें अच्छा और संतुलित आहार देना जरूरी है। हरा चारा, सूखा चारा और संतुलित दाना देना चाहिए। चारा सुबह जल्दी और शाम को देना ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इस वक्त वो अच्छे से चारा खा सकती है। दिन में धूप के समय चराई से बचना चाहिए। पशुओं को हमेशा साफ, पर्याप्त मात्रा में और ठंडा पानी उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। खनिज मिश्रण और नमक भी पशु आहार में देना बहुत जरूरी है, क्योंकि गर्मी में शरीर से खनिजों की कमी हो जाती है। कुछ मामलों में डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट जैसे कि विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट भी दिया जा सकता है, जिससे पशु की सेहत और प्रजनन क्षमता बेहतर बनी रहती है। प्रजनन पर भी गर्मी का असर पड़ता है। पशु की हीट कम दिखाई देती है, जिससे गर्भधारण में दिक्कत होती है। इसलिए सुबह और शाम के समय कृत्रिम गर्भाधान करना चाहिए और हीट का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए। स्वास्थ्य प्रबंधन भी गर्मी के मौसम में बहुत जरूरी है। गर्मी में रोगों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए समय समय पर टीकाकरण और कृमिनाशक दवा देना जरूरी है। पशुओं को साफ पानी ही पिलाएं और गंदे पानी से बचाना चाहिए। अगर कोई पशु ज्यादा गर्मी से प्रभावित हो जाए तो उसे तुरंत छाया में रखें, ठंडे पानी से नहलाएं, पंखा चलाएं और पशु चिकित्सक से संपर्क करें। अंत में यही कहना चाहती हूं कि थोड़ी सी सावधानी और सही प्रबंधन अपनाकर हम अपने पशुओं को गर्मी से बचा सकते हैं, उनका उत्पादन बढ़ा सकते हैं और आर्थिक नुकसान को कम कर सकते हैं। धन्यवाद।
0: पशुओं में हीट स्ट्रेस की रोकथाम के लिए प्रबंधन, ये विषय था हमारा पशुधन कार्यक्रम का, जिसमें जानकारी दे रही थी डॉक्टर वंदना भगत। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में आइए अब आपको जानकारी दें आज के शेष कार्यक्रमों की।

स्पोर्ट्स केन रात 8:30 पर और चर्चा का विषय है रात 9:30 पर। इन दोनों ही कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर सुनिएगा अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:05 पर।

आपके पत्र श्रोता पत्रों पर केंद्रित ये कार्यक्रम होगा आज सुबह 8:30 पर और गांधी चर्चा में आज सुबह 9:00 सुनिएगा महात्मा गांधी के संस्मरण मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ।

सुगम संगीत में सुबह 9:40 और रात 8:15 पर कलाकार होंगे चंद्रमोहन वर्मा। इसी कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे बेगम अख्तर को और शाम 6:30 पर सुगम संगीत के ही कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे छाया चंद्राकर के स्वर में कुछ रचनाएं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुबह 10:00 सुनिएगा पंडित बुधादित्य मुखर्जी का सितार पर बजाया राग अहीर भैरव और रात 10:30 पर इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग मारवा। ईमेल भेजो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ, ये कार्यक्रम होगा दिन में 11:05 पर। छत्तीसगढ़ी लोक गीतों में पर्यावरण चेतना, ये रूपक आप सुनेंगे आज दोपहर 1:30 पर। इस रूपक के लेखक हैं डॉक्टर पीसी लाल यादव और प्रस्तुतकर्ता होंगे नेमीचंद साहू। युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी में आज शाम 5:10 पर आजकल का विषय रहेगा टाल मटोल की आदत को छोड़ें, क्रमपत्र मिला और युगल गीत। चौपाल में शाम 7:21 पर आज की बात में होगा पत्रोत्तर कार्यक्रम चिट्ठी मिलिस और होगी फूलों की सब्जियां, स्वाद पोषण और सेहत का त्रिकोण, इस विषय पर चर्चा। और आज की सलाह में कद्दू वर्गीय फसलों में कीट एवं रोग प्रबंधन विषय पर सलाह देंगे डॉक्टर एस एम अली हुमायूं।

प्रायोजित कार्यक्रम NCERT दोपहर 12 बजे और हमर हाथी हमर गोठ शाम 5 बजे। चित्रपट संगीत सुनिएगा सुबह 9:15 पर, 10:30 पर, दोपहर 1:05 पर, 2 बजे, 2:30 पर, शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9:15 पर। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:55 होने को हैं। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: पूर्व आईपीएस अधिकारी इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केन्द्रेण अनुप्रवेशेण अन्यैः कारणैः च जनसांख्यिकीय परिवर्तनस्य समाह्वानान् निवारणाय उच्चस्तरीय समित्याः निर्माणं विहितम्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः ह्यः अवदत् यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य पूर्व न्यायाधीशः प्रकाश प्रभाकर नावलेकरः समित्याः अध्यक्षः भविष्यति। जनगणना आयुक्तेन सह पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तवः, अर्थशास्त्री डॉक्टर समीका रवि इत्येषा च समित्याः सदस्य रूपेण नियुक्तः अस्ति। गृहमंत्रालयस्य संयुक्त सचिवः एकः वैदेशीयः समित्यां सदस्य सचिव रूपेण कार्यं करिष्यति। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन उक्तं यत् ड्रोन यन्त्रैः मादकद्रव्याणां शस्त्राणां च तस्करणं निवारयितुं अग्रिमेषु षण्मासेषु एव सर्वकारः ड्रोन अवरोधप्रणाल्याः नियोजनं प्रचालयिष्यति। राजस्थानस्य बीकानेर जनपदस्य सांचू सीमा पोस्ट इत्यत्र बीएसएफ सैनिकान् संबोधयन् सः अवदत् यत् यद्यपि सीमापारात् उद्भूताः विभीषिकाः महत्वपूर्णानि एव सन्ति, तथापि देशस्य अन्तः एतादृशानां विभीषिकानां साहाय्यं कुर्वताम् आन्तरिकतत्त्वानां विषयेऽपि समानं ध्यानं दातव्यम्।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेश मंत्रिणा पेनी वोंगह इत्येषा ह्यः नवदिल्ल्यां प्रधानमंत्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मिलितवती। श्रीमोदी रक्षा व्यापार प्रौद्योगिकी इत्यादिषु क्षेत्रेषु वर्धमानस्य भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक सामरिक सहभागित्वस्य विषयेऽपि आपूर्ति श्रृंखलायाः स्थितिस्थापकतायाः विषये च चर्चितवान्। प्रधानमंत्री अवदत् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशौ स्वतंत्रं मुक्तं सुरक्षितं समृद्धं च हिंद प्रशांत क्षेत्रस्य कृते निरन्तरं कार्यं करिष्यतः। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः सुश्री वोंग इत्यनया सह 17वें विदेशमंत्रिणां फ्रेमवर्क संवादेत्यस्य सह अध्यक्षतां कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् ते हिंद प्रशांत प्रदेशे पश्चिम एशियायाः स्थितिम् अन्येषु क्षेत्रीय वैश्विक बहुपक्षीय विषयेषु च मतानाम् आदान प्रदानं कृतवन्तः। भाजपेति दलाध्यक्षः नितिन नवीनः ह्यः नवदिल्ल्याः दलस्य मुख्यालये नो बीजेपी इति उपक्रमस्य अन्तर्गतं 12 देशानाम् अभियानप्रमुखैः सह वार्तालापम् अकरोत्। श्रीनवीनः ब्राजील, जर्मनी, इण्डोनेशिया, मलेशिया, मॉरिसस, न्यूजीलैंड, सेशेल्स, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम इत्यादीनां देशानां प्रतिनिधीनां स्वागतम् अकरोत्, तथा च भाजपेति दलस्य यात्रायाः विचारधारायाः संघटनात्मक शक्तेः लोकसेवायाः प्रतिबद्धतायाः च विषये अवधानं प्रदत्तवान्। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् भारत कनाडा आर्थिक सहभागित्वस्य अग्रिमः अध्यायः विश्वासेन प्रेरितः भविष्यति, येन द्वयोः राष्ट्रयोः संयुक्त समृद्धिः भविष्यति। गतरात्रौ कनाडा देशस्य टोरेंटो नगरे राजनैतिक पुनरुत्थापनात् वाणिज्यिक वितरण पर्यन्तम् इति मंत्रिस्तरीय पूर्ण सम्मेलनस्य उद्घाटन सत्रं संबोधितवान् इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
4: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
3: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ विदेश मंत्रियों की 17वें द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। सीबीएसई ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। बोर्ड ने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को अपनी मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी और इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर, प्रस्तुत कर रहे हैं देवव्रत भगत।

नमस्कार रायपुर, मैं हूं देवव्रत भगत, लेकर आया हूं दिन की सबसे प्यारी शुरुआत नमस्कार रायपुर के साथ। उफ, रायपुर की गर्मी। सुबह के कुछ घंटे बीतते ही धूप अपने तेवर दिखाने लगती है। भाई, तापमान 45 डिग्री के जो करीब पहुंच रहा है और दोपहर की सड़कें जैसे आग उगलती हुई महसूस होती है। इन दिनों शहर में हर दूसरा इंसान ये कहता मिल जाएगा कि भाई गर्मी बहुत है, कूलर एसी लगातार चल रहे हैं, ठंडे पानी की बोतलें साथ रखी जा रही है साथियों, और लोग कोशिश कर रहे हैं कि दोपहर में कम से कम बाहर निकलना पड़े। लेकिन सुबह का वक्त है और ये वक्त अपने साथ थोड़ा सुकून लेकर आता है। हल्की हवा, कम शोर और दिन भर की भागदौड़ शुरू होने से पहले कुछ शांत पल, और शायद ऐसे ही शांत पलों में दिल भी अपना कोई राग छेड़ देता है। एक ऐसा राग जिसमें अपनापन हो, प्यार हो और मीठा एहसास हो। फिर मन भी धीरे से गुनगुनाने लगता है, प्यार का राग सुनो रे।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: 10वीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
4: दोस्तों, कहते हैं हर दिन अपने साथ कुछ कहानियां लेकर आता है। कुछ कहानियां बदलाव की, कुछ नई शुरुआत की, और कुछ ऐसे लोगों की जो वक्त गुजर जाने के बाद भी याद रह जाते हैं। आज के इतिहास में भी कुछ ऐसे ही किस्से दर्ज हैं। सबसे पहले आज देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है। और अब बात उस दौर की जब शब्दों को सोच की ताकत माना जाता था। साल 1994 में आज के ही दिन जन्म हुआ पदमलाल पुन्नालाल बख्शे का। हिंदी साहित्य में उनकी पहचान एक शानदार निबंधकार और आलोचक के रूप में बनी, और उन्होंने कहा था कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका विश्वास होता है, और शायद यही विश्वास देश को विज्ञान, तकनीक और नए दौर की तरफ आगे बढ़ाता है। साल 2010 में भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में धनुष और पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, यानी देश में रक्षा तकनीक में अपनी ताकत का एक और मजबूत संदेश दुनिया को दिया। और साल 2011 में तकनीक की दुनिया में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। गूगल ने ऐलान किया कि अब लोग केवल शहर नहीं बल्कि गली नुक्कड़ तक को इंटरनेट में देख सकेंगे, यानी दुनिया अब पहले से कहीं ज्यादा करीब महसूस होने लगी थी। इतिहास की यही बातें बताती है कि इंसान हमेशा नई चीजों को देखने, समझने और उनके पीछे छिपे राज से पर्दा हटाने की कोशिश करता है, और अब दिल भी यही गुनगुनाने लगता है।

0: साथियों नमस्कार। रायपुर में आज बात छत्तीसगढ़ की एक ऐसी सेवा यात्रा की जिसे हाल ही में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर रामचंद्र त्रयंबक गोडबोले और उनकी पत्नी सुनीता गोडबोले को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। दंतेवाड़ा और अबूझमाड़ जैसे दूरस्थ इलाकों में वर्षों तक लोगों की सेवा करने वाले डॉक्टर गोडबोले का सफर समर्पण, संघर्ष और मानवता की मिसाल माना जाता है। इस पूरे सफर में उनकी पत्नी सुनीता गोडबोले भी लगातार उनके साथ खड़ी रहीं। इसी सेवा यात्रा, चुनौतियों और अनुभवों को लेकर हमने डॉक्टर रामचंद्र त्रयंबक गोडबोले से खास बातचीत की।
1: साथियों नमस्कार। रायपुर में आज हमारे साथ हैं पद्मश्री सम्मान से सम्मानित डॉक्टर रामचंद्र त्रयंबक गोडबोले। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर गोडबोले और उनकी पत्नी सुनीता गोडबोले को दंतेवाड़ा और अबूझमाड़ जैसे दूरस्थ और नक्सल प्रभावित इलाकों में करीब 40 वर्षों तक निस्वार्थ चिकित्सा सेवा देने के लिए सम्मानित किया है। डॉक्टर गोडबोले, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार
1: जी। सबसे पहले तो आपको पद्मश्री सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाई। जब इस सम्मान की खबर मिली तब सबसे पहले आपका रिएक्शन उस समय कैसा था? क्या आपको लग रहा था कि इतने समय तक कि आपने जो सेवा की वो सफल रही?
2: हाँ नहीं, सेवा करते समय तो हमको कोई किसी चीज की अपेक्षा रख के तो सेवा कर नहीं सकते, वो तो संभव नहीं है।
1: जी जी।
2: लेकिन और कभी ऐसा, कोई कोई लोग पूछते थे कि भाई आपको पद्मश्री मिलनी चाहिए। हाँ मिलनी चाहिए मिलनी चाहिए, उसका कोई मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसा कोई हमारा ये नहीं है
1: जी।
2: लेकिन इस साल हमको ये पद्मश्री मिलेगी तो मुझे तो बिल्कुल ही ये नहीं था, मेरे मन में कोई कल्पना भी नहीं थी हमको ये मिलने वाला है सम्मान ऐसा। लेकिन जब मिला तो बड़ा आश्चर्य हो गया, और वैसा भारत माता ने हमको ये उपहार के रूप में दिया है, इसलिए उसका आनंद अलग ही प्रकार का है और वो अविस्मरणीय है, जीवन पर कभी भूल नहीं पाएंगे।
1: बिल्कुल। और आपने अपने जीवन के करीब 40 साल दंतेवाड़ा और अबूझमाड़ जैसे कठिन इलाकों में सेवा को समर्पित किए, आखिर इस रास्ते को चुनने की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली और कैसे आप अबूझमाड़ और दंतेवाड़ा तक पहुँचे?
2: नहीं, मैं मेडिकल स्टूडेंट था उस समय, लाइब्रेरी में मैंने डॉक्टर अल्बर्ट श्वाइजर उनके आत्मकथन में पढ़ा था अंग्रेजी में।
1: जी जी।
2: तो वो डॉक्टर अल्बर्ट श्वाइजर यूरोप के थे और उन्होंने पूरा जीवन अफ्रीका के आदिवासियों के बीच में बिताया और चिकित्सा सेवा प्रदान की, उनको नोबेल पुरस्कार इसके ऊपर मिला।
1: जी।
2: तो वो मुझे पहली प्रेरणा रही। मेरी माँ की सेवा भावना जो थी उसका भी कुछ अंश मेरे अंदर आया होगा।
1: बिल्कुल। और जब आपने वहां पर काम किया तब उस समय स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति वहां पर किस तरह की थी, और कोई ऐसा अनुभव जो आज भी आपके दिल को छू जाता है?
2: हाँ नहीं, स्वास्थ्य सेवा उस समय तो थी नहीं, थोड़ा मेरे कम थी उस समय, और अबूझमाड़ का क्षेत्र भी वैसा ही था, इसलिए

0: हम लोग शुरुआत में तो काफी मुश्किल तो हो गई, लेकिन जब जनजाति समाज के महिलाओं के साथ ही मैं था, उनके साथ से हम लोग काम करने लगे, मैं और मेरी पत्नी, तो हमको
1: जी
0: थोड़ा आसान हो गया, कोई इतना मुश्किल लगा नहीं। बाकी स्वास्थ्य की सुविधा पहुंचाना तो बहुत मुश्किल है। अबुझमाड़ ये जो हमारा, मैं बारसूर केंद्र में अभी भी हूँ, दंतेवाड़ा जिला के, तो
1: जी जी
0: उसमें तो वो अबुझमाड़ के लिए ही वो केंद्र खड़ा किया गया।
1: यहाँ पे एक जो सुविधा थी, क्योंकि दूरस्थ इलाका था, दूसरी बात ये भी कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी रहा है, तो आसान नहीं रहा होगा यहाँ पर काम करना। तो क्या कभी डर या फिर ऐसी कठिन परिस्थितियाँ वहाँ पे बनी जो जिसने कभी ऐसे लगा हो कि अब पीछे हट जाएं?
0: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नक्सलवाद ये जो विचारधारा है,
1: जी जी
0: उससे हमको कभी कोई तकलीफ नहीं हुई,
1: जी
0: कभी उन लोगों ने विरोध भी नहीं किया, किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं आया, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारा प्योरली सेवा कार्य है,
1: जी
0: और आदिवासी जो वनवासी जो लोग हैं, उनकी बीमारी में और ठीक होने में उनको मदद करना है, तो जगदलपुर ले जाना है, रायपुर ले जाना है, दंतेवाड़ा ले जाना है, बीजापुर ले जाना है, हम पहले से करते आ रहे हैं। और कुपोषण के बच्चों के भी बीच में भी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, तो वो सारा काम हमारा होने के कारण शायद हमको किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं हुई। नहीं,
1: सुनीता जी भी एक महिला डॉक्टर और साथी के रूप में
0: वो
1: आपके
0: डॉक्टर
1: साथ
0: नहीं है,
1: से।
0: मेरी
1: जी
0: पत्नी
1: जी
0: जो डॉक्टर नहीं, वो MSW है, वो
1: अच्छा
0: मेरे
1: अच्छा
0: महिलाओं के बीच में उसका काम चलता है। हाँ
1: जी, तो एक साथी के रूप में लेकिन इस पूरे सफर में आपके साथ रही सुनीता जी, तो
0: हाँ
1: आपका अनुभव उनके साथ कैसा रहा? परिवार और सेवा के बीच जो संतुलन है वो किस तरह से आपने बनाया?
0: नहीं, ऐसा है, दोनों हम लोग विवाह करके ही 1 सप्ताह के अंदर हम बस्तर में आए, तो पहले दिन से ही यहाँ से कठिनाई जो थी, उन जो दोनों के साथ साथ हम लोग सामना किया, जो जो भी समस्या है उसका। अब क्या है, जहाँ मैं मेरी कई क्षमता कम लगती है, मुझे कोई असुविधा पैदा होती है, ऐसे समय पत्नी उसको भर लेती है, वो उसका इलाज ढूंढती है, कोई
1: जी
0: मार्ग निकाल लेती है, और उसका कभी प्रॉब्लम आ गया तो मैं इसमें करता हूँ, तो दोनों का सहयोग से ही हम परस्पर पूरक है दोनों, ऐसा मुझे लग रहा है। मेरी पत्नी के मन में पहले से ये था कि जनजाति समाज के लिए ही काम करना है, ये
1: जी
0: उसकी पहले से निष्ठा थी, तो
1: जी
0: उसको उसी प्रकार का ही पति चाहिए था कि जो जनजाति समाज में ही हमेशा काम करते रहे। हाँ
1: बिल्कुल। तो अब क्योंकि नई पीढ़ी के डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, और अभी हमारे जो नमस्कार रायपुर के श्रोता हैं वो भी ये सुन रहे हैं, तो उन्हें
0: हाँ
1: आप अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं इतना ही संदेश देता हूँ कि हम जो क्या बोलते हैं उसको, हम लोग अच्छा कुछ काम करते हैं
1: जी
0: तो अच्छे कर्म का फल अवश्य मिलता है, ये मेरे जीवन में मैंने अनुभव पा लिया। हम लोग ये काम कर रहे थे तो कितने बार निराशा का प्रसंग भी आता है, ऐसा लगता है कि जनजाति समाज भी नहीं बदल रहा है, शहर के लोग भी जितने हमको मदद करनी चाहिए उतने थोड़े आगे नहीं आ रहे हर चीज में,
1: जी
0: तो
1: जी
0: ये हम मुझे कभी कभी हम लोग निराशा का ये आता था, फिर भी हम लोगों ने काम करना नहीं छोड़ा, करते रहे करते रहे करते रहे, तो सत्कर्म का फल अवश्य मिलता है, देर से मिलेगा जल्दी मिलेगा कुछ भी हो, लेकिन अवश्य मिलता है, ये मैंने अपने अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ, केवल कहीं पढ़ा लिखा कोई बताया ऐसा बात नहीं है।
1: बिल्कुल डॉक्टर गुडबोले, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: अच्छा, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपसे बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, साइबर अपराध से जुड़ी घटनाओं की खबरें प्रतिदिन हमें पढ़ने और सुनने मिल रही हैं। साइबर अपराध से हम कैसे बच सकते हैं, हमें मोबाइल के उपयोग के समय किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, इस संबंध में बता रहे हैं रायपुर पुलिस कमिश्नर की ओर से एडिशनल DCP क्राइम रायपुर।
1: कुछ प्रमुख साइबर फ्रॉड के तरीकों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। सबसे प्रमुख तरीका में से एक है फेक वेबसाइट स्कैम। इसमें ठग असली वेबसाइट की तरह दिखने वाले हूबहू नकली वेबसाइट बना लेते हैं। इनका URL ओरिजिनल वेबसाइट की तरह ही दिखाई देता है, जैसे flipkart.com की जगह लिखा रहेगा flipkart.offers.in। इस प्रकार के वेबसाइट में बहुत कम कीमत में सामान बिक्री करने के लिए उपलब्ध होता है, या किसी बहुत फेमस होटल्स के ओरिजिनल वेबसाइट की तरह नकली साइट तैयार की जाती है और सस्ते दर पर रूम की बुकिंग होने का ऑफर दिया जाता है। जैसे ही आप ऐसे फर्जी वेबसाइट पर कोई सामान लेते हैं या होटल्स के रूम को बुक करते हैं और आप पेमेंट करते हैं, आपके साथ ठगी हो जाता है। आपके निजी बैंकिंग संबंधी जानकारियाँ भी चोरी होती है। आप सतर्क और जागरूक रहें, हमेशा आधिकारिक एप्लीकेशन या सुरक्षित साइट पर ही जाकर शॉपिंग करें या किसी होटल्स की रूम की बुकिंग करें। फिर भी किसी प्रकार की ठगी होती है तो आप 1930 पर कॉल कर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं।
2: दोस्तों, आज विश्व आपातकालीन चिकित्सा दिवस है। ऐसे में एम्बुलेंस, मेडिकल स्टाफ, नर्स और डॉक्टरों की भूमिका कितनी अहम होती है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन आपातकालीन स्थिति में केवल अस्पताल ही नहीं बल्कि आम नागरिक भी किसी की जान बचाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। सड़क हादसे हो, अचानक तबीयत बिगड़ जाए या किसी को तुरंत मदद की जरूरत पड़े, ऐसे वक्त में सही समय पर की गई छोटी सी मदद भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और इन्हीं विषयों को लेकर हमने खास बातचीत की है रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के CMO डॉक्टर विनय वर्मा से। आइए सुनते हैं। साथियों, विश्व आपातकालीन चिकित्सा दिवस के मौके पर आज हम बात करेंगे इमरजेंसी मेडिकल सेवाओं और लोगों की जागरूकता की। हमारे साथ हैं डॉक्टर विनय वर्मा, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर में CMO हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
3: नमस्कार रायपुर, धन्यवाद आकाशवाणी का
2: जी। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे यही जानना चाहेंगे कि इमरजेंसी की ये सर्विस है और ऐसे में सबसे ज्यादा किस तरह के केस आते हैं, क्योंकि आप इमरजेंसी के समय रहते हैं, उस वार्ड में रहते हैं।
3: देखिए, अभी जो सीजन चल रहा है, गर्मी का सीजन चल रहा है और अभी नौतपा चल रहा है
2: जी।
3: नौतपा में अभी मोस्टली जो मरीज आ रहे हैं हमारे पास में
2: जी,
3: वो ये तो हीट स्ट्रोक के हैं और लूज मोशन और डायरिया, डिसेंट्री, वॉमिटिंग्स, ऐसे पेशेंट आ रहे हैं
2: जी।
3: अब बात तो होती है आपातकालीन चिकित्सा की, तो आपातकाल में किसी भी प्रकार की मतलब इमरजेंसी कभी भी आ सकता है इसमें
2: जी।
3: जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, डिलीवरी हो गया, इसको आपात चिकित्सा में ही हम लेंगे। जैसे डिलीवरी वाले को भी हम उसमें आपात चिकित्सा में गिनते हैं, क्योंकि इसमें माँ और बच्चे का दोनों का जीवन रहता है
2: जी।
3: और साथ साथ किसी को पेट दर्द हो गया, किसी को आजकल देखते हैं कितना क्राइम बढ़ गया है, तो क्राइम वाले केसेस हो गए, स्टेब इंजरी हो गया, चाकूबाजी का केस हो गया, नशे वाले लोग आते हैं रात में कभी कभी आपात चिकित्सा में
2: जी।
3: तो ये सभी जो है आपात चिकित्सा के अंदर में आते हैं और इसके लिए पूर्णतः सरकार व्यवस्था करके रखी रहती है सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और प्राइवेट हॉस्पिटल वाले प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ये सब चीज बना के रखे रहते हैं।
2: बिल्कुल। और ऐसे में जो इमरजेंसी सर्विस देने वाले हैं, उनकी किस तरह की यहाँ पर भूमिका होती है?
3: देखिए, इमरजेंसी सर्विस का नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि इमरजेंसी में आपको सेकंड में रिएक्ट करना पड़ता है। जैसे कि हार्ट अटैक वाले कोई मरीज आए, आपको इंस्टेंट उसको चेस्ट पेन को डायग्नोस करना है
2: जी जी।
3: और डायग्नोस करके उसको ट्रीटमेंट करना है। तो इसमें जो आपात चिकित्सा में जितने भी डॉक्टर्स हैं और नर्स हैं, वार्ड बॉय हैं, सबकी अहम भूमिका होती है आपात चिकित्सा में रिएक्ट करने की, क्योंकि एम्बुलेंस से उतरने से लेके डॉक्टर तक पहुंचने तक में भूमिका, सबसे ज्यादा भूमिका होता है तो वार्ड बॉय और नर्स लोगों का होता है।
2: बिल्कुल। और कई बार जो इमरजेंसी की स्थिति होती है, तो ऐसे समय में गोल्डन आवर जो होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है?
3: जी, जैसे कि मैंने अभी बताया कि गोल्डन आवर्स का मतलब, मैं तो एक एक सेकंड को गोल्डन आवर्स मानता हूँ। जैसे कि किसी का हार्ट अटैक आने वाला, हार्ट अटैक उसको चेस्ट पेन हो रहा है और उसको हम इंस्टेंट अगर ईसीजी करके डायग्नोस करके उसको लोडिंग डोज दे दें तो उसका जान बच जाता है। वैसे तो गोल्डन आवर को अपन 30 मिनट 45 मिनट भी ऐसे भी होता है, लेकिन मैं हर एक सेकेंड को आपात चिकित्सा में गोल्डन आवर के रूप में मानता हूँ और वैसे उस हिसाब से मैं काम करता हूँ।
4: कई बार ये भी देखने को मिलता है कि आपात स्थिति में कोई मरीज होते हैं तो घबरा कर लोग अक्सर मरीजों को गलत तरीके से उठाते हैं या फिर पानी पिलाने लगते हैं, तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिससे आम लोगों को बचना चाहिए?
3: देखिए, जो फर्स्ट एड होता है, जो फर्स्ट एड गलत मिलने के कारण ही 90% लोगों का मतलब जान चला जाता है। जैसे हम रोड में देखेंगे कि कोई तड़पते जो एक्सीडेंट होकर गिर जाता है
4: जी।
3: वो कभी देखोगे आप अपने दिनचर्या लाइफ में कि वो पानी पानी करके मांगता है
4: जी जी।
3: तो वो एक्चुअल में पानी पीने पिलाने के कारण से डेथ हो जाता है, उसका फेफड़े में पानी चला जाता है क्योंकि वो सेमी कॉन्शियस सिचुएशन में रहता है और वो फेफड़े में चला जाता है पानी और एस्पिरेट करके खत्म हो जाते हैं। तो फर्स्ट एड और जैसे कि रिएक्ट करना है उसी में ही मतलब 90% लोगों का डेथ होता है। स्पाइन इंजरी वाले को हम अगर गलत तरीके से हैंडल कर लिए तो उसका लाइफ टाइम वो पैरालिसिस में चला जाएगा, सुनने पड़ जाएगा उसका पैर।
4: बिल्कुल, यानी फर्स्ट एड और जो सीपीआर की बात कह रहे हैं आप कि उसको लेकर के अभी जागरूकता कम ही है।
3: कम ही है जी
4: जी और अभी कई बार ये भी होता है कि जब इमरजेंसी की बात आती है तो मरीजों के जो परिजन होते हैं वो भी घबरा जाते हैं, तो ऐसे में उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
3: जी वही अभी हम बात किए, जैसे कि हम एक बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में हम किसी को ज्ञान देंगे, तो जैसे मेरे घर में मेरे माता पिता हैं, वो तो डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो भी जब एक 5 मिनट 10 मिनट का सेशन अगर कहीं पे भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल में सुन लेंगे तो उनको भी कल की डेट में लगेगा कि हाँ चेस्ट पेन हो रहे हैं। तो हम एक देखते हैं किसी घर में छाती में अगर दर्द होता है तो लोग उसके पैर को ऐसे मालिश करना चालू कर देते हैं और भीड़ बढ़ा के उसको और क्या हुआ करके डरा डालते हैं
4: जी जी।
3: तो अगर हम ये सब चीज बेसिक शिक्षा हर लोगों को अगर देंगे तो निश्चित ही सभी लोगों का जान बचाया जा सकता है और ये फर्स्ट एड में इसको लिया जा सकता है।
4: और अगर कोई व्यक्ति घर में अकेला हो और अचानक तबीयत बिगड़ जाए तो सबसे पहले कौन सा कदम जो है वो उठाया जा सकता है?
3: सबसे पहले तो आप अपने निश्चित दूरी में जो भी हॉस्पिटल्स है उसका आप इमरजेंसी नंबर रखिए और साथ साथ गवर्नमेंट का नंबर रखिए। आज सरकार आजकल 112 नंबर को अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चला रही है,
4: तो
3: 112 में हम डायल कर सकते हैं, 108 में डायल कर सकते हैं। मतलब आप सरकारी हॉस्पिटल के साथ ही साथ अपना प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी जो एम्बुलेंस सेवा है उसका नंबर आप रखे रहें, कभी भी कुछ हो रहा है इंस्टेंट आप फोन कर लीजिए। स्वास्थ्य सेवाओं में आजकल सरकार कभी भी कोई देरी नहीं कर रही है, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी कोई देरी नहीं करता, इंस्टेंट आपके घर में एम्बुलेंस पहुंच जाता है। तो ये जो चीजें हैं हमारे दिनचर्या में उसको लाना चाहिए कि हम इमरजेंसी में क्या क्या करेंगे।
4: अब अंत में विश्व आपातकालीन चिकित्सा दिवस के मौके पर श्रोताओं को क्या संदेश देंगे?
3: आपातकालीन, वैसे तो हम चाहते हैं, हम सभी डॉक्टर चाहते हैं कि किसी को आपातकालीन की जरूरत ही मत पड़े, लेकिन हम ये चाहते हैं जैसे कि जितने भी छत्तीसगढ़ की जनता है, भारत देश की जनता है, सभी को मैं ये बोलूंगा कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा के ड्राइविंग करें, हेलमेट लगा के ड्राइविंग करें, नशे में गाड़ी कभी ना चलाएं और अपने सेहत का ख्याल हमेशा अच्छे से रखें। बाहर का खाना खुला भोजन ना करें, अभी नवतपा का सीजन चल रहा है और डायरिया डिसेंट्री का सीजन चल रहा है, तो ये सब चीज सावधानियां आपको बरतनी है। विश्व आपातकालीन दिवस में यही मेरा संदेश रहेगा।
4: बिल्कुल डॉक्टर वर्मा, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
3: धन्यवाद।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चन ले सवलग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
3: 10वीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
4: साथियों, आजकल युवाओं के बीच नौकरी के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस को लेकर भी काफ़ी चर्चा हो रही है। ऐसे में केंद्र सरकार की पीएम इंटर्नशिप योजना युवाओं के लिए नए अवसर लेकर आई है। इसी योजना रोजगार के अवसरों और युवाओं को मिलने वाली ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस को लेकर हमने बात की युवाओं से लिए स्किल डेवलपमेंट के अवसर को लेकर के। अर्पित तिवारी, स्टेट डायरेक्टर माय भारत यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट से।
5: दोस्तों, पीएम इंटर्नशिप योजना युवाओं को देश की बड़ी कंपनियों और संस्थानों में काम सीखने और अनुभव हासिल करने का मौका दे रही है। इस योजना को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अर्पित तिवारी, स्टेट डायरेक्टर माय भारत यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
6: बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी आज के यहाँ पे आके बहुत खुशी हो रही।
5: सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि पीएम इंटर्नशिप योजना है क्या?
6: देखिए, प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और के माध्यम से चलाई जा रही है और इसे माय भारत पोर्टल के ऊपर डाल के इसे युवाओं के साथ जोड़ा जा रहा है। ये कहना सही रहेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और माय भारत के संयुक्त तत्वाधान में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना, उन्हें नई और बढ़िया कंपनी के साथ जोड़ना, उनके अनुभव को एक नया आयाम प्रदान करना, यही प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप के पीछे सोच है और यही हमारे मुख्यमंत्री जी का भी मानना है कि युवाओं को हम अधिक से अधिक रोजगार से जोड़ सकें।
5: सर, इस योजना का सबसे बड़ा फायदा युवाओं को किस रूप में मिलेगा और किस तरह से मिल सकता है?
6: देखिए, युवाओं के लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि उन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों में अनुभव प्राप्त होगा। साथ ही साथ ये पेड इंटर्नशिप है, इसमें न्यूनतम 9,000 रुपए की राशि प्रति माह युवाओं को मिलेगी। साथ ही साथ 6,000 रुपए का ज्वाइनिंग बोनस भी मिलेगा, जो दो किश्तों में मिलेगा, 3,000 रुपए ज्वाइन करते से ही और 3,000 रुपए बचे हुए 3 महीने बाद। तो ये युवाओं को रोजगार से भी जोड़ रहा है, अनुभव भी उन्हें दिला रहा है, साथ ही साथ उनकी आर्थिक मदद भी कर रहा है। और इसमें जो कंपनियां हैं वो पीएसयू है, प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है।
5: सर, मेरा सवाल ये है कि अगर किसी युवा को इस योजना के लिए आवेदन करना हो तो वो किस तरह से कर सकता है, कैसे जुड़ सकता है?
6: देखिए, ये अगर कोई भी युवा को प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के माध्यम से जुड़ना है तो माय भारत पोर्टल में जाके बहुत ही छोटा और सरल तरीके से रजिस्ट्रेशन अपना करा के वहाँ पे जो वॉलेंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज है वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकता है, जो उन्हें सीधे पीएम इंटर्नशिप पोर्टल के ऊपर लेके जाएगी। वहाँ पे वो अपना छोटी सी प्रोफाइल बना सकता है, आधार कार्ड से अपने आप को वेरीफाई कर सकता है और जो भी वहाँ पे वैकेंसी उपलब्ध है।
5: इस दौरान किस तरह का अनुभव युवाओं को होगा और इसका आगे क्या फायदा मिलेगा इस पूरे प्रशिक्षण का?
6: देखिए, ये एक पेड इंटर्नशिप है, अगर वो इस कंपनी में, इन कंपनियों में काम करते हैं तो उन्हें वर्क एक्सपीरियंस उन्हें मिलेगा। वर्क एक्सपीरियंस जो है रियल टाइम बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स के साथ करेंगे तो वो उन्हें अपने करियर डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी सहयोग करेगा। और 9 महीने 6 महीने का समय भी कम नहीं होता है, इसमें अत्यधिक समय रहेंगे तो उनके अवसर भी आगे खुलते रहेंगे, क्योंकि आजकल हर कंपनियां अनुभव के आधार पे जो है नौकरियां देती हैं। तो एक अनुभव उनका बेस बनेगा, कंपनियों में काम करने के लिए उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, उनके करियर प्रोग्रेशन में बहुत ज्यादा सकारात्मक फायदा उनको मिलेगा।
5: जी सर, कई युवा ऐसे भी होते हैं जो डिग्री पूरी करने के बाद भी नौकरी के माहौल को लेकर के उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते, तो क्या ये योजना उस गैप को कम करने में मदद करेगा?
6: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो पीएम इंटर्नशिप स्कीम है ये 18 से 25 वर्षीय युवाओं के लिए ही बनाई गई है
4: जी,
6: और
4: जी.
6: इसमें जुड़ना बहुत ही सरल और आसान तरीका होता है, और ये हमारे छत्तीसगढ़ में ही कई जगह पे निकली है, NMDC में है, रायगढ़ में है, बिलासपुर में है, कोरबा में है, रायपुर में है. तो सेल्स मार्केटिंग से लेके इंजीनियरिंग तक, फार्मेसी से लेके BBA तक, सभी विषयों में, स्ट्रीम्स में ये इस तरीके की स्कीम्स के अंतर्गत रिक्तियां निकली हैं, पद निकले हैं, जिसमें युवा अपने जो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर सकता है, काम को देख भी सकता है, समझ सकता है, सीख सकता है, तो उसका में कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और उसकी पर्सनालिटी भी डेवलपमेंट में भी सहायक रहेगी, जिससे आगे चल के अगर वो कहीं दूसरी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई भी करता है तो उसका एक अनुभव उसके काम आएगा, और जो उसको आगे मदद करेगा, दूसरों से उसको एक अलग पहचान भी प्रदान करेगा.
5: जी बिल्कुल, क्योंकि कंपनियां डिग्री नहीं बल्कि स्किल भी देख रही है. और कई बार छोटे शहरों और गांव के युवाओं की ये शिकायत रहती है कि जो अक्सर मौके हैं वो बड़े या फिर महानगर के जो बच्चे हैं उन्हें मिलता है, तो क्या ये योजना उनकी ये सोच बदल सकती है?
6: बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारे छत्तीसगढ़ में ही दंतेवाड़ा जैसे दुर्गम जगह पे 142 पद निकले हैं NMDC के द्वारा, जो कि 12वीं पास के बाद ITI के युवाओं के लिए है. तो इसमें किसी एक पर्टिकुलर डिग्री या फिर स्ट्रीम पे इससे संबंधित नहीं है, कोई भी व्यक्ति जिसके पास के वो वहां पे अप्लाई कर सकता है. और दंतेवाड़ा जैसे दुर्गम जगह पे अपॉर्चुनिटी निकलना दंतेवाड़ा से संबंधित, बस्तर रीजन से संबंधित सभी युवाओं के लिए एक बहुत ही आकर्षक अवसर है, एक बहुत ही है.
5: बिल्कुल सर, अब आखिर में उन युवाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा जो अक्सर समय की कमी या फिर अवसर की कमी या फिर आत्मविश्वास की वजह से आगे बढ़ने में झिझकते हैं?
6: देखिए, मेरा तो सभी युवाओं से यही आह्वान है कि वो निरंतर अपने ऊपर काम करते रहें, अपने स्किल्स के ऊपर काम करते रहें, मेहनत करते रहें, और जब भी कोई अवसर उन्हें मिलता है तो पूरी तैयारी के साथ उसको हासिल करने की कोशिश करते रहें. कई बार हम लोग तैयार नहीं होते हैं और अवसर हमारे हाथ से निकल जाता है, इसीलिए मैं मेरी सभी से यही दरख्वास्त है कि वो मेहनत करते रहें, अपने स्किल पे काम करते रहें, अवसर ऐसे आते रहेंगे, आप तैयार रहें तो आपको जरूर ही सफलता मिलेगी अपने जीवन.
5: बिल्कुल सर, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया.
6: थैंक यू सो मच. थैंक यू.

तो साथियों अब वक्त हो चला है नमस्कार रायपुर से विदा लेने का। इजाजत दीजिए देवव्रत भगत को, लेकिन जाते जाते बस इतना कहूंगा, जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर मन में उम्मीद और प्रयासों में निरंतरता बनी रहे तो हर दिन एक नई शुरुआत बन जाता है। इसी सकारात्मक सोच के साथ रखिए मुस्कुराहट बरकरार। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजे हैं, समाचार प्रभात अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
5: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
4: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
6: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले तीन दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
7: याचिकाओं में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि SIR प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
4: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
8: CBSE बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
4: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन NASA ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
8: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में NASA ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
4: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। ये निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
9: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मानसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
10: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में CNG के दाम 2 रुपये प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
4: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Center forms high-level committee to study demographic change caused by infiltration and other reasons. Supreme Court to deliver its verdict today on petitions challenging special intensive revision of electoral rules. CBSC rejects claims circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heat wave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. NASA releases details of robotic landers, hopping drones and vehicles it aims to send to Moon as part of its plan to build lunar base. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. The centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic changes caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastava and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1 in Home Ministry, will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. A report.
12: The high-level committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shift at the levels of religious and social communities and will present a planned and time-bound solution for the same. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from Redford last year, had announced about the high-level committee on demographic change.
5: I want to make a statement in front of the country and a statement in front of the country. देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
12: द कमिटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन वन ईयर। इफ नेसेसरी द टेन्योर ऑफ द कमिटी मे बी एक्सटेंडेड बाय अप टू 6 मंथ्स। विद अनुपम मिश्रा, दिस इज विष्णु पीएस, आकाशवाणी न्यूज, दिल्ली।
11: The Supreme Court will today pronounce its judgment on a batch of petitions challenging the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rules done by the Election Commission of India. A bench of Chief Justice of India, CJI Surya Kant and Justice Joymala Bagchi is scheduled to pronounce its verdict today after reserving judgment in the matter earlier this year following extensive hearings. The petitions challenging the legality of the SIR exercise undertaken by the poll body, contending that the revision process exceeds the powers conferred upon the ECI under Article 326 of the Constitution, the Representation of the People Act 1950 and the rules framed thereunder. Over the course of the proceedings, the Supreme Court issued interim directions designed to promote transparency and mitigate hardship among voters impacted by the SIR exercise across various states and union territories. The poll body had initially identified 11 documents.

0: आपके पत्र के सभी श्रोताओं को दीपक
1: और अनुभा का नमस्कार।
0: अनुभा जी, आज है माह का अंतिम बुधवार और अंतिम बुधवार को हमारे श्रोताओं के पोस्ट कार्ड और ईमेल के साथ हमारे एक श्रोता भी हमारे साथ होते हैं फोन लाइन के माध्यम से। तो आज के हमारे श्रोता कौन हैं ये जानने के लिए करना पड़ेगा बस थोड़ा सा इंतजार। तो उससे पहले बताइए, ये पहला पोस्ट कार्ड आपके हाथ में किसका है?
1: ये पहला पोस्ट कार्ड है शीतला नगर दुर्ग से। शिव और भगवान चंद्राकर का लिखते हैं, बेटी अर्थात कन्या राष्ट्र का गौरव है, परिवार का मूल आधार है बेटियां। कन्या का सम्मान अब घरों घर दिखाई दे रहा है। कन्या भी महत्वपूर्ण कार्य करने में सक्षम है, इनकी शक्ति अद्भुत है। कन्या का सम्मान जगत जननी का सम्मान है। बेटी के महत्वपूर्ण कार्य पर केंद्रित 9 मई का प्रसारित चिंतन हृदय स्पर्शी रहा। सुंदर आलेख हेतु मंगलानंद झा जी और चिंतन के आलेख को पढ़ने हेतु दीपक हटवार जी, आप दोनों को हार्दिक बधाई। शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश और सचिन वर्मा लिखते हैं, 13 मई के चिंतन के अंतर्गत श्री रमेश चंद्र मेहरोत्रा का आलेख स्वस्थ रहने की स्थिति विशेष रूप से प्रभावित की। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, इसलिए मन की प्रसन्नता के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। किसी ने सच ही कहा है, एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत। यदि हम स्वस्थ हैं तो हमारा हर क्षण उल्लास से भरा होता है, हम सदा हंसमुख रहते हैं।
0: एक चिंतन बिटिया पर केंद्रित था और दूसरा चिंतन स्वास्थ्य पर केंद्रित था। अनुभा
1: जी,
0: कितने महत्वपूर्ण हैं ये विचार, क्योंकि इन्हीं विचारों से हम अपने घर की बेटियों को एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं और स्वस्थ रहकर उस भविष्य को संवार सकते हैं। इन पत्रों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बेमेतरा से सुरेश और पूर्णिमा सारथी लिखते हैं, 14 मई के दिन हमारे चहेते कार्यक्रम को पेश करने आए हमारे प्रिय अंकुर शुक्ल जी, जिन्होंने गर्मी के मौसम में बचाव हेतु विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित किया। महिलाओं के लिए सरकार द्वारा ई रिक्शा के लिए स्व सहायता समूह के अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। इस लाभ के लिए हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की और इस लाभ को उपयोग में लाने के लिए देवेंद्र कुमार देवांगन जी से बातचीत हुई, जो हमें ज्ञानवर्धक लगी। कोटि कोटि बधाई। दीपक जी, ये पत्र नमस्कार रायपुर के संदर्भ में है।
0: नमस्कार रायपुर कार्यक्रम हर दिन हमारे श्रोताओं के लिए ढेर सारी जानकारियां लेकर आता है अनुभा जी।
1: जी।
0: और ये जानकारियां देखिए, समाज के विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए और उनके सुधार के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। खासकर इसमें जो सूचनाएं दी जाती हैं, जनोपयोगी और कल्याणकारी योजनाओं की जो जानकारी दी जाती है, कार्यक्रम को आपने गौर से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धामणी मानोरा से तुलसीराम और मायावती डेरे लिखते हैं, आपके आकाशवाणी केंद्र के हिंदी गानों के फरमाइशी कार्यक्रम की अवधि 1 घंटा रहने देंगे तो श्रोता बहुत खुश होंगे और नाम भी ज्यादा शामिल होंगे।
0: अनुभा जी देखिए, फिलहाल तो आधे घंटे के फरमाइशी कार्यक्रम हिंदी गीतों के प्रसारित हो रहे हैं।
1: जी हाँ।
0: रही बात ईमेल वाले कार्यक्रमों की, तो वो कार्यक्रम अभी 50 मिनट का प्रसारित होता है, तो फिलहाल इसी अवधि के कार्यक्रमों का आप आनंद उठाएं।
1: खैरागढ़ से रविंद्र अग्रवाल लिखते हैं, 5 मई को मोर भुइयां में प्रसिद्ध गायिका जयंती यादव जी से नेमीचंद साहू जी की भेंटवार्ता बहुत अच्छी लगी। ऐसे लोगों की सफलता के पीछे उनके संघर्ष की कहानी छिपी होती है, उनके संस्मरण बहुत प्रेरक थे। धन्यवाद।
0: हमारे अंचल की सुप्रसिद्ध लोक गायिका जयंती यादव जी से 3 भागों में ये बड़ी लंबी बातचीत की गई थी अनुभा जी, और हर अंक में उनके संस्मरण पुराने सुनहरे दिनों की याद दिला रहे थे। और जब कभी हम ऐसे किसी कलाकार से बातचीत करते हैं ना, तो बस यूं ही लगता है कि उनकी बातें हम सुनते ही जाएं। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस भेंटवार्ता को बहुत पसंद किया है, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दत्रेंगी से विश्राम यदु और पार्वती यदु लिखते हैं, 13 मई के आपके पत्र कार्यक्रम सुना। इस दिन की प्रस्तुति थी दीपक हटवार जी और सीमा दीदी की। बहुत सारे श्रोताओं के ईमेल और पत्र बराबर शामिल हुए, कार्यक्रम की अच्छी प्रस्तुति के लिए बधाई।
0: भाई आपके पत्र कार्यक्रम तो हमारे श्रोताओं का कार्यक्रम है अनुभा जी।
1: जी,
0: आपके पत्र में हर हफ्ते हमारे श्रोता बहुत मेहनत से जो पत्र लिखते हैं, तो उनकी मेहनत इस कार्यक्रम को खूबसूरत बनाती है, तो इन सभी पत्रों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।
1: हथनी पारा भाटापारा से चोवाराम और हरीश वर्मा लिखते हैं, 10 मई का आपमन के गीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया शुभ्रा ठाकुर ने और 16 मई को आपके मीत ये गीत पेश किया तारकेश्वरी आसुदानी ने। इस कार्यक्रम की तारीफ में ये पत्र भेजा है भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी और रेहाना बेगम ने।
0: हमारे फरमाइशी कार्यक्रमों से हमारे इन श्रोताओं का लगाव बहुत पुराना है और ये इसने यूं ही बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पोस्ट कार्ड के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं ईमेल्स। धनेंद्र साहू जया साहू डोंगरगढ़ से लिखते हैं, 17 मई 2026 को प्रसारित कार्यक्रम देश की वाणी आकाशवाणी में आकाशवाणी रायपुर के पूर्व कार्यक्रम अधिशासी समीर शुक्ल जी से दीपक हटवार की बातचीत बहुत अच्छी प्रेरणादायक लगी। उम्मीद है कि देश की वाणी आकाशवाणी में पूर्व उद्घोषक भैया श्याम वर्मा जी को भी सुनने को मिलेगा। शानदार प्रस्तुति हेतु आकाशवाणी रायपुर को साधुवाद।
0: देखिए इन्होंने पत्र थोड़ा पहले लिखा अनुभव जी,
1: जी हाँ।
0: और इनकी उम्मीद जो है वो पूरी हो गई है ना।
1: जी।
0: श्याम वर्मा जी से भी हमने जो भेंट वार्ता की उसका भी प्रसारण 24 मई को हो चुका है।
1: जी। जी। बघेरा दुर्ग से बीएल वैष्णव लिखते हैं, 18 मई को नमस्कार रायपुर के अंतर्गत शीतल अटकड़े जी ने शब्द हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं, वाकई शब्द हमारे पारिवारिक सामाजिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। शब्द ही अपनों से दूरी बना देते हैं और शब्द ही हर दूरी को मिटा देते हैं। हमारे बोले हुए इन शब्दों को आनंदमय सुरुचि मित्रवत सौम्य दयालु प्यार भरा सुखद मीठा और अच्छा शानदार हौसला भरने वाला होना चाहिए। नमस्कार रायपुर, प्रेरणादायक लगा। शीतल जी और आकाशवाणी रायपुर को बहुत बहुत बधाई।
0: नमस्कार रायपुर में इन्होंने शब्दों की बात कही अनुभा जी,
1: जी।
0: और शब्द के बिना तो सब कुछ अधूरा है,
1: जी
0: है ना?
1: जी।
0: हमारा ये आपके पत्र कार्यक्रम भी हमारे श्रोताओं के पत्रों में जो शब्द होते हैं और उन शब्दों से जो वाक्य बनते हैं और उन वाक्यों से जो विचार निर्मित होते हैं उन्हीं विचारों से हमारा ये कार्यक्रम भी सजता है। हमेशा बोलते समय अपने शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर ही करें तो हमारी वाणी सभी को मधुर लगेगी। बहरहाल इस पत्र के लिए आपको धन्यवाद।
1: धमतरी से रामचंद माखीजा सविता माखीजा लिखते हैं, 18 मई को छत्तीसगढ़ के लोकसुर कार्यक्रम सुना, वाचक तारकेश्वरी आसुदानी जी, आलेख वीरभान साहू जी और संयोजक पंकज मेश्राम जिला गाड़ा गाड़ा बधाई।
0: वही छत्तीसगढ़ के लोकसुर में छत्तीसगढ़ी संगीत की बड़ी विस्तृत जानकारी दी जाती है अनुभा
1: जी,
0: और आकाशवाणी के गौरवपूर्ण इतिहास की भी जानकारी दी जा रही है इस कार्यक्रम के माध्यम से, जिसे आपने गौर से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: करही भदर से पुरुषोत्तम भाई निर्मलकर और श्रद्धा निर्मलकर लिखते हैं, 19 मई के बड़े बिहनिया मा छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम मोर भुइया मा छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य मा डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा के योगदान ऊपर वार्ताकार श्री विजय मिश्रा अमित जी और कहानी संगवारी के शर्त कहानीकार श्रीमान सिंह मौलिक जिले और आखिर मा कविता पाठ श्री तोरण कुमार चुरेंद्र जिले सुने पर मिलिस सुन के मन बने लागिस। ए कार्यक्रम मा शामिल साहित्यकार मन और सफल संपादन खातिर महेंद्र कुमार साहू जिला अंतस्ले धन्यवाद।
0: मोर भुइया का हर अंक छत्तीसगढ़ी साहित्य की अलग अलग विधाओं से परिपूर्ण होता है अनुभा जी,
1: जी हाँ।
0: ये कार्यक्रम एक ऐसा मंच है जो हमारे अंचल के सभी रचनाकारों को उनके विचार जन जन तक पहुंचाने के अवसर प्रदान करता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस मेल के लिए आपको।
1: गांव तेंदु भाठा मगरलोट से यशस्वी कुमार निषाद और भास्कर निषाद लिखते हैं, लोक संगीत के कार्यक्रम में 19 मई को खुमान लाल साव और साथी कलाकार मन के गाये छत्तीसगढ़ी गीत सुनेन बड़ मनभावन लागिस। ए दिन के कार्यक्रम के रोचक प्रस्तुति पर कलाकार मनला अंतस्ले धन्यवाद।
0: वही छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के कार्यक्रम में पुरानी रिकॉर्डिंग हमारे श्रोता जब भी सुनते हैं ना अनुभा
1: जी,
0: तो बिल्कुल रेडियो के नजदीक आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पुराने छत्तीसगढ़ी गीतों की बात ही अलग है
1: जी हाँ।
0: जो हमेशा हमारे मन को एक सुकून प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस मेल के लिए आपको।
1: घटारानी अंचल फुलझर से योगेश्वर साहू और डुमेश्वरी साहू लिखते हैं, 20 मई की सुबह आपके पत्र कार्यक्रम में श्रोताओं के प्रशंसा बधाई सुझावी शिकायती सभी तरह के पोस्ट कार्ड्स और ईमेल पत्रों को बराबर शामिल किया गया। दीपक हटवार जी ने श्रोताओं के पत्रों के उत्तर बहुत ही सुंदर अंदाज में दिए। श्रोताओं के पत्रों को स्पष्ट और साफ आवाज में पढ़कर सुनाई अनुभा अग्रवाल ने। कार्यक्रम की लाजवाब प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी रायपुर परिवार को हार्दिक बधाई।
0: भाई आज भी अनुभा जी हमारे साथ हैं और श्रोताओं, अनुभा जी जब भी आपके ईमेल लेकर बैठती है ना तो उनके चेहरे पर एक अलग तरह की प्रसन्नता झलकती है, क्योंकि श्रोताओं के पत्र पढ़कर वे भी बड़ी खुश हो जाती हैं। तो खुशी का ये सिलसिला आपके पत्रों के संग यूं ही जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धरसीवा से छेदूलाल यादव और सीता यादव लिखते हैं, 21 मई को प्रगति के सोपान कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन इस संबंध में मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज साहू जी से रमाशंकर जी द्वारा की गई बातचीत सुनने को मिली। जो नशा करते हैं और उसे नशा न मिले तो उन्हें मानसिक बीमारी होती है, और मानसिक बीमारी से बचने का उपाय जैसे नींद पर्याप्त लेना, संतुलित आहार लेना, व्यायाम करना, नकारात्मक सोच से दूर रहना जैसे बहुत सारी मानसिक रोग के कारण और बचाव के बारे में डॉक्टर मनोज साहू जी ने बताए। बहुत बहुत बधाई।
0: हमारी शारीरिक परेशानियों की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों को मानसिक परेशानी भी घेर लेती है, और ऐसे में हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए और अपनी दिनचर्या में किन किन आदतों को शामिल करना चाहिए, इसकी बहुत विस्तृत जानकारी इस भेंटवार्ता के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक पहुंची, जिसे आपने गौर से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सिंगारबाड़ी घुटकू से भगतराम पटेल और मानवी पटेल लिखते हैं, 21 मई को मीठी एवं ज्ञानवर्धक बातों के साथ नमस्कार रायपुर लेकर आए अंकुर शुक्ल जी। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के अवसर पर नेहा जैन जी के द्वारा रोचक एवं लाभप्रद जानकारी दी गई। वैश्विक जागरूकता दिवस के अवसर पर डॉक्टर साधना नायक से शिक्षाप्रद बातचीत की गई। साथ ही राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस के अवसर पर जीएस सोठी जी से अच्छी जानकारी मिली। सफल कार्यक्रम के प्रसारण के लिए आकाशवाणी परिवार को सहृदय बधाई। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये मेल है तेंदुभाटा मगरलोड से उमेंद कुमार और देविका निषाद का।
0: नमस्कार, रायपुर की तारीख हमारे श्रोताओं के लिए बड़ी महत्वपूर्ण तब हो जाती है जब वो तारीख इतिहास के किसी खास घटना से जुड़ी होती है। अनुभा जी,
1: जी हाँ।
0: और हमारे प्रस्तुतकर्ता हर रोज उस महत्वपूर्ण तारीख का उल्लेख भी करते हैं और हमारे श्रोताओं के ज्ञान में वृद्धि भी होती है। बहरहाल, इन पत्रों के लिए आपको धन्यवाद।
1: नानघाट कातल बोर्ड से भाग सिंह राजपूत और भाग्यश्री राजपूत लिखते हैं, 22 मई को प्रसारित इनसे मिलिए में श्री वीरेंद्र सिंह से रमा शंकर जी की बातचीत बहुत ही अच्छी लगी, जो पानी बचाओ अभियान में जन जागरूकता पर काम कर रहे हैं और कुआं तालाब बांध नदियां नाले साफ सफाई कैसे रखें इस विषय पर बहुत ही विस्तार से जानकारी दी, और जंगल को बचाएं पेड़ पौधे लगाएं इस विषय पर भी जन जागरूकता वाली बात कही जो हमें बहुत अच्छी लगी। इसके लिए वाटरमैन श्री वीरेंद्र जी और रमाशंकर जी को हार्दिक बधाई। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये मेल है गणेशधाम परसुली से जितेंद्र दास और मिलाऊ दास मानिकपुरी का।
0: हमारे बीच कुछ ऐसे व्यक्तित्व भी हैं जिन्होंने जल के संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और ऐसे व्यक्तित्व से जब उनके अनुभवों को हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं तो उन्हें भी पानी की बचत का संदेश मिलता है, सीख मिलती है। ये भेंटवार्ता आपको पसंद आई, बहुत बहुत धन्यवाद इन पत्रों के लिए आपको।
1: खैरागढ़ राजलालपुर से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे लिखते हैं, 22 मई को आपके केंद्र से समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी सुनने को मिली डॉक्टर रूपा मेहता जी से, जिसका विषय था कान और उनसे संबंधित रोग कारण और निवारण। विशेषकर आज के परिवेश में कानों में सुनाई कम देना जैसी समस्या से अधिकांश लोग ग्रसित हैं। इसके कारण और निदान को डॉक्टर रूपा जी ने सरल सहज शब्दों में काफी विस्तृत रूप से जानकारी दी। डॉक्टर रूपा मेहता जी, दीपक हटवार जी सहित आकाशवाणी रायपुर को हमारी कोटिशह बधाई। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये मेल है अड़ार नानघाट से माखन वर्मा और चांदनी वर्मा का।
0: हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है कान, और ये जो कान है इससे दुनिया की हर आवाज हम सुन पाते हैं अनुभा जी, और इसकी देखभाल भी बहुत जरूरी है। बहुत विस्तार से इस कार्यक्रम के माध्यम से ये जानकारी दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद इन पत्रों के लिए आपको।
1: बिनौरी फिंगेश्वर से टीकम राम साहू योगेश्वर साहू लिखते हैं, 23 मई के सुबह रामचरितमानस में चित्रकूट प्रसंग गाथा सुनेन तेखरबर श्री श्रीकांत पारगांवकर अववाणी जयराम के संग आकाशवाणी ला बहुत बहुत बधाई।
0: हर सुबह 6:35 पर रामचरितमानस गान लगातार जारी है, सुनते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ठेठवार पारा कनेरी से सनत कुमार यादव लिखते हैं, 23 मई को आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित कार्यक्रम बातों बातों में प्रदेश के गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी से विकल्प रंजन शुक्ला की विशेष भेंटवार्ता प्रस्तुत की गई। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के प्रभाव के खात्मे के बाद बस्तर क्षेत्र के विकास हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में गृह मंत्री जी ने बताया कि सेवा डेरा जैसी योजनाओं के माध्यम से आदिवासी युवाओं को शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले समय में बस्तर क्षेत्र में दूध क्रांति लाने की योजना बनाई गई है, जिससे ग्रामीण और आदिवासी परिवार आर्थिक रूप से सशक्त बन सकेंगे। ये कार्यक्रम न केवल जानकारी वर्धक बल्कि प्रेरणादायक भी रहा, जिसने बस्तर के बदलते स्वरूप और उज्जवल भविष्य की सकारात्मक तस्वीर प्रस्तुत की।
0: ये बहुत ही महत्वपूर्ण भेंट वार्ता थी अनुभा जी, और हमारा बस्तर जो अब शांति की राह पर चल पड़ा है, शांति के साथ साथ विकास की गति भी अब वहाँ तीव्र हो रही है, और आने वाले समय में संपूर्ण बस्तर में यह विकास जन जन के जीवन में दिखाई देगा, ऐसी हम कामना करते हैं। पत्र के लिए धन्यवाद।
1: कन्नेवाड़ा से देवेंद्र कुमार सोनवानी और लक्ष्मीना सोनवानी लिखते हैं, 22 मई का चिंतन सुना जो जल संरक्षण पर केंद्रित रहा। आलेख ललित सुरजन जी का था, चिंतन समसामायिक रहा। समसामायिक चिंतन आलेख हेतु तहे दिल से धन्यवाद।
0: भाई देखिए, जल संरक्षण पर केंद्रित विचार इस चिंतन में थे, और आज इन विचारों को आत्मसात करने की बहुत जरूरत है अनुभा जी, तभी हम पानी को बचा पाएंगे। पत्र के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह और अनुभव सिंह लिखते हैं, 24 मई को कानून की बात के तहत निःशुल्क सहायता योजना लोक अदालत नए आपराधिक कानूनी संबंधी मामलों विषय पर महत्वपूर्ण रोचक जानकारी भेंटवार्ता के माध्यम से असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल अधिवक्ता रविन्द्र कुमार साव जी से अनेकों महत्वपूर्ण कानूनी संबंधी मामले पर काफी महत्वपूर्ण रोचक जानकारी सुनने को मिली। प्रतिमा आजवानी जी ने भेंटवार्ता के माध्यम से रविन्द्र कुमार साव जी से बहुत अच्छी बातचीत की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रायगढ़ केंद्र की प्रस्तुति थी। अच्छी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद।
0: कानून की बात कार्यक्रम के हर अंक में हमारे श्रोताओं को नई नई जानकारियां दी जाती हैं अनुभा जी, ताकि हमारे श्रोता कानून से संबंधित अपनी जानकारी को बिल्कुल अपडेट करें। रही बात हमारे संविधान को जानने की, तो हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं, ये भी हम सबको पता होना चाहिए। इसके प्रसारण का यही उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: भाटापारा से बचकामल और मोतीलाल यादव लिखते हैं, 24 मई को प्रसारित कार्यक्रम देश की वाणी आकाशवाणी बेहद बेहद पसंद आया। इस कार्यक्रम में दीपक हटवार जी द्वारा आकाशवाणी रायपुर के भूतपूर्व उद्घोषक भाई श्याम वर्मा जी से ली गई भेंटवार्ता बहुत अच्छी लगी। उन्होंने अपने कार्यकाल के प्रसारित कार्यक्रमों के बारे में जो बातें बताई बहुत पसंद आई। श्याम भाई के द्वारा पेश किए गए सभी कार्यक्रमों को हमने सुना है। वे हर कार्यक्रम को, चाहे वो मोर भुइयां हो या फरमाइशी कार्यक्रम, आप मन के गीत आदि हो, बड़ी लगन और मेहनत के साथ पेश किया करते थे। इतनी खूबसूरत भेंटवार्ता के लिए दीपक जी, श्याम वर्मा जी और आकाशवाणी रायपुर को बहुत बहुत बधाई। इसी कार्यक्रम की तारीफ में बहुत सारे मेल आए हैं दीपक जी। ये है देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, खमतरी रायपुर से हीरा साहू, तेंदुभाटा मगर लोड से उमेद कुमार, देविका निषाद, हजदा नंबर 2 से कमलेश जितेंद्र साहू, बठेना पाटन से बलकरण ज्योति वर्मा, दुर्ग से भवानी शंकर वर्मा, भानपुरी मुसरा से आत्माराम विदेशी राम यादव, पिपरिया से कमलकांत दीपा रिमझिम गुप्ता, नवगढ़ कटई से नारायण प्रसाद चंद्रकांत वर्मा, सिंगारवाड़ी घुटकू से भगत राम मानवी पटेल, और मेघापारा चिल्फी से रामकुशल और संतोषी पटेल का।
0: अनुभा जी देखिए, इतने सारे ईमेल हमसे कहते हैं कि श्याम भैया बड़े लोकप्रिय अनाउंसर थे आकाशवाणी के, और आज भी उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। तो उनसे की गई इस विस्तृत बातचीत को हमारे श्रोताओं ने बहुत पसंद किया, और श्याम भैया ने अपने जीवन के कुछ पुराने अनुभवों को भी हमारे साथ शेयर किया। तो इन सभी पत्रों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: गाँव परसाटोला से ओम प्रकाश मसिया और सिलोचनी मसिया लिखते हैं, 25 मई को साहित्यिक पत्रिका पल्लवी सुनी, संपादन प्रकाश उदय जी का था, मार्मिक कहानी एक्वेरियम, कहानीकार थी श्रीमती मीना गुप्ता जी। इस कहानी से ये सीख मिली कि हम मकान मालिक हैं तो किरायेदार सोच समझ कर रखें। हमारे देश में पड़ोसी संस्कृति का बड़ा महत्व होता है। पड़ोसियों से अच्छा संबंध बना के रखें, जो समय पड़ने पर सुख दुख के साथी बन सकें। कविता पाठ के अंतर्गत कवित्री सुश्री शुचि भवि की कविताएं सुनी, मैं हीर नहीं और तू रांझा नहीं, हम आजाद हैं प्रेम की गहराइयों में डूबने को, सर्द रिश्ते मन परिंदा उड़ जाता है, बंद दरवाजे बंद खिड़कियां, नया सूरज उगेगा एक दिन जरूर, युद्ध शांति के लिए कभी ना हुआ है ना कभी होगा, मैं जिंदा हूं सुनो चलोगे मेरे साथ, सोचते हैं हरदम तुम ही तो सोचते हो। कार्यक्रम की अच्छी प्रस्तुति के लिए संपादक प्रकाश उदय जी को दिल से शुक्रिया।
0: हमारे श्रोताओं को साहित्य पत्रिका कार्यक्रम पल्लवी का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है अनुभा जी। इसमें साहित्य की विविध विधाओं के माध्यम से रचनाकार अपने विचारों को श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। पत्र के लिए आपको धन्यवाद।
1: गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन और प्रभा देवी सेन लिखते हैं, 18 मई को फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो कार्यक्रम में तारकेश्वरी आसुदानी द्वारा श्रोताओं से की गई बातचीत में गांव का वर्णन और मधुर गीत बहुत पसंद आए। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये ईमेल्स हैं, धुर्राबांधा भाटापारा से प्रमोद साहू देव कुमार साहू का, सहसपुर लोहारा से गुनी राम और संतोषी राजपूत, गंडई टिकरीपारा से जागेश्वर कचरीबाई देवांगन, मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार योगेश साहू, कन्या दमोह बालाघाट से ध्रुवा राम साहू और गेंदाटोला से बीरेंद्र कुमार और गजेंद्र गुप्ता का। ग्राम पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे वीणा पांडे लिखते हैं, 19 मई के आप मन के गीत कार्यक्रम लेके आए रहीन हमर मयारुख रेडियो दोस्त संजय पाठक जी, जैन मन ईमेल और पत्र घलो शामिल करीन, बढ़िया बढ़िया गीत सुनाइन, सबो गीतला सुन के मन गदगद होगे, सुंदर प्रस्तुति पर आकाशवाणी परिवार ला गाड़ा गाड़ा बधाई। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये मेल है पोटिया कला दुर्ग से संजय सुजाता साहू का। लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी और प्रमिला मरावी लिखते हैं, 20 मई के ईमेल भेजो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो कार्यक्रम में हमर मयारू दीदी अनुभा अग्रवाल जी श्रोता संगवारी मनले भेजे गए ईमेल और नाव शामिल कर बहुत सुघर सुघर गीत सुनाइन, जेखर मनमोहक प्रस्तुति पर आकाशवाणी परिवार ला हमर मया भरे बधाई। कोई ग्राम भंगीटोला से ननकाराम धुर्वे और जामुनबाई धुर्वे लिखते हैं, 23 मई के ईमेल भेजे फिल्म संगीत सुने कार्यक्रम में हरजीत कौर जी ने श्रोताओं के द्वारा भेजे गए ईमेल और पत्रों को अधिक से अधिक नाम को शामिल किया और हमारी पसंद के शानदार गीत सुनवाए, जिसके लाजवाब प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये मेल है फुलझर घटारानी से यामिनी और मुस्कान साहू का। समडिल नवापारा से दीपक गुप्ता और मुकेश गुप्ता लिखते हैं, 22 मई को छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम सुर सिंगार सुना, सभी गीत कर्णप्रिय लगे, शेख हुसैन जी भीखम धर्माकर जी के गीत मन को छू गए, प्रवीणा त्रिपाठी जी को साधुवाद। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये मेल है भड़गा कोदवा गोड़ान से श्याम सिंह और राजकुमारी मरावी का, सहमालगी से सुखनंदन शिवरानी चंद्रवंशी का और कोहका भिलाई से उत्तम सिंह और मोरज चंखेल का। हस्ता नंबर 2 से दिलीप कुमार साहू और प्रवीण कुमार साहू लिखते हैं, 25 मई को हमारा पसंदीदा कार्यक्रम फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ कार्यक्रम सुनने को मिला, जिसे प्रस्तुत किया तारकेश्वरी आसुदानी जी ने, श्रोताओं से बातचीत की और श्रोताओं की पसंद के गीत सुनाए जो हमें बहुत अच्छे लगे, शानदार प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये मेल है ग्राम करुहा नार से गोमती और काजल रजक का, रोहासी पलारी से श्यामलाल साहू और युवराज साहू का।
0: अनुभा जी देखिए, पत्रों की संख्या इतनी ज्यादा है कि हमें उत्तर देने में बहुत कम समय लेना चाहिए, इसलिए इन सभी पत्रों के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और आज है माह का अंतिम बुधवार और माह के अंतिम बुधवार में हमारे साथ होते हैं हमारे एक श्रोता, तो देखें इस सप्ताह हमारे साथ कौन से श्रोता है। हमारे इस माह के श्रोता हैं चरडोंगरी पिपरिया के दुर्गाराम साहू। दुर्गाराम जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार सर।
0: ये बताएं आप रेडियो कब से सुन रहे हैं?
2: रेडियो तो ऐसे बचपन से सुनते आ रहा हूँ, और कहीं कहीं जिन सियान मन जिन रही घर में वो जिन लकड़ी वाले जिन रेडियो आते वो रेडियो अपन घर में सुनते सुना था ना, अब कहीं कहीं पढ़ाई लिखाई भी चलत रही से, तो वही बीच में अपन रेडियो के जिन गूंज अपन अंदर छू गए, तो कहीं कहीं चौपाल के माध्यम से शुरुआत करे, तो उसे 1994 से मैं रेडियो सुना था।
0: 1994 से आप सुन रहे हैं। ये बताइए कि आप केवल आकाशवाणी रायपुर ही सुनते हैं या अन्य आकाशवाणी केंद्रों को भी सुनते हैं?
2: उसमें अलग अलग भी है, जैसे कहा 1994 रायपुर से मैं चौपाल से शुरुआत करें, तो धीरे धीरे

0: मतलब जैसे आकाशवाणी रायपुर के आपकी मित्र गीत चरित्र अनुरोध गीत है ये जिन अपन दो पहर मावा है अब वो धीरे धीरे मतलब रुचि बढ़तेगी तो उसी बीच में अपन चौपाल जैसे लगानता उसके भी जैसे कांटा लेती थी घुमाना तो आकाशवाणी कभी शिमला पकड़ ले कभी जगदलपुर पकड़ ले ऐसे धीरे धीरे तो हम एक दूसरे के संग दोस्ती यारी भी बढ़त दोस्ती यारी बढ़त गई तो ओकर माध्यम से अन्य विदेश के मतलब कहा जाए तो आकाशवाणी से मतलब रुचि बढ़ी तो बीच में झावेंद्र कुमार जिन ध्रुव है तो ओकर से एक मेन मुलाकात हो मित्रता हो चिट्ठी के माध्यम से तो ओकर से जानकारी मिली तो वही बीच में मैं वॉइस ऑफ अमेरिका वेरिटास एशिया और डाई चोले जर्मनी बीबीसी लंदन एमत चिट्ठी भेजल धरे तो वो समय अंतरदेशीय है ये सब पत्रिका जात रही से तो ओकरे माध्यम से वहाँ कार्यक्रम जिन सुनन और उधर सुनत रहे तो समय के हिसाब से अलग वो शाम कर रहे वो शाम कर रहे तो थोड़ा से आगे पीछे करके ना जिन दिन वहाँ चिट्ठी मिली से रहा तो वाला थोड़ा अलग कर दें जिन दिन अन्य कार्यक्रम रहे वाला अलग कर दें तो ओकर हिसाब से टाइम उन्हें घुचा भिचा के सुनत रहे तो वो बीच में एक समिति के भी गठन करे 2000 के आसपास में
1: जी
0: वहाँ से एक पंजीयन हो वॉइस ऑफ अमेरिका से और वेरिटास एशिया से वहाँ से एक प्रमाण पत्र भी मिली जो अपन 11 श्रोताओं के अपन जिन समिति बना के भेजे रहे तो वो समय जय छत्तीसगढ़ रेडियो श्रोता संघ के नाम से चलत रही से आवाज भी वह चलते हैं लेकिन कहीं कहीं वो जिन वो पंजीयन यहाँ भी करवाएं तो पंजीयन पंजीयन शासकीय करवाएं तो शासकीय के हिसाब से 3 साल में रही थे तो 3 साल के बाद वाला अनुमोदित करना रही थे तो वो हो नहीं पाई तो वो थोड़ा वाला कम कर दे हूँ।
1: तो दुर्गा राम जी आपका जो नाम है ये कौन कौन से आकाशवाणी केंद्रों से रेडियो स्टेशन से प्रसारित होता है?
0: जैसे अभी छत्तीसगढ़ में कहा जाए तो रायगढ़ है, बिलासपुर है, जगदलपुर है, अंबिकापुर है और जैसे अपन अपन दूसरा राज्य ले जाए तो इंदौर भी है। अभी जिन अपन सिलोन जिन चला थे वो अभी चलते छे दिल्ली के जिन है अनेक कहा जाए तो कम से कम 50-60 के आसपास ऐसे अलग अलग दिन ऐसे नाम है कहीं कहीं सुने मिल जाते।
1: ये बताइए अब आपने ईमेल करना शुरू कर दिया है या अभी भी पोस्ट कार्ड लिखते हैं?
0: अभी दोनों चल रहा है जैसे मोबाइल के माध्यम से ईमेल भी भेज देते हैं और पोस्ट कार्ड भी है।
1: ये बताइए कि जिस वक्त ईमेल आपने शुरू नहीं किया था केवल पोस्ट कार्ड ही आप भेजा करते थे तो एक हफ्ते में कितने पोस्ट कार्ड आप सारे आकाशवाणी केंद्रों को भेजते थे?
0: अब हफ्ते में कहीं कहीं 40-50 चले जाता था
1: सभी आकाशवाणी केंद्र मिला के।
0: हाँ, अलग अलग।
1: दुर्गा राम जी ये बताइए कि इस महीने कौन कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगे?
0: अब इस महीने में कार्यक्रम तो ऐसे ज्यादातर से चौपाल है और नमस्कार रायपुर है युवाड़ी का है जो श्रोताओं के और बच्चों के दोनों के हित में अपन सामान्य ज्ञान के रूप में कहा जाए तो सवालों के रहने हैं सवाल जवाब हैं नुवाड़ी का हो गया और किसानों को लिया जाए तो अपन चौपाल है जो चौपाल में जो खेती बाड़ी और आने वाला सीजन और कहीं कहीं समय हिसाब से जिन चर्चा जिन चलते मुखर अनुरूप से सभी कार्यक्रम एक से बढ़ के एक कार्यक्रम है।
1: ये बताइए कि आप इस वक्त क्या करते हैं?
0: अभी मैं खेती बाड़ी करता हूँ।
1: खेती बाड़ी करते हैं आकाशवाणी रायपुर को लेकर अंत में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं यही कहूँगा सर जी कि जो रेडियो और आकाशवाणी रायपुर जो श्रोताओं और एक लोगन में जो रुचि बनाई है वो एक से बढ़कर एक है और कहीं कहीं जो पहले से उद्घोषा का कंपिया थे और आज में थोड़ा से कुछ अंतर आया है तो कहीं कहीं कुछ सुधार की भी आवश्यकता है।
1: तो दुर्गा राम जी आपके सुझाव को भी हम नोट करते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनुभा जी ये थे हमारे इस माह के श्रोता और अब चलने से पहले हम मेल आईडी बता दें raiapkepatra1@gmail.com। पोस्ट कार्ड भेजने के लिए पता है कार्यक्रम आपके पत्र द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 97 आकाशवाणी रायपुर पिन कोड 492001। तो अगले हफ्ते आपके पत्रों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अनुमति दीजिए दीपक
2: और अनुभा को नमस्कार।

आपके पत्र, श्रोता पत्रों पर केंद्रित ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9 बजे हैं, अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। गांधी चर्चा इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए महात्मा गांधी के संस्मरण मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ।

0: श्रोताओं, गांधी चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं महात्मा गांधी के संस्मरण मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ। इस क्रम में आज सुनिए गांधी जी के परम स्नेही जोसेफ डोक के बारे में गांधी जी के विचारों का पहला भाग।
1: जोसेफ डोक बैप्टिस्ट संप्रदाय के पादरी थे। दक्षिण अफ्रीका में आने से पहले वे न्यूजीलैंड में थे। दक्षिण अफ्रीका के पहले समझौते के अवसर पर मीर आलम द्वारा पिटने की घटना के 6 महीने पहले की बात है। एक दिन वे मेरे दफ्तर में आए और अपना कार्ड भेजा। उसमें रेवरेंड विश्लेषण का उपयोग किया गया था। इस पर से मैंने झूठ मूठ ही ये कल्पना कर डाली कि जिस प्रकार अन्य कितने ही पादरी मुझे ईसाई बनने का उपदेश करने का या आंदोलन बंद करने को कहने के लिए आते हैं, उसी प्रकार अथवा बुजुर्ग बनकर मेरे साथ सहानुभूति दिखाने के लिए वे आए होंगे। पर ज्यों ही मिस्टर डोक अंदर आए और बातचीत करने लगे, त्यों ही कुछ मिनटों में ही मैंने अपनी भूल को समझ लिया और दिल ही में मैंने उनसे क्षमा मांग ली। युद्ध संबंधी तमाम समाचारों से उन्होंने अपने को परिचित बताया और कहा, इस युद्ध में आप मुझे अपना मित्र समझिए। मुझसे जो कुछ सेवा बनेगी वह सब मैं अपना धर्म समझकर करने की इच्छा रखता हूँ। ईसा के जीवन आदर्श का चिंतन मनन करके मैंने तो यही सीखा है कि आपातकाल में दीन दुखियों का साथ देना चाहिए। यह हमारा पहला परिचय था। इसके बाद दिनों दिन हमारा स्नेह संबंध बढ़ता ही गया। पर डोक कुटुंब ने मेरी जो सेवा की उसका वर्णन करने से पहले उनका थोड़ा बहुत परिचय दे देना भी आवश्यक था। रात हो या दिन, कोई ना कोई मेरे पास जरूर बैठा रहता था। जब तक मैं उनके घर में रहा तब तक उनका मकान केवल एक धर्मशाला ही बन गया था।

भारतीयों में फेरी वाले लोग भी थे। उनके कपड़े मजदूरों के जैसे और मैले भी रहते। उनके साथ में एक गठरी या टोकरी भी अवश्य रहती, जूतों पर सेर भर धूल भी। मिस्टर डोक के मकान पर ऐसे लोगों से लगाकर अध्यक्ष तक के सभी दर्जे के लोगों की एक बड़ी भीड़ लगी रहती। सब मेरा हाल पूछने और डॉक्टर की आज्ञा मिलने पर मुझसे मिलने के लिए चले आते। सभी को वे सम्मान भाव से और सम्मान पूर्वक अपने दीवान खाने में बैठाते और जब तक मैं उनके यहाँ रहा तब तक उनका सारा समय मेरी शुश्रूषा में और मुझसे मिलने के लिए आने वाले सैकड़ों सज्जनों के आदर सत्कार ही में जाता। रात को भी 2-3 बार मिस्टर डोक चुपचाप मेरे कमरे में आकर ज़रूर देख जाते। उनके घर पर मुझे एक दिन भी ऐसा ख्याल नहीं हुआ कि ये मेरा घर नहीं या मेरे संबंधी होते तो इससे अच्छी सेवा करते। श्रोता यह भी ख्याल ना कर लें कि इतने जाहिरा तौर पर भारतीय आंदोलन का पक्ष ग्रहण करने तथा मुझे अपने घर में स्थान देने के कारण उन्हें कुछ सहना ना पड़ा होगा। वे अपने पंथ के लिए एक गिरजाघर चला रहे थे। उनकी आजीविका इन पंथ वालों के हाथों में थी।

ये था गांधी जी के परम स्नेही जोसेफ डोक के बारे में गांधी जी के विचारों का पहला भाग। अगले अंक में आप सुनेंगे इसका दूसरा भाग।

मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ, वाचक स्वर प्रकाश उदय और रमाशंकर के थे। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम में पहले आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में अनजान का लिखा गीत। संगीत राजेश रोशन का है और फिल्म का नाम है याराना।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात।

0: जमाने को दिखाना है। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना शैलेंद्र सिंह और साथियों की आवाजों में। गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और सुरों से सजाया था राहुल देव बर्मन ने।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए।

0: सतर्क रहिए।
1: चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी की रचना। संगीत राहुल देव बर्मन का ही है और फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं।

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।
2: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
3: फोनिंग फरमाइश, नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
4: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा।
2: कुछ आवाजें गीतों के संग घुल मिल जाती हैं।
5: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
2: कभी कोई किस्सा याद आता है।
6: यादें।
2: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
7: मुझे कुछ कहना है।
8: मुझे भी कुछ कहना है।
2: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
9: सुनिए।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर। अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: कर्ज फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म कर्ज का गीत। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इसी कार्यक्रम में कुछ और गीत आपको सुनवाएंगे सुबह 10:30 से। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:40 हुए हैं। सुगम संगीत इस कार्यक्रम में आज कलाकार हैं चंद्रमोहन वर्मा। इनके स्वर में पहले सुनिए ये गज़ल।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं चंद्रमोहन वर्मा को। और अब एक सूचना सुनिए श्रोताओं, आगामी मंगलवार 26 मई 2000 कार्यक्रम की अगली रचना सुनिए चंद्रमोहन वर्मा के स्वर में। गजल है अजीम कुरैशी की,

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे चंद्रमोहन वर्मा को। इन्हीं के स्वर में कुछ और रचनाएं सुनिएगा सुगम संगीत के ही कार्यक्रम में आज रात 8:15 पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:55 होने को हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। कल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय। मुख्य सचिव ने प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में सहकारी समिति संचालित करने के दिए निर्देश और पेंड्रा में बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी की गोली मार कर की हत्या। अब समाचार विस्तार से। कल शाम हुई छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों और निकायों में जमा स्क्रैप सामग्री के पारदर्शी निस्तारण के लिए एमएसटीसी के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध की अवधि अगले 3 वर्षों तक बढ़ाने का फैसला किया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा बिटुमिन यानी डामर की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए सड़क निर्माण कार्य प्रभावित न हो इसके लिए 1 अप्रैल से 30 जून तक ठेकेदारों को सीमित और आंशिक मूल्य राहत देने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील ने सहकारी समितियों को मजबूत बनाकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया है। रायपुर में आयोजित राज्य सहकारी विकास समिति की बैठक में उन्होंने हर ग्राम पंचायत में सहकारी समिति संचालित करने के निर्देश दिए। बैठक में प्राथमिक कृषि साख समितियों यानी पैक्स को दुग्ध मत्स्य पालन और लघु वनोपज गतिविधियों से जोड़ने पर चर्चा हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाने के लिए माइक्रो एटीएम और रुपे कार्ड उपलब्ध कराने की समीक्षा भी की गई। मुख्य सचिव ने सहकारी शक्कर कारखानों में इथेनॉल संयंत्रों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कल रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य मुलाकात की। बैठक में छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन बढ़ाने, ऊर्जा सुरक्षा, खनन क्षेत्रों में आधारभूत संरचना और रेल लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी के ऊपर विस्तार पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने स्वच्छ ऊर्जा, कोयला गैस और सौर ऊर्जा विकास के जरिए निवेश और रोजगार के नए अवसर बढ़ाने पर भी जोर दिया। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में बीती शाम कुछ बदमाशों ने सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना पिंडरा के कोटमी साप्ताहिक बाजार की है। बदमाशों ने बीच बाजार में व्यापारी पर गोली चलाई और जेवर लूटकर मौके से फरार हो गए। घायल व्यापारी को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने ईद उल अजहा यानी बकरीद के अवसर पर आज के बजाय कल 28 मई को अवकाश घोषित किया है। ये आदेश प्रदेश के सभी कार्यालयों, विभागों और सरकारी संस्थानों में रहेगा। बलरामपुर जिला प्रशासन ने आवश्यक वस्तुओं के अवैध भंडारण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ग्राम कृष्णा नगर स्थित एक दुकान से लगभग 400 लीटर डीजल, 70 लीटर पेट्रोल और 32 बोरी पीडीएस चावल जब्त किया है। जिला प्रशासन ने कहा है कि अवैध भंडारण और कालाबाजारी के खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में कृषि विभाग की टीम ने खाद, बीज और कीटनाशक विक्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाली 6 निजी संस्थाओं के लाइसेंस निलंबित किए गए। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों को मानक गुणवत्ता की सामग्री उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। वहीं कुछ जिलों में ग्रीष्म लहर चलने की संभावना है। एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने तथा तेज हवा चलने के आसार हैं। इस बीच प्रदेश में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए नवा रायपुर स्थित नंदनवन जंगल सफारी 28 और 29 मई को बंद रहेगा। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने बताया कि यह निर्णय वन्य प्राणियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय। मुख्य सचिव ने प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में सहकारी समिति संचालित करने के दिए निर्देश और पेंड्रा में बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी की गोली मारकर की हत्या। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 10 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित बुधादित्य मुखर्जी का सितार पर बजाया राग अहीर भैरव में आलाप और 3 ताल में निबद्ध एक गत। आपके साथ तबले पर संगतकार हैं संपतलाल।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित बुधादित्य मुखर्जी का सितार पर बजाया राग अहीर भैरव। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। इस समय सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत। पहले सुनिए अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल की आवाज़ में मनोज मुंतशिर का लिखा गीत। संगीत जीत गांगुली का है और फिल्म का नाम है रुस्तम।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: देवेंद्र काफिर का लिखा गीत अभी आपने सुना अरिजीत सिंह और असीस कौर की आवाज़ों में। फिल्म कपूर एंड सन्स के लिए संगीत था तनिष्क बागची का।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए कुमार का लिखा गीत सोनू निगम के स्वर में। संगीत प्रीतम का है और फिल्म का नाम है दिल तो बच्चा है जी।

0: तनु वेड्स मनु। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहित चौहान की आवाज़ में, गीत राजशेखर का था और संगीत था कृष्णा का।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर। कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोनिंग फरमाइस। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
3: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं।
1: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
4: गीत मेरे होठों को गया कोई।
1: कभी कोई किस्सा याद आता है।
3: यादे,
1: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
1: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए

कार्यक्रम के अंत में सुनिए शबीर अहमद की रचना, राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाज़ में। संगीत हिमेश रेशमिया का है और फिल्म है डेंजरस इश्क।

0: चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को हैं। समाचार अब हम दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
1: सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में यात्रा करके लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। मंत्रालय ने कहा कि वो सतर्क और पूरी तरह से तैयार है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉ. मनोज शिरूरे को भी गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबसे बड़े लक्ष्यों को भी सतत प्रयास, धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम को साझा करते हुए कहा कि देश के लोग इसी भावना से प्रेरित होकर भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। इजराइल के हवाई हमलों में दक्षिणी लेबनान में 31 लोग मारे गए और 40 अन्य घायल हो गए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजराइल और हिजबुल्ला के बीच बढ़ते तनाव के बीच कल कई कस्बों और गांवों को निशाना बनाकर हमले किए गए। अधिकारियों ने बताया कि सबसे घातक हमला दक्षिणी शहर टायर के पास बुर्ज अल शिमाल इलाके में हुआ, जहां 14 लोगों की जान चली गई और 16 अन्य घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के समृद्धि सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज मिला जुला रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 40 अंक बढ़कर 76,050 पर था, जबकि निफ्टी 20 अंक की वृद्धि के साथ 23,932 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्रोताओं की पसंद पर आधारित कार्यक्रम। ईमेल भेजो, छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ।

कार्यक्रम सुनैया जम्मो श्रोता संगवारी मनला, आज के कार्यक्रम ले अनुभा अग्रवाल के मयाले भरे राम राम।

त आवा संगी हो कार्यक्रम ला शुरू करथन अउ सुनथन धुरवा राम मरकाम अउ दुखिया बाई के गाए ये गीतला जेखर बर हमला फरमाइशी ईमेल पठोइन हे लाखाटोला बिडोरा ले मनु यादव दुर्गेश गोपीचंद मुस्कान अउ रुक्मणी यादव सहसपुर लोरमी ले छोटकू साहू राम साहू लोकेश संतोष अउ अभिषेक विश्वकर्मा लोहारीडी जिला कवर्धा ले हैं अशोक कुमार लीलेश्वरी खुशांत निशांत साहू लोरमी ग्राम करुहा नारले गोमती अउ काजल रजक धमनी राजिम ले हैं दुष्यंत कुमार बंजारे आशीष कुमार बंजारे खमारमुड़ा ले शिवाय गिरी गोस्वामी एकांशी गोस्वामी यहीं ले हैं सतीश गिरी अवश्रेयांश गिरी गोस्वामी लोरमी ग्राम तिलकपुर ले चंद्र कुमार चंद्रेश कुमार मालती मयंक मरावी बाटापारा ले हैं हिमकेश्वर करण राहुल अव चंपा साहू भंवरपुर बसना ले राधेश्याम चंपा राजू नेहा अव जगदीश देवांगन गंडई पंडरिया ले हैं दरियाना मोटवानी अनीता राजेश अव मुकेश मोटवानी भूत कछार लोरमी ले दुर्गेश मरकाम निर्मला दीपक प्रीतम अव धनराज मरकाम बघेरा दुर्गले संतोष सार्थक समर्थ शौर्य नामदेव उच्च भट्टी बिलासपुर ले हैं मुकेश मधु आशी शिवन्या अव अनु गोस्वामी तो ले वो सुनाओ अपन पसंद माँ ये गीत

0: छत्तीसगढ़ के भूया माँ चित कहे हमर कुरिया,
1: चित कहे हमर कुरिया, चित कहे हमर कुरिया।
0: छत्तीसगढ़ के भूया माँ चित कहे हमर कुरिया,
1: चित कहे हमर कुरिया, चित कहे हमर कुरिया।
0: गाँव के ताई दीदी बहनी बड़े अब्बड़ है मोर प्रिया,
1: अब्बड़ है मोर प्रिया, अब्बड़ है मोर प्रिया।
0: गाँव के ताई दीदी बहनी

कार्यक्रम के अगला गीत बर आवाज है बैतल राम साहू और आशा साहू के औ ये गीत ला सुने बर हमला फरमाइशी ईमेल पठोइन है धमनी राजीम ले दुष्यंत कुमार और आशीष कुमार बंजारे ग्राम जैसा कर्रा चारामा ले असाडू राम खिलावन और ऋषभ निषाद भाटापारा ले बचकमल मोतीलाल यादव बसंत भृगु विनय ठाकुर महागांव यवतमाल ले हैं संतोष खड़से और विनोद खड़से तखतपुर ले मिश्रीलाल विश्वकर्मा मीरा देवी विशाल मानस गंगा देवी बठेना पाटन ले अनीता वर्मा नीलू वर्मा रामबन बघेरा ले योगेश और आशा सारवा देवरी भाटापारा ले के आर साहू आकाश साहू शांतिनगर भाटापारा ले हैं पुनियाबाई और नारायण यदु और संबलपुर ले मास्टर दिव्यांश साहू और गुड्डू साहू।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कार्यक्रम के अगला गीत ला सुने पर हमर ये श्रोता मन फरमाइश ईमेल पठोइन हैं। लालपुर मारोले कीर्ति कुमार ध्रुव, श्रीमती संतोषी ध्रुव, बीजे तला जालबांधा ले भिनेश्वरी सुनीति कुमारी बाई मथुराबाई यदु, कुल्हारी कोट पांडुका ले नरोत्तम नीतू कश्यप, भैंसमुंडी मगरलोड ले खेमेश्वरी अवकुमारी बाई, भागवत राम औ तुलेंद्र कुमार, मानेगांव मलाजखंड ले हैं शिव कुमार शिवजे, श्यामा शिवजे, हथनीपारा भाटापारा ले चोवाराम औ हरीश वर्मा, कोयलारी बिपतरा ले कैलाश चंद्राकर, विकास चंद्राकर, गंडई टिकरीपारा ले हैं जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई दीपक कुमार औ जय श्री देवांगन, मेरठ ले अनिल जैन, संयम मुस्कान औ मास्टर जिव्यम जैन, दतरेंगी भाटापारा ले हीरामणि पारसमणि पुष्पेंद्रमणि औ नोखिलाल वर्मा, औ छछान पहाड़ी अंबागढ़ चौकी ले हैं रधन राम औ गायत्रीबाई साहू। आप सब सुनना चाहत हो चतुर राम साहू औ साथी मन के गाए ये गीत।

0: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र ले आप मने समय सुनत हो कार्यक्रम, ईमेल भेजो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ। ए कार्यक्रम पर औ फरमाइश भेजिन है हमार ये श्रोता मन, भाटापारा ले दान सिंह रावत दानू, पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ रावत, ग्राम कोयलारी कवर्धा ले हैं अघनिया चंद्राकर, कात्यायनी अवभाव्या चंद्राकर, ग्राम सहम अलगी ले सुखनंदन चंद्रवंशी, शिवरानी आकाश चंद्र और प्रतिभा चंद्रवंशी, हस्ता नंबर दो ले लक्ष्मी साहू, गीतांजलि आकांक्षा साहू, ग्राम बोगाटोला मोहला मानपुर ले हैं मालिक राम, सविता देवी सिन्हा, तारामती मुनिंद कुमार सिन्हा, ग्राम नेवई उतई ले विक्की देवांगन, उर्वशी जतिन जयंत कुनिका देवांगन, महासमुंद ले भीष्मदास मानिकपुरी, नर्मदा मानिकपुरी और लक्ष दीपक दास, कोड़ापार अभनपुर ले हैं नारायण सेन, पंकज कुमार सेन, डबरापारा सौंगा मगरलोड ले कोमल तोषण, विनायक सेन, ग्राम नागर कोहरा राजनांदगांव ले झग्गर राम साहू, जामुन देवी समीक्षा और आराध्या साहू, यहीं ले हैं प्रेम पूजा दुष्यंत और प्रांजल साहू, ग्राम पथरिया धमधा ले शेष नारायण और पिंटू साहू, ग्राम मड़ौदा जालपांधा ले पारखदास साहू, किरण साहू और ग्राम सलोनी घुमका ले देवचरण और हेमा साहू। आप सब सुनना चाहत हो गजानंद तिवारी और साथी मन के गाए ये गीत।
1: ये सांस हमें गिनती के भैया, ये सांस हमें गिनती के, दिन कैसे

0: थोमा खाण के समय रही जब
1: थोमा खाण के समय रही जब
0: थोमा खाण के समय रही जब
1: थोमा खाण के समय रही जब
0: दूध मलई हम खात रहें तब
1: दूध मलई हम खात रहें तब
0: दूध मलई हम खात रहें तब
1: दूध मलई हम खात रहें
0: अब रेथन पसिया पी के भैया रेथन पसिया पी के दिन कैसे

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: ग्राम पंचायत घोंधला उदयपुर ले हैं जीवधन सिंह पैकरा, धुरनी करिश्मा कलेश्वर, सोमार साय पैकरा, बठेना पाटन ले बलकरण वर्मा, सुजान वर्मा, लोरमी ग्राम चचेड़ी ले जगदीश सिंह मरावी, सावित्री चमन अमन सुमित मरावी, ग्राम सिवनी खुर्द रेंगाखार ले तातू राम पालके, मथुराबाई हेमंत अवचंद्रहास पालके, बाबा कुटी ओफरा पाटन ले यमुना हेमलता तुलसी अवगोपी साहू, संतोषी नगर रायपुर ले हैं रोशन गोपाल आकाश अवसाक्षी ठाकुर, भरदा कला साजा ले रोम कुमार साहू किरण साहू, जूट मिल रायगढ़ ले तुलसी सोनम मोहन रेशमा औ सोहन बगाड़िया, आमा खुड़ा रेंगाखार ले देवी सिंह नेताम राजेंद्र सिंह नेताम, जवाहर नगर दुर्ग ले आरसी कामड़े करुणा कामड़े औ मदनपुर कवर्धा ले हैं श्रवण कुमार औ योगेश साहू। आप सब सुनना चाहत हो रियाजुद्दीन मिर्जा औ कांति फरीदा के गाए ये गीतला।

धनुषलाल यादव और अनसुईया मानिकपुरी के गाय गीत ला सुने पर हमला फरमाइश पठोइन हैं। रवेली फिंगेश्वर ले राम अवतार वर्मा सौरभ और चंचल यादव गोवर्धन रोड मथुरा ले हैं अनुश्री सूर्या यामिनी और ज्योति सूर्या ठेठवार पारा कनेरी ले सनत कुमार यादव मड़ौदा जालबांधा ले दिलीप दास साहू कौशल साहू यहीं ले हैं सोहद्राबाई और माधुरी साहू ग्राम उदान दनियाप गंडई ले रामविलास जंघेल शांतिबाई तुषार कुमार और साहिल कुमार जंघेल ग्राम भलेसर महासमुंद ले बलराम सेन इंदु सेन खमार मुड़ा ले सतीश गिरी गोस्वामी श्रेयांश गिरी गोस्वामी ग्राम बठेना पाटन ले अंजलि और ज्योति वर्मा सौंगा मगरलोड ले फनेश कुमार चंदन सावित्री देवी चंदन पाटन अमलेश्वर ले रेयांश ठाकुर गुड़िया सूरज और ज्योति ठाकुर और महादेव घाट अमलेश्वर ले हैं मिथिलेश ठाकुर तारिणी ठाकुर डोमन और सुमन ठाकुर। तो ले वो सुनाओ अपन पसंद माँ ये गीत ला।

कार्यक्रम के अगला गीत ला गावत हैं भगवती साहू और उखर संगवारी मन और फरमाइश आप सब श्रोता मन के है। ग्राम मेचका सोंढूर ले भूपेंद्र नाग और पूर्णिमा नाग, ग्राम पहरा ले पोषण बंछोर और चंद्र किरण बंछोर, डोंगरगांव ले राधिका राष्ट्रपाल गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, हटौत बाजार लाहौद ले हैं कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार समीर और राजकुमारी पटेल, ग्राम कुरमा ले दिलदार मिरी और मजेदार मिरी, थरगांव ले अनार प्रसाद साहू, गांधीनगर गुजरात ले सुरेश मंजुला राठौड़ विशाल और निशा, हसदा नंबर दो ले कमलेश कुमार जितेंद्र और पायल साहू, बिनौरी फिंगेश्वर ले टीकम राम और योगेवर साहू, पीपरपारा पालचुआ मुंगेली ले हैं उत्तरा परमेश्वरी योगिता नितिन और वंशिका दिवाकर, मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार और योगेश यहीं ले हैं राहुल और सोनकली साहू, बागबहरा भदरसी ले पन्नालाल सेन खुशबू तारा सेन।

अखिलेश साहू अउ साथी मन के गाय गीत ला सुने बर फरमाइशी ईमेल पठोइन हे। रिंगनी ले दिनेश अउ करुणा वर्मा, मन की लोरमी ले नारायण रजनी तुषार समीर खांडे, ठेठवार लंचिया ले हंसाराम मंडावी गीता मंडावी, धमधाग्राम सुखरी कला ले हैं अमित शकुन आरुषि ओशिका अंजलि जंघेल, धरदेई ले पंचराम सोनी प्रतिभा डॉली अउ मिथिलेश सोनी, ग्राम गेंदा टोला राजनांदगांव ले बीरेंद्र कुमार अउ गजेंद्र गुप्ता, यहीं ले हैं अंजलि योगिता गुप्ता, बकरकट्टा साल्हेवारा ले महेश अउ लोचन पटेल, गरियाबंद ले लालचंद अउ यशवंत, जेवरा सिरसा हिवारा दुर्ग ले मिलिंद कुमार साहू रजनी देवी बेना देवी अउ जवाहर साहू, अउ मयारू डेरा निवारी ले योगेंद्र दास बघेल अउ उर्वशी मानिकपुरी।

एही गीत संग अब होगे है हमर जाए के बेरा, फिर जाए के पहली आप मन ला बता दन कार्यक्रम मा गीत ला जोड़े रहिन बीर भान साहू। तो अब देवो अपन संगवारी अनुभा अग्रवाल ला विदा, राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ईमेल भेजो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:55 होने को हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। कल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय। पेंड्रा में बदमाशों ने सराफा व्यापारी की गोली मार कर की हत्या। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हो सकती है वर्षा। अब समाचार विस्तार से। कल शाम हुई छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों और निकायों में जमा स्क्रैप सामग्री के पारदर्शी निस्तारण के लिए एमएसटीसी के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध की अवधि अगले 3 वर्षों तक बढ़ाने का फैसला लिया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा बिटुमिन यानी डामर की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए सड़क निर्माण कार्य प्रभावित न हो इसके लिए 1 अप्रैल से 30 जून तक ठेकेदारों को सीमित और आंशिक मूल्य राहत देने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कल रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य मुलाकात की। बैठक में छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन बढ़ाने, ऊर्जा सुरक्षा, खनन क्षेत्रों में आधारभूत संरचना और रेल लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी के विस्तार पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने स्वच्छ ऊर्जा, कोयला गैस और सौर ऊर्जा विकास के जरिए निवेश और रोजगार के नए अवसर बढ़ाने पर भी जोर दिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब IAS, IPS और IFS अधिकारियों को 58% की जगह 60% महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़ा हुआ DA 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील ने सहकारी समितियों को मजबूत बनाकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया है। रायपुर में आयोजित राज्य सहकारी विकास समिति की बैठक में उन्होंने हर ग्राम पंचायत में सहकारी समिति संचालित करने के निर्देश दिए। बैठक में प्राथमिक कृषि साख समितियों यानी पैक्स को दुग्ध मत्स्य पालन और लघु वनोपज गतिविधियों से जोड़ने पर चर्चा हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाने के लिए माइक्रो ATM और रुपे कार्ड उपलब्ध कराने की समीक्षा भी की गई। मुख्य सचिव ने सहकारी शक्कर कारखानों में इथेनॉल संयंत्रों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में बीती शाम कुछ बदमाशों ने सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना पेंड्रा के कोटमी साप्ताहिक बाजार की है। बदमाशों ने बीच बाजार में व्यापारी पर गोली चलाई और जेवर लूटकर मौके से फरार हो गए। घायल व्यापारी को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश में अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में ग्रीष्म लहर चलने की संभावना है। वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर और कोंडागांव जिलों के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने, तेज हवा चलने और वर्षा होने के आसार हैं। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने ईद उल अजहा यानी बकरीद के अवसर पर आज के बजाय कल 28 मई को अवकाश घोषित किया है। ये आदेश प्रदेश के सभी कार्यालयों, विभागों और सरकारी संस्थानों में रहेगा। इस बीच प्रदेश में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए नवा रायपुर स्थित नंदनवन जंगल सफारी 28 और 29 मई को बंद रहेगा। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने बताया कि यह निर्णय वन्य प्राणियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने बताया कि नंदनवन जंगल सफारी पर्यटकों के लिए 2 दिन अस्थायी रूप से बंद रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय। पेंड्रा में बदमाशों ने सराफा व्यापारी की गोली मार कर की हत्या। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हो सकती है वर्षा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ ही में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। बारह बजे हैं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार ना किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
3: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कलां दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
3: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
2: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
3: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओ, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
2: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को, आज हम किस फूल की बात करेंगे?
3: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
2: वाह जी जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
3: बिल्कुल।
2: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
3: विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है
2: जी।
3: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
2: जी, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुँचा और फिर सारे यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
3: जी, अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से, जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ओटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे तुलिपा कहा जाता था। बाद में ये शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
2: जी, रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
3: जी,
2: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है।
3: जैसे
2: जैसे लाल रंग ट्यूलिप प्रेम का, पीला ट्यूलिप मित्रता का,
3: जी,
2: सफेद ट्यूलिप क्षमा और शांति का, और बैंगनी ट्यूलिप राजसी गरिमा का।
3: जी, इसीलिए अक्सर अवसर और भावना के अनुसार ये ट्यूलिप फूल किसी को दिए या भेजे जाते हैं।
2: जी,
3: विमलेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास जिसका उत्तर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे, विशेषकर वे जो बागवानी में रुचि रखते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि ट्यूलिप फूल कैसे उगाया जाता है?
2: अजीत जी, सबसे रोचक बात तो ये है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता था, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल उगा सकता है। जहाँ तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
3: जी श्रोताओ, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
2: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
3: हाँ, वो क्या?
2: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
3: ये घटना क्या थी?
2: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
3: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओ, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जहां तक भारत की बात है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
2: तो अजीत जी, समाप्त करने से पहले एक और बड़ी रोचक बात श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गंधहीन होते हैं। कुछ प्रजातियां ही हैं जिनमें बहुत हल्की सुगंध आती है। तापमान और रोशनी के अनुसार अपनी पंखुड़ियां खोल या बंद कर सकते हैं। ये अक्सर रात को लगभग बंद हो जाते हैं
3: और सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियां खोलकर सूर्य का स्वागत करते हैं, मानो कह रहे हो गुड मॉर्निंग सन।
2: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
3: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओं कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा।
3: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
3: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
2: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
3: जी।
4: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
5: बेटा तुम

0: 50 रुपयों का क्या करोगे?
1: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
0: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
1: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है, मुझे स्कूल का काम करना है।
0: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
1: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
0: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
1: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
0: बेटा, अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
1: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
0: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
1: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
0: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
2: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
0: मश्क।
3: होशियार,
0: समझदार।
3: पेंसिल तराश,
0: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
3: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
0: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
3: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
4: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
5: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
3: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे।
6: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
3: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
6: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं, उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाएं, हो नहीं सकता।
3: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
7: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
8: क्या बात है,
7: सुनकर ही जोश आ गया।
8: हाँ
7: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
8: युद्ध में तो जाना ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
5: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा, आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया, कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन 1, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। 2 रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
9: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
5: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन 2, दिन 19 जून 1999। स्थान 0.5140। 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे 2 हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल 1 रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप

0: कितने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा, 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था, उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया।
1: हमला करो दुर्गा माता की।
0: और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
2: कैप्टन विक्रम, 5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
3: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
2: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
3: धन्यवाद।
0: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: और अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
3: चलो संभल कर।
1: अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
2: जी सर।
1: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
2: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
2: जी सर।
4: हमला करो दुर्गा माता की जय। भारत माता की जय। चलो बच्चे चले भाई चलो।
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबराकर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
5: साहब जी आप मत जाइए, मैं जाता हूँ।
1: नारायण तू भी बचवा रहा है, पीछे हट।
5: नहीं लेकिन साहब जी
1: मैंने कहा ना पीछे हट जा, मैं जा रहा हूँ।
5: साहब जी
0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
1: क्या हुआ तुम्हें? नहीं।
0: और तभी

उन्होंने वीर गति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया, तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: NCERT ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है।

यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं बेगम अख्तर।

0: सुगम संगीत अभी आप सुन रहे थे, कलाकार थी बेगम अख्तर। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1 बजने को है समाचार, अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागजी की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता कि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। CBI ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल ने कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग भारत के प्राचीन ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है और निवारक स्वास्थ्य देखभाल तथा संतुलित जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार का संविदी सूचकांक सेंसेक्स आज दोपहर के कारोबार में 41 अंक बढ़कर 76,051 जबकि निफ्टी 21 अंक के वृद्धि के साथ 23,935 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में पहले आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में जान निसार अख्तर का लिखा गीत। संगीतों पी नैयर का है और फिल्म का नाम है छू मंतर।

Akashwani at 90. चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म तराना का गीत प्रेम धवन के बोल।

0: फंटुश इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं आवाज़ें किशोर कुमार और आशा भोसले की। साहिर के बोल एसटी बर्मन का संगीत।
1: हे हे हे हे हे हे हे हे।

हो ठेले पे और मैं पैदल, तू हो ठेले पे और मैं पैदल। हमने किसी पे डोरे डालने हैं, ओ डोरे, हमने किसी

कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में इंसान जाग उठा इस फिल्म का गीत। शैलेंद्र के बोल हैं, संगीत एस टी बर्मन का।

इंसान जाग उठा, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें थी, एसडी बर्मन का संगीत। और इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:25 हुए हैं। अब समय है कार्यक्रम विवरण का।

स्पोर्ट्स केंद्र रात 8:30 पर, चर्चा का विषय है सुनिए का रात 9:30 पर। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद यानी 1:30 पर सुनिए का रूपक छत्तीसगढ़ी लोक गीतों में पर्यावरण चेतना, आलेख डॉक्टर पीसी लाल यादव का होगा, प्रस्तुति होगी नेमी चंद साहू की।

युववाणी कार्यक्रम 5:10 पर आजकल का विषय होगा टाल मटोल की आदत को छोड़ें। सुनिएगा पत्र मिला और युगल गीत।

सुगम संगीत शाम 6:30 पर कलाकार होंगी छाया चंद्राकर और साथी, और इसी कार्यक्रम में रात 8:15 पर कलाकार होंगे चंद्र मोहन वर्मा।

शाम 7:21 पर चौपाल में सुनिएगा चिट्ठी मिली और आज की बात का विषय होगा फूलों की सब्जियां स्वाद पोषण और सेहत का त्रिकोण। आज की सलाह में कद्दू वर्गीय फसलों में कीट एवं रोग प्रबंधन, इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर एस एम अली हुमायूं।

रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगी पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग मारवा।

प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का प्रसारण समय होगा शाम 5 बजे। चित्रपट संगीत आप सुन सकते हैं दोपहर 2 बजे, 2:30 पर, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 9:15 पर और रात 10 बजे। श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर बता दें, स्पोर्ट्स कैन आप सुनेंगे रात 8:30 पर। चर्चा का विषय है रात 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। युववाणी कार्यक्रम शाम 5:10 पर। आजकल का विषय होगा टाल मटोल की आदत को छोड़ें, सुनिए का पत्र मिला और युगल गीत। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए रूपक, छत्तीसगढ़ी लोक गीतों में पर्यावरण चेतना। आलेख डॉक्टर पी सी लाल यादव का, प्रस्तुति है नेमी चंद साहू की।

आहा, कत्तिक निक लगत हे ये बांसुरी के तान, कुलक कुलक जाथे मन परान। आहा, मीठ मीठ धुन अंतस म घूरत हे, मया पीड़ित के पुरिया पुरथे। कौन बजात हे बांसुरी, कहाँ बाजत हे बांसुरी, कैसे बाजत हे बांसुरी, चल के देखो तो सही। ओहो, हमर गांव के ये तो चरवाहा हरे, खरी मंझनिया दरिया के तीर, बर पीपर आमा अमली कौहा मऊहा लीम गस्ती के जोड़ जोड़ छाव, रुख तरी पगुरावत गाय गरुआ, छेरी पठरू जीव जंतु, चीव चीव कर चिरई चिरगुन, जुड़ जुड़ पुरवाही लहर लहर लहरा के तरिया के पार छुवत पानी के लहरा, पार में गुहार पारत खेलत कूदत लैका। आहा, यहाँ तो सरक के सुखे जिंदगी मा, सरक के सुख देवैया रुख है, रुख जेखर कई ठन नाव है, कई ठन किसम है, बर पीपर आमा अमली कौहा मऊहा लीम गस्ती बोईर बीही साजा बीजा, सरई सैगोना कर्रा हर्रा औरा धौरा, बांस खमार अनगिनत अनसंहार ही रुखराई। मेड़ पार खेत खार नदिया नरवा तरिया पार, धरती के सिंगार आए रुखराई डोंगर पहाड़। आमा डार कोयली कुहके तितली भौरा रस चुहके, सुआ मैना बोले बैना निहारे निस्तिन नैना।

रुख राई कोने, रुख राई हमर बड़े भाई, धरती हमर महतारी, सुख दुख के संगवारी, हम सब जीव जंतु उखर संतानन। जब धरती के निर्माण होइस, जल थल के भाग बनिस, त धरती में पहली रुख राई वनस्पति पैदा होइस, फिर मनखे संग दूसर जीव जंतु के जन्म होइस। जे नागु ऐस तेन बड़े, पाछू ऐस तेन छोटे, तभी तो कहितो रुख राई हमर बड़े भाई। रुख राई धरती के सिंगारी, उखर मया और दुलारी, पेड़ पौधा है तभी धरती हरियर है, उखर अचरा फरियर है, धरती के मान ही गौन है, धरती ले बड़े रुख राई ले बड़े कौन है। पेड़ जिंदगी के सासा आए, पेड़ मनखे के परिभाषा आए, पेड़ ले सुख है, पेड़ ले है सपना, पेड़ जिंदगी के आशा आए।

पैसे तो मनखे पर प्रकृति के सारी जिनिस पूजनीय है। मनखे प्रकृति के पुजारी है। फिर मनखे की जेन विकास यात्रा शुरू होइस वो पेड़ पौधा ले ही शुरू होइस। जन्म ले लेके मरण तक, शीश ले लेके चरण तक, धरती ले लेके गगन तक, सबे ठौर मा रुख राई हमर संगवारी। डोंगर पहाड़ के घनघोर जंगल, गांव शहर के महर महर करत फुलवारी, खेत खार के अन्न धन्य, डोंगरी ठाठा के कांदा कुसा पान पतौवा सब रुख राई के चिन्हारी। जेवन जड़ी बूटी कपड़ा लत्ता घर कुरिया बर काड़ कुरई कहाँ ले आते। एखर ले बड़े कौन देवता धामी है जेन उछ्वास लेके सांस देते, जिनकी जिए पर विश्वास देते।

लोक जीवन में प्रकृति और संस्कृति की बड़ महत्तम है। लोक मानस तो प्रकृति के पुजारी आए। सरई, साजा, मऊहा, बर, पीपर, लीम, यही लोक के मंदिर है। लोक देवी देवता इखरे छाव तरी बिराज थे। लोग तो पेड़ पौधा ला देवता धामी मान के ओखर पूजा करते। नहीं पतियावाओ तो परछो लो। हरेली, भोजली, जवारा, कमरछठ, गोवर्धन पूजा, औरा तरी, बसंत पंचमी, ये सब काए यही ताए प्रकृति के प्रार्थना ओखर पूजा। रुख राई के सम्मान के उदिम यही रुखराई के छाव मा कतको संत महात्मा अपन तप, ध्यान और योग ले ज्ञान के प्राप्ति करीन। जगला मानवता के संदेश दीन। कुआं बौली खनाए ले, तरिया कोड़ाए ले, धर्मशाला बनाए ले जौन पुन मिलते, उही पुन प्रताप ओखर ले आगर पेड़ लगाए ले मिलते। पेड़ पथरा सही के घलो हमला फड़ देते। तुलसीदास जी कहे हैं।

0: आमा अमली बर पीपर सरई औ सई गोना कौहा मऊहा तेंदु चार अमृत भरे दोना चिरई चिरगुन फुदक के गाथे डारा डारा ददा दाई कस पेड़ हवे जिंदगी के सहारा
1: धरती के सिंगार करे बर ले

तैहा के एक कहनी सुरता आवत हे जेन ला मोर डोकरी दाई सुनाए रहीस हे। एक झन सियान रहीस हे, चुंदी दाढ़ी मेछा निचट पाक के पड़रा होगे रहा है, चांदी बरोबर दिखे, लाठी थे किरेंग। एक दिन लगती असाड़ वह गांव के बाहर बाट में आमा के पौधा लगात रही से। उहिती ले एक जन 10-12 बछर की लईका अपन चक्का ला ढुलावत आत रही से। सियान बबला पौधा लगात देख के ठोठक के खड़ा हो गए, अकबका के पूछते, तय काय करथस बाबा? कहते, बेटा मैं आमा के पौधा लगात हूँ। लईका फिर कहते, बाबा तय सियान होगे हस, ये पौधा ला पेड़ बनत कई साल लगी, एखर फल ला तय नहीं खा पाबे, फर लगत ले तो तय मर हर जबे, तब पौधा लगाए से का मतलब? बाबा हा लईका ला तीर मा बला के समझाते, कहते, ठीक कहा थस बेटा, मैं नहीं खाऊं तो का होगे, तुमन नहीं खाऊगा? उत्ती बगीचा डहार अंगरी दिखावत बाबा हासत गई थे, देख बेटा वो बगीचा ला मोर पुरखा बाबा ददा लगाए रही से, तेखर फरला मैं जियत भर खायो, आज मे लगावत हो तो मोर बेटा नाती नतुरा मन नहीं खाही। बाबा के गुरतुर गोठ ला सुन के लईका घलो बाबा संग पौधा लगाए पर लग गए। पुरखा के लगाए आमा अमली मिठ मिठ हम खावत हन, जुड़ छैया माँ बैठ बैठ के सरक के सुख पावत हन, हमरो फरज बनथे के हमू कुछ ऐसने उदिम करन, जिखर पुन परताप ले भुइया के कोरा मसुरतावत।

गांव के मनखे बड़ सुजानी को बड़ उदार होती। वो अपन संस्कार ल नहीं भुलावे, तीज तिहार परब विशेष में रुख राई की पूजा करती। बर पीपर तुलसी माँ रोज पानी रितो के पुन के भागी बनते। अंगना के तुलसी के दे उठनी माँ बिहाव करते। इखर पाछू धार्मिक मान्यता है, फिर इखर ले बड़ी बात तो इखर वैज्ञानिक कारण है। ये तो एक उदाहरण है, सरी पेड़ पौधा वनस्पति मानव कल्याण बर जीते फूलते फड़ते और माटी में मिल जाते। रुख राई हमला ऑक्सीजन देते। सोचो पेड़ पौधा नहीं रही त मनखे और दूसर जीव जंतु कैसे रह पाही। वट सावित्री में बर के पूजा, सोमती अमावस्या में पीपर के पूजा दाई माई मन के आस्था और विश्वास के प्रतीक आए।

गांव म तो आमा पेड़ के घलो बिहाव होते। आमा पेड़ लगैया घर वाली मन उखर बिहाव कर लेते, तभे उमन वो आमा के फर ला खाते। ऐसन बिहाव ला अपन सग बेटी बेटा के बिहाव के संग म करके पुन के भागी बनते।

0: रुख राई हा दाई ददा रुख राई संतानी, रुख राई जिनगी देवैया सिरतुन भगवानी। रुख मा घलो जीव होथे औ जीव मा शिव होथे, रुख राई तो सौहे संगी ब्रह्मा विष्णु समानी।
1: मोरी जत

आज कतेक सुवार्थी हो गए मनखे, अपन सुवारत सीती जंगल उजारत थे, रुख राईला अंधा धुंध काटत थे, सुख सुविधा ला छाटत थे, आंखी मूंद के दुख पीरा बांटत थे, विकास विकास विकास के नाव मा विनाश करत थे। पेड़ है त बादर है, बादर है त पानी है, और पानी ही त जिनकानी है। इही पानी ले मनखे के पानी और मनखे के बानी है। रुख जुड़ छाव देथे, जुड़ पुरवाही देथे, उही जुड़ पुरवाही ले बादर अपन माया के अमृत बरसाथे। तब धरती दाई के अंग अंग हरियाथे, किसान अपन पछीना उगराथे, तब खेत खार में सोना फसल लहलाथे। पेड़ बाछी तब जिंदगी बाछी, दुनिया मा हंसी खुशी बाछी।

पेड़ ले हवय बादर औ बादर ले पानी, पेड़ लकाट के मूरख झन करतय नादानी। सोना चांदी हीरा मोती ले पेट नहीं भरय, रुख राई ले मिलथे फर फूल जीवन पानी।

पेड़ पौधा हमर जिंदगी के आधार है, हमर जिए के साधन है। आज हम का करथन, अपन सुख सुविधा पर जंगल ल उजारथन, रुख राई ल काट के कंक्रीट के जंगल खड़ा करथन, विकास के नाव म रुख राई के विनाश करके खुद के पाँव म टंगिया मारथन। सियान मन कहे है, बर काटे बउला भये, पीपर काटे चंडाल, मौरत आमा झन काटबे जिंदगी के कोन हवाल। पेड़ तो हमर मीते, हमर मितानी, तुमन जानथो ना, हमर छत्तीसगढ़ में मितानी बदे के परंपरा है। और ये मितानी परंपरा के माध्यम रुख राई है आए। एक कन सुरता करो तो भला, तो आँखी उघर जही, होत गलती हा सुधर जही। आमा मोर, सोन पत्ता, दौना पान, भोजली, जवारा, चटपटी, मोगरा बत के संगी जौहरिया मया मा बंधा जथे। औ कथे, सीताराम आमा मोर, सीताराम भोजली। मितानी के नता लहू के नता ले घलो ज्यादा ठाहिल होते। ऐसन सुखर उज्जर परंपरा रुख राई पेड़ पौधा

छत्तीसगढ़ी लोकगीतों में पर्यावरण चेतना, ये रूपक अभी आप सुन रहे थे। आलेख डॉक्टर पीसी लाल यादव का था, वाचन स्वर निशा नैयर का और प्रस्तुतकर्ता थे नेमी चंद साहू। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में पहले आपको सुनवा रहे हैं फिल्म साजन का गीत, आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की। समीर के बोल हैं नदीम श्रवण का संगीत।

जो जीता वही सिकंदर इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ों में, जतिन ललित का संगीत बोल मसरूह की।

0: चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:15 होने को है। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
3: कमीशन की तरफ से दिल्ली में SIR टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और दो फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए।
1: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है, जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक ग्लास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी।

0: के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगतोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
3: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
1: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
4: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
5: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
1: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज

0: हाल ही के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत कार्यक्रम में। पहले आपको सुनवा रहे हैं ओंकारा इस फिल्म का गीत, आवाज़ें श्रेया घोषाल और साथियों की, बोल गुलजार के।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

रूप कुमार राठौड़ और चित्रा की आवाजों में अब आपको सुनवा रहे हैं गुलजार का लिखा गीत। फिल्म का नाम है फिलहाल। संगीत है अनु मलिक का।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादें
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए।

सावरिया फिल्म का ये गीत था, शान और साथियों की आवाज़ें थी। और कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं कल हो ना हो इस फिल्म का गीत, आवाज़ें अलका याग्निक और शान की, शंकर एहसान और लॉय का संगीत है, गीतकार जावेद अख्तर।

0: चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। संध्याकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ 5 बजे हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें।
1: करीब 25,000 करोड़ का ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में, एक जो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स है, उन फेयर प्राइस शॉप्स में जो डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
2: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम का घर है। श्री वैष्णव ने कहा कि हर महीने लगभग 80 करोड़ नागरिकों को राशन की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि गरीबी में कमी आई है और सामाजिक सुरक्षा मजबूत हुई है। श्री वैष्णव ने कहा कि सभी लाभार्थियों का डेटा एक जगह मौजूद रहेगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छ, पारदर्शी और सटीक खाद्य वितरण का लक्ष्य है। मंत्रिमंडल की बैठक में भीषण गर्मी पर भी चर्चा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागजी की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि SIR द्वारा प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के संवैधानिक लक्ष्य से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। CBI ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरूरे को भी गिरफ्तार किया गया है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। परिषद को संबोधित करते हुए भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी स्थापना के बाद से लगातार आतंकवाद, हिंसक उग्रवाद और भारत विरोधी गतिविधियों को पनाह दी है और उनका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सीमापार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम भुगतने होंगे। पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। सेनेटर ने दावा किया कि यह निर्विवाद है कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर रखे जा रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The Supreme Court today upheld the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rolls done by the Election Commission of India and observed that electoral SIR advances the constitutional imperative of free and fair elections. The court held that the Election Commission has the power to conduct SIR under Article 324 of Representation of the People Act 1950 and the rules made thereunder. A bench comprising Chief Justice Surya Kant and Justice Joy Mallya Bagchi pronounced the judgment in the writ petitions, which challenged the notification issued by the ECI in June last year to conduct SIR in Bihar. The court held the SIR process had a nexus with the goal of having free and fair elections. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested two more accused in NEET UG 2026 examination paper leak case. The agency has arrested 13 accused so far in this case from Delhi, Jaipur, Gurugram, Nashik, Pune, Latur and Ahilyanagar. An accused, namely Dr. Manoj Shirure, a Latur-based doctor, has been arrested in the NEET questions leak case. According to CBI, he played a key role in facilitating three students, including the son of an accused coaching centre owner, in getting the chemistry questions from the accused P.V. Kulkarni. Another arrested accused is Tejas Harshad Kumar Shah, who is a physics faculty at Dr. Abhang Prabhu Medical Academy, a Pune-based coaching centre. He got the leaked physics questions from the arrested accused Manisha Havaldar. CBI has so far conducted searches at 49 locations at various places and seized several incriminating documents, laptops and mobile phones. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal held a series of high-level meetings with senior Canadian business leaders and institutional investors in Toronto during the second day of his visit to Canada. The Commerce and Industry Ministry said the meeting was aimed at deepening bilateral cooperation and promoting investments and technology partnerships across strategic sectors. During the visit, Mr. Goyal met Canada's International Trade Minister, Maninder Sidhu, and discussed growing complementarities between India and Canada and underscored the need for a more robust and predictable business ecosystem. India's permanent representative to the United Nations, Parvata Naini Harish, has strongly criticized Pakistan at the UN Security Council, accusing Islamabad of continuing cross-border terrorism and warning that it would face consequences for sponsoring terror activities against India. Harish made the remarks during the UN Security Council open debate on upholding the purposes and principles of the UN Charter and strengthening the UN-centered international system.
4: Pakistan, by waging several wars and inflicting unprovoked aggression against India, and through its continued sponsorship of cross-border terrorism, has violated the principles of sovereignty and territorial integrity and peaceful coexistence. Cross-border terrorism by Pakistan and its doctrine of bleeding India by a thousand cuts exposes its hollow rhetoric. Pakistan's harnessing of the malevolent forces of terrorism, religious extremism, violent radicalism, and anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
3: Amid rising temperatures in different parts of the country, Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to take as many precautions as possible. In a social media post, Mr. Modi advised all to keep themselves hydrated and carry water when stepping out of homes. Stressing about increasing difficulties caused by the heat in daily life, Mr. Modi said that in such a weather, sensitivity becomes a great source of support. The IMD has issued a yellow alert for heat wave conditions today over parts of Delhi, with maximum temperature expected to be hovering between 43 and 45 degrees Celsius. The Met Department has also predicted severe heat wave conditions over Haryana, Chandigarh, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbha. Gangetic West Bengal, Konkan and Goa are also expected to experience hot and humid weather conditions. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad will face Rajasthan Royals in eliminator match this evening in Mohali. The match will start at 7:30 p.m. The winner will take on Gujarat Titans in qualifier 2 on Friday for a place in the final. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं मन भावन। जी हाँ, और अब आ गई अटेंडेंस लेने की बारी। बुधवार तो अपनी सुध बुध सभी यहाँ पे रखकर आपके नाम लिए जाएं। अशोक वर्मा जी, मोहम्मद सैयद अब्बासी जी, अहीरा मान शेंडे, सुदर्शन मुखी, भूषण खेरा, आप सब लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। ताज मोहम्मद साहब भी हैं, संजय साहू पुटियाक भी हैं, सुरेश नारंग, रविन्द्र मोहन दास, और एक मेल आईडी का नाम लिखा है, अपना नाम नहीं लिखा, मास्टर खिल्लू परवेज भी हैं, प्रताप वर्मा, गुरमीत सिंह, राम झिंगल। अब देखते हैं कौन है वो लकी वन। देखिए कितने सारे मेल्स में तो ये लिखा रहा है, कोई भी गाना चला दीजिए, हमारा नाम लेके आए हाय। क्या बात है। देखते हैं कि कौन वो लकी वन है जिसका लकी लकी गीत सुना जाएगा। नौ तपा चल रहा है मित्रों, पता है ना आपको, 25 जून से 2 मई तक, 25 मई से 2 जून तक नौ तपा। सूरज जब रोहिणी नक्षत्र में जाता है वो 9 दिन सबसे ज्यादा गर्मी वाले होते हैं। तभी आप देखिएगा इन दिनों सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े भी होते हैं आपस में, नहीं होने नहीं चाहिए लेकिन फिर भी तप जाता है ना। और ये कहावत है कि नौ तपा जितना तपेगा उतना ही अच्छा सावन आएगा, तो ये बड़े कमाल की बात है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। अकरम हुसैन प्रिंस जी ये चाह रहे हैं सुनना कौन सा वाला गीत। ये गीत आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हम, देखते हैं कौन सा गीत है ये। जुड़े रहिए आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं मन भावन एफएम गोल्ड एआईआर दिल्ली @gmail.com पर ढेर सारे संदेश आ रहे हैं। पहाड़गंज से अनिल मोहन, उषा, टिल्लू नायक और मधु नायक कहते हैं कि इन्हें गीत सुनना है, कोरा कागज था ये मन मेरा, फिल्म है आराधना। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: मन भावन सुन रहे हैं आप। आपके साथ हैं हम रूमी मलिक। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम जिस पे तेरा। बड़ी सुंदर दार्शनिक सी कहानी है कि एक बार एक दुकानदार, जिसकी दुकान में काफ़ी सारी चीज़ें थी, मिठाई थी, बिस्कुट थी, चाय की टपरी होती है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रस होता है, एक बरनी बिल्कुल खाली पड़ी थी। तो एक ग्राहक ने पूछा कि इसमें क्या है, तो उन्होंने बोला इसमें, अरे इसमें कृष्ण है। तो वो समझ नहीं पाया। घर आके ग्राहक को जैसे होता ना एक इनसाइट मिलती है, तो उसे समझ में आया कि अच्छा, जब हमारा मन मस्तिष्क दिमाग दिल खाली होगा तभी तो भगवान बसेंगे। जब आप बहुत ज़्यादा क्लटर्ड होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, तब कहाँ से आराम मिलता है। कहते हैं ना, हमारे गुरुजी कहा करते थे योग कक्षा में, आराम, जब आराम करो तो राम आते हैं। और हमारे साथ कौन आए हैं? हमारे साथ आए बोधराज कोरवाल जी, कमला जी, भालू प्रकाश जी। ये सुनना चाहते एक बड़ा मस्ती भरा गीत, झुका के सर को पूछो मैडम हाउ डू यू डू। तो आइए सुनते हैं ये गीत।
1: ओहो, अरे कोई सांस तो छेड़ो। झुका के सर को पूछो मैडम हाउ डू यू डू।
2: नहीं नहीं नहीं भाभी, ऐसे नहीं, एक्टिंग करके बताओ।

0: I like you.
1: हाँ, अब तुम्हारे भेजे में बात आई, अब आगे बढ़े।
2: ठहरो।
3: अरे तू भी चुप हो जा।
2: खामुखा बीच में बजाता रहता है। अच्छा भाभी, अगर वो नहीं शर्माई तो?
1: अरे पागल बुद्धू, वो अगर नहीं शर्माई तो कोई और शर्माएगी।
4: ऐसा क्या?
1: हाँ।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं मन भावन। तपती तपती गर्मी, कितनी ज्यादा गर्मी। क्या करते हैं गर्मी में, क्या लेते हैं? नींबू पुदीने का पानी लेते हैं। छाछ पिया कीजिए, छाछ तो सबसे ज्यादा अच्छी चीज है और गर्मियों में मीठा रस बहुत जरूरी होता है। अब कई बार लोग कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं या शरबत पीते हैं, देखो उसमें चीनी बहुत होती है और उससे ना कफ पैदा होता है, बहुत ज़्यादा बलगम होती है, तो उसकी जगह तरबूज, खीरा, ककड़ी, है ना, या बेल का शरबत। अरे बेल का फल, बेल जैसा तो कोई फल ही नहीं है, और इतने कमाल का है इस मौसम में। नारियल पानी वगैरह पिया करो, है ना, खुद भी पियो औरों को भी पिलाओ। संदीप मकर, ज्योति मकर, मन्नत भरत, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, जलंधर से लिख रहे हैं इन्हें फिल्म प्यार का मौसम से ये गीत सुनना है, तुम बिन जाऊंगा। आइए जी सुनते हैं ये गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
5: जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता श्रीवास्तव, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ, और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पे मैं अपनी तरफ से बहुत सारा ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ आकाशवाणी को, क्योंकि आकाशवाणी का एक बहुत बड़ा रोल है मेरी जिंदगी में। स्पेशली ड्यूरिंग माय यूथ डेज मैं युववाणी में अपनी कलम से लिखी हुई कुछ कविताएं पढ़ने जाती थी, और वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा था जिसने मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं अपने दिल की बात पूरी बोल पाती थी। बहुत लोग मुझे सुनते थे और मुझे बहुत सारी तारीफें भी मिलती थी, और तारीफ के साथ मुझे जो छोटा सा अमाउंट मिलता था, मैं 90s की बात कर रही हूँ, वो बहुत कीमती होता था। मुझे जो वहां से सम्मान मिला वो भी बहुत ही दिल को छू लेने वाला था। बहुत बहुत शुभकामनाएं आकाशवाणी को।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं मन भावन। धर्मेंद्र छीपा जी, जय दिग्दर्शन कौर जी, हरजिंदर सिंह भाटिया जी हमारे साथ है, कमलकांत गुप्ता जी भी हमारे साथ में है, गिरीश बैम जी जो है ये कह रहे हैं गुड आफ्टरनून रूमी मैडम, प्लीज प्ले द सॉन्ग फ्रॉम द मूवी आंधी। अच्छा जी, इतनी गर्मी में आंधी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं ये। इनके साथ हैं वैशाली, अजिंक्य, रिया, जीत और ये वडोदरा गुजरात से हमको लिखते हैं। तो आइए सुनते हैं ये गीत, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। वैसे शिकवा शिकायत जितनी कम होगी उतने ही ज्यादा आप अंदर से खुश होते जाओगे। अंदरूनी खुशी की बात कर रहे हैं हम।

जी हाँ, जैसे हमने कहा, शिकवे शिकायतें जितनी कम होंगी, अपने आप से उम्मीद बहुत होनी चाहिए, लेकिन दूसरों से कम ही हो तो अच्छा है ना। हम ये कह रहे थे कि अब जो है जाने का वक्त हो रहा है ना। मोहम्मद सैयद अब्बासी जी कह रहे हैं ईद है, हमको ईदी चाहिए। हमारा अकबर एंथनी का गीत सुनना चाहते हैं, तो हमने कहा ठीक है, आपको सुना देते हैं गीत। तो जुड़े रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड के साथ, आप सुन रहे हैं 100.1 FM गोल्ड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। मंत्रिमंडल ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट ने कई अहम फैसले किए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने सार्थक पीडीएस स्कीम में तीन बड़े सुधारों को मंजूरी दी है।
1: सार्थक पीडीएस स्कीम करीब 25,000 करोड़ का ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में, एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप है, उन फेयर प्राइस शॉप्स में जो डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम का घर है। उन्होंने बताया कि हर महीने लगभग 80 करोड़ नागरिकों को राशन की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि गरीबी में कमी आई है और सामाजिक सुरक्षा मजबूत हुई है। श्री वैष्णव ने कहा कि सभी लाभार्थियों का डेटा एक जगह मौजूद रहेगा और स्वच्छ पारदर्शी तथा सटीक खाद्य वितरण का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में भीषण गर्मी पर भी चर्चा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनियों, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरूरे को भी गिरफ्तार किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। और खेलों में, आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक प्रमुख मिनी रत्न उद्यम है, जो उपयुक्त डोमेन विशेषज्ञता वाले 17 युवा पेशेवरों से संविदात्मक आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इनका विवरण इस प्रकार है। पद का नाम YP सॉफ्टवेयर और वेब विकास, पद संख्या 2 YP डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया प्रबंधन, 2 पद YP बाजार और आर्थिक विश्लेषण, 2 पद YP डिजिटल मार्केटिंग ई कॉमर्स, 1 पद YP कंपनी सचिव, 1 पद YP सामग्री प्रबंधन, YP मार्केट रिसर्च, YP सिविल इंजीनियर, YP इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, 1-1 पद तथा YP MSME बिजनेस आउटरीच, 2 पद YP वेंचर इक्विटी फंड के वरिष्ठ विश्लेषक, 2 पद और YP वेंचर कैपिटल फंड के लिए IT विशेषज्ञ, 1 पद। नौकरी के लिए विस्तृत विवरण, नियम, शर्तों और आवेदन पत्र के लिए देखिए NSIC की वेबसाइट www.nsic.co.in। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तारीख रहेगी 8 जून 2026। ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय संबलपुर विभिन्न विभागों में सहायक प्रोफेसर के नियमित पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विभागों के नाम हैं BBA, इस विभाग में 3 पद उपलब्ध हैं, वाणिज्य विभाग में 3 पद उपलब्ध हैं, साइबर सुरक्षा विभाग में 2, अर्थशास्त्र विभाग में 3, अंग्रेजी विभाग में 3, इतिहास विभाग में 3, उड़िया तथा राजनीति विज्ञान में 3-3 पद उपलब्ध हैं। सहायक प्रोफेसर के लिए आवश्यक योग्यता और वेतनमान तथा अन्य शर्तों के लिए देखिए ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय संबलपुर की वेबसाइट www.osou.ac.in। ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय संबलपुर प्रोफेसर के नियमित पदों को भरने के लिए भी आवेदन आमंत्रित कर रहा है। प्रोफेसर पद के लिए विभाग हैं BBA, वाणिज्य, साइबर सुरक्षा, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, इतिहास, उड़िया, राजनीति विज्ञान। इन सभी विभागों में 1-1 पद उपलब्ध है। आरक्षण, योग्यता, वेतनमान तथा अन्य नियम और शर्तों के लिए देखिए ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय संबलपुर की वेबसाइट www.osou.ac.in। आवेदन 22 जून 2026 तक पहुंच जाने चाहिए। भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में प्रबंधक वित्त एवं लेखा के 2 पद उपलब्ध हैं। दोनों ही पद अनारक्षित हैं। योग्यता है भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान अथवा भारतीय लागत एवं प्रबंधन लेखाकार संस्थान के एसोसिएटेड सदस्य आवेदन कर सकते हैं। अनुभव वित्त एवं लेखांकन में न्यूनतम 8 वर्ष का कार्योत्तर योग्यता अनुभव होना चाहिए। और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए देखिए भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग की वेबसाइट www.iimshillong.ac.in/careers। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the New Services Division of Akashvani.

0: नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। योगः कर्मसु कौशलम्। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का दूसरे अध्याय का ये प्रसिद्ध श्लोक हमें बताता है कि योग क्या है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन के संघर्षों और कर्मों के बीच समता यानी संतुलन बनाए रखना ही योग है, यानी कर्मों की कुशलता ही योग है। कुशलता स्वास्थ्य में, विचारों में, व्यवहार में, और यही जो कुशलता और श्रेष्ठता है, यही होती है हमारे जीवन की श्रेष्ठता। और आधे घंटे के इस कार्यक्रम में, डेटलाइन सेगमेंट में, हम आपको बताएंगे कि योग महोत्सव से पहले अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं 21 जून को इस भव्य आयोजन के लिए। इस पर हम और डिटेल में आपको जानकारी देंगे। अगले आधे घंटे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार आपको देंगे और चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। खेल के मैदान की हलचल होगी और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर, और बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। आज के इस अंक में मैं हूं जागृति शर्मा और मेरे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: Hello, Jagriti. Hello and a very warm welcome to all our listeners tuned into the news magazine program Parikrama on 100.1 FM Gold. I'm your host Abhishek Mukhopadhyay, and with me today is of course my co-host Jagriti Sharma. Well, listeners, the 2026 FIFA Football World Cup is just around the corner. And this World Cup, firstly, will have a massive total of 104 matches. Secondly, this World Cup introduces the 48-team format, creating a new round of 32. And lastly, this World Cup will be hosted by three nations, Canada, Mexico, and the United States. And Jagriti, the 2026 FIFA World Cup will see the historic final appearances of legends like Argentina's Lionel Messi and Portugal's Cristiano Ronaldo. So this is an event we are all eagerly waiting for. And also today happens to be the birthday of the naturally talented English midfielder named Gaza. Yes, it's none other than Paul Gascoigne. We'll talk about him later in a program, but first we begin with the news headlines at this hour.
0: जी, सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है।
1: Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take precautions amid rising temperatures. IMD predicts severe heat wave conditions over Haryana, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and Bidar.
0: भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की।
1: CBI arrests two more accused in NEET UG 2026 examination paper leak case.
0: अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया।
1: And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to face Rajasthan Royals in the eliminator match in Chandigarh this evening. And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Yoga Mahotsav, 25-day countdown to the International Day of Yoga 2026. Well, Jagriti, Yoga Mahotsav 25-day countdown to International Day of Yoga 2026 commenced this morning under the aegis of Morarji Desai National Institute of Yoga under Ministry of Ayush at the Western Group of Temples in Khajuraho, Chhatarpur, Madhya Pradesh, renowned worldwide for its magnificent temple architecture and serene surroundings. Khajuraho provides a fitting backdrop for Yoga Mahotsav 2026. The event highlights the connection between India's ancient traditions and holistic wellness, while further strengthening the momentum towards International Day of Yoga 2026.
0: बिल्कुल, योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का एक अनमोल उपहार है इस दुनिया के लिए, जिसमें दुनिया को ये दिखाया गया है कि एक संतुलित, समग्र और स्वस्थ जीवन शैली हम किस तरह से अपना सकते हैं। व्यस्ततम जीवन शैली से जुड़ी जो चुनौतियों का ये दौर है, इसमें योग एक प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित समाधान के रूप में उभरा है। और 25 दिनों की ये उल्टी गिनती हर साल एक महत्वपूर्ण आउटरीच प्रोग्राम के रूप में मनाई जाती है। इसका उद्देश्य पूरे देश में योग प्रदर्शन अभियानों और सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता को बढ़ाना है और जन भागीदारी को और अधिक प्रोत्साहित करना है। योग महोत्सव 2026 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की राष्ट्रव्यापी तैयारियों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और ये पूरे देश में योग की पहुंच का विस्तार करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आयुष मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले जागरूकता को और सुदृढ़ करने, व्यापक जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए 100 स्थानों पर 100 संस्थानों के सहयोग से 100 दिवसीय राष्ट्रव्यापी उल्टी गिनती अभियान का संचालन कर रहा है।
1: Yes, Jagriti, and the theme of the International Day of Yoga 2026 to be observed on the 21st of next month will be Yoga for Healthy Aging. And Union Minister of State for Ayush, Mr. Pratap Rao Jadhav, announced this while attending the Yoga Mahotsav in Khajuraho today. The minister emphasized that yoga represents India's ancient wisdom and plays a vital role in preventive health care and balanced living. He added that to remain healthy and fit at an old age, it is imperative to practice yoga on a regular basis. The minister also noted that yoga, an integral part of India's cultural and spiritual heritage, has evolved into a global movement for holistic health and wellness following the United Nations adoption of the International Day of Yoga in 2014 after the initiative of Prime Minister Sri Narendra Modi.
0: बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है जनभागीदारी के माध्यम से योग को हर स्कूल, दफ्तर, गांव और समुदाय तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। और उन्होंने स्वास्थ्य की देखभाल के रूप में कहा कि योग और आयुष आहार ऐसी पहल संतुलित पोषण, अनुशासित जीवन शैली और समग्र कल्याण को बढ़ावा देती है। और आपको बता दें कि इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव यानी कि योग दिवस का जो समारोह होगा उसका मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित किया जाएगा और इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई है। 25 दिन अभी बचे हुए हैं और इसके लिए अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। योग का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है जिसमें कि छोटे से लेकर बड़े तक, जवान से लेकर बुजुर्ग तक, हर एक को ध्यान में रखा जा रहा है। और यस, योग न केवल रोगों के निवारण के लिए है बल्कि स्वस्थ जीवन शैली और मानसिक जो विकार हैं उनसे दूर रहने के लिए भी इतना अनुपम उपहार है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए हर जगह सुलभ है। तो इसीलिए सरकार इस पर बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर रही है।
1: एब्सोल्युटली जागृति, आई एम श्योर इट विल बी एन मच अवेटेड इवेंट एंड दैट वी विल लुक फॉरवर्ड टू। एंड ऑन द ओकेजन द मिनिस्टर रीलॉन्च्ड द योगा संगम पोर्टल टू फैसिलिटेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस एंड स्ट्रेंथन पब्लिक पार्टिसिपेशन फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा एंड लॉन्च द योगा पार्क पोर्टल to support the development of dedicated yoga spaces across states and institutions. He also unveiled the newly designed yoga t-shirt promoting the message of yoga, health and wellness, and informed that over 2 lakh individuals will participate in the 100-day free yoga training program as Yoga Mitras.
0: और जैसे जैसे पूरे देश और दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं, आयुष मंत्रालय ने इस आयोजन से जुड़े सभी हितधारकों के लिए एक व्यापक संसाधन के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हैंडबुक 2026 जारी की है। आयोजकों, संस्थानों, योग साधकों, सरकारी एजेंसियों, शैक्षणिक संस्थानों और सामुदायिक समूहों की सहायता से तैयार की गई ये बहुभाषी हैंडबुक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, कॉमन योग प्रोटोकॉल, मंत्रालय की विभिन्न पहलों और जन भागीदारी के अवसरों से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियों को एक ही सुलभ संदर्भ दस्तावेज में समेटे हुए हैं। यानी कि जो ये हैंडबुक है इसके अंदर आपको योग से जुड़े हुए सारे डॉक्यूमेंट मिलेंगे, आपको जो मंत्रालय अपने इनिशिएटिव्स ले रहा है वो सभी इसमें मिलेंगे, और योग का जो कॉमन प्रोटोकॉल तैयार किया गया है या आपके लिए जितने भी पार्टिसिपेशन से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज हैं वो सभी आपको इस हैंडबुक के अंदर मिल जाएंगी। और अभिषेक, योग दरअसल लोग 21 जून जब आता है तो तैयारियां करते हैं, कई बार 100 डेज का या 25 डेज जैसे आज से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो योग कोई लिमिटेड पीरियड के लिए की जाने वाली एक्सरसाइज नहीं है, इट्स जस्ट नॉट अ प्रैक्टिस, योगा इज अ लाइफ स्टाइल। क्योंकि योग के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। योग सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, और लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जितना वो योग से जुड़ेंगे उतना वो रोगों से दूर रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे, और आजकल जो तरह तरह के मानसिक विकार हैं उनसे भी वो दूर रहेंगे।
1: Absolutely. So practice yoga today if your health permits. And this the handbook that Jagriti was mentioning, the handbook provides an overview of the evolution of the International Day of Yoga since its adoption by the United Nations in 2014, and outlines the major initiatives planned for IDY 2026. It includes the details of the ministry's signature programs such as Yoga Sangam, Harit Yoga, Yoga Samavesh, Yoga Park, and Yoga Unplugged, along with the scheduled countdown activities leading up to 21 June 2026. So we are eagerly looking forward to this event.
0: और अब चलते हैं अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानते हैं कि कुछ खास क्या है उनके पास। और अभी हम बात कर रहे थे अभिषेक योग के बारे में ही, तो चलते हैं पहले।
1: यस, एंड कीपिंग विद एंड कंटिन्यूइंग विद द स्टोरी ऑफ योगा जागृति, द एंशिएंट टेंपल्स ऑफ खजुराहो टर्न्ड इनटू अ जायंट योगा ग्राउंड टुडे एज थाउजेंड्स गैदर्ड टू मार्क अ स्पेशल काउंटडाउन टू इंटरनेशनल योगा डे। वी हैव मोर फ्रॉम अ कॉरेस्पोंडेंट।
2: The ancient temples of Khajuraho had a different kind of energy today. Thousands of yoga enthusiasts gather at the famous Western Temple Complex for a special event. Union Minister of State for Ayush, Pratap Rav Jadhav, launched the 25th program of the 100-day countdown series here. Nearly 2,000 people participated with great enthusiasm. The event was organized jointly by the Morarji Desai National Institute of Yoga and the Ministry of Ayush. Minister Jadhav said yoga has now become a people's movement across the country. He added that it keeps body and mind healthy. The Ministry of Ayush is running the countdown series across India ahead of International Yoga Day on June 21st. For Parikrama, Abhinav Goyal, Akashvani, Bhopal.
0: और भोपाल से आते हैं करगिल की ओर। लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ज्यादा से ज्यादा युवा सक्रिय रूप से उद्यमिता में हिस्सा ले रहे हैं। सरकार भी इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, नवाचार और सतत आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवा प्रतिभाओं को सहयोग देने के लिए आगे आ रही है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ पहल वहां पर चल रही हैं।
3: In this direction, Deputy Commissioner and Chief Executive Officer, Ladakh Autonomous Hill Development Council, Kargil, Rakesh Kumar, conducted an extensive inspection of various industrial units and startups across Kargil district and later chaired an interaction meeting with entrepreneurs to review challenges and opportunities in this sector. During the visit, Rakesh Kumar inspected the Ladakh carving unit at Kurbathang, where local entrepreneurs Ahmad Ali and Abbas Ali are preserving the traditional wood carving art of Ladakh by combining modern technology with indigenous craftsmanship. Appreciating the effort, the DC said such initiatives are generating employment opportunities for local youth while safeguarding the rich cultural heritage of the region. The entrepreneurs appreciated the support being extended under government schemes, including the Prime Minister's Employment Generation Program, and requested timely release of subsidy components to further expand their units. They also highlighted the growing demands for their products from different parts of Ladakh. DC Kargil also visited Halman Apricot Kargil Processing Unit and discussed technological interventions, branding, packaging and market expansion. He encouraged greater participation of local farmers through cooperative societies to ensure wider economic benefit to the community. The inspection further included visits to Zedi Woodworking, Carving and Mushroom Cultivation Unit by self-help groups at Chanigond, where the Deputy Commissioner assured entrepreneurs of continuing support from the district administration for promotion of local industries and startups. Later, an interaction meeting with around 20 entrepreneurs from sectors including apricot processing, dairy product, handicraft, bakery unit, cloth designing, online food delivery service and cement brick manufacturing was held at Conference Hall Baru. Entrepreneurs raised issues related to land, transportation, packaging, branding and marketing. Addressing the gathering, Rakesh Kumar said entrepreneurship in border districts like Kargil carries immense national importance as it strengthens the local economy, creates employment opportunities, reduce migrations and contributes towards the vision of Atmanirbhar Bharat. For Parikrama, this is Anand Ali from Kargil Union Territory of Ladakh.
1: Yes, and from dazzling lanterns and towering pandals to thousands of free dancers serving communities across the island, Sri Lanka has entered the sacred season of Baisakh with celebrations blending spirituality, culture and compassion. And this year's state Baisakh festival in Ma Tara is expected to draw thousands of devotees as the country marks its most important Buddhist observance with religious ceremonies, devotional programs and acts of generosity. We have more from a correspondent.
4: As Sri Lanka prepares to celebrate Vesak 2026, the southern district of Matara has become the center of this year's state Vesak festival, bringing together religion, culture and community spirit across the island nation. The national Vesak festival officially has commenced today at the historic Middelavala Purana Vihara in Tihaguda under the theme Avitareta Kalyane, meaning let us hasten towards the common good. The government has declared this week as the Vesak week, which will go on till 2nd of June. Across the country, temples, streets and homes are being decorated with colorful Vesak lanterns, illuminated toranas and Buddhist flags while devotees gather for sil campaigns, bhakti ghi programs and bodhi pujas. A major highlight of the Sri Lankan Vesak traditions remains the dansala, the offering of free food and drinks to the public as an act of charity. This year, authorities say 2,388 Vesak dansals have been officially registered island-wide, with health inspectors conducting checks to ensure food safety and hygiene standards. Police and local authorities have also introduced special traffic security and public safety arrangements as large crowds are expected at temples and Vesak zones throughout the week. For many Sri Lankans, Vesak is more than just a festival. It is a time of reflection, generosity and spiritual renewal, bringing communities together in a uniquely Sri Lankan celebration of Buddhist heritage. For Parikrama, Ahmed Muin Faruqi from Colombo.
0: और वापस आते हैं देश की ओर, जहां रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अवैज्ञानिक इस्तेमाल मिट्टी के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा दोनों के लिए एक बढ़ती चिंता के रूप में सामने आ रहा है। असम में एक नई पहल किसानों को मिट्टी की जांच की सरल तकनीक के जरिए सोच समझकर फैसले लेने में मदद कर रही है। आइए हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में सुनते हैं।
5: What was once meant to boost agricultural production is today rising concerns about soil health and food safety. I'm speaking about the use of chemical fertilizers and pesticides. According to experts, the issue is not the use of chemical fertilizers and pesticides, but the unscientific and excessive applications, and that too, often without understanding what the soil actually needs. When farmers are informed and equipped with the right tools, the same system can become more efficient, sustainable, and safe. In Assam, with this objective in mind, the Indian Institute of Technology Guwahati has developed a soil testing device that enables farmers to assess the conditions of their soil. With its help, farmers can determine the appropriate quantity of fertilizers required and apply them more precisely across their fields. IIT Guwahati, in collaboration with the Krishi Vigyan Kendra NAPAM, on Saturday distributed this newly developed soil testing kit among farmers during a training program at NAPAM in Sonitpur district. On the occasion, the participants were sensitized about the ill effects of uninformed use of chemicals in their fields and how balanced and need-based application can improve soil health and crop quality. They were also given hands-on training on how to use the kit. For Parikrama, this is Rakesh Tole, Akashvani News, Guwahati.
1: Yes, and the Telangana government has launched a major initiative called the Telangana MSME Greening Summit to help small and medium enterprises become more environmentally friendly and competitive. And the summit was held on May 26 at the Hitex Exhibition Center in Hyderabad. We have a report.
6: This is part of a nation program called RAMP, RAMP, which stands for Rising and Accelerating MSME Performance. The World Bank is providing financial support for this initiative. Minister D. Sridhar Babu unveiled two important digital tools at the summit. First is the Telangana MSME Greening Portal, which provides information about the program. Second is the MSME Assessment Toolkit to help industries evaluate their sustainability practices. These online platforms serve as a single point touchstone where small industries can learn about green manufacturing and access support. The government also launched detailed guides on sustainable technologies for different industrial sectors. The summit brought together policymakers, government officials, small business owners, banks, technology providers, and industry associations. They discussed how to make manufacturing cleaner and more efficient. Small industries shared their experiences adopting energy-efficient technologies and cleaning production methods. They discussed challenges and opportunities for becoming more sustainable while remaining competitive. Minister Sridhar Babu emphasized that Telangana is committed to building an economy where sustainability and growth together, small industries are the backbone of Telangana's economy, he said. Their transition to green manufacturing is essential for state development. Director of Industries Nikhil Chakravarti said, RAMP provides an opportunity to strengthen small industries. Ms. Rashmi Pimpale from Research and Innovation Circle of Hyderabad stated that innovation and sustainability must work together for long-term economic impact. This initiative is expected to help Telangana become a leader in sustainable and responsible industrial development while supporting small business growth and competitiveness. Saptagiri for Parikrama, Akashvani News, Hyderabad.
0: और अब कुछ खबरें खेल के मैदान से. आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा. विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से मुकाबला खेलेगी. फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.
1: And in badminton, Indian shuttlers Aziz Pranoy stunned fifth-ranked Jonathan Christie of Indonesia with a 10-21, 21-12, 21-18 first-round victory in the men's singles at the Singapore Open today. However, in another round of 32 matches, Kidambi Srikanth lost to Singapore's Loh Kian Yu 20-22, 21-19, 17-21. And moving on to some business news, the BSE Sensex dropped 142 points to close at 75,868. The NSE Nifty ended on a flat note, marginal down by 7 points to settle at 23,907 after choppy trade today. However, the broader market at the National Stock Exchange extended upward trend. The mid-cap 100 index advanced over 0.4%, while small-cap 100 index rose over 0.1%.
0: अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तित्वों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन.
7: In today's episode, we remember the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, who died on the 27th of May 1964.
8: Jawaharlal Nehru was born in Allahabad on November the 14th, 1889. As a student, Nehru had been interested in the struggle of all nations who suffered under foreign domination. He took keen interest in the Sinn Féin movement in Ireland. He returned to India in 1912 from England and was drawn into the struggle for independence.
7: In 1912, he attended the Bankipur Congress as a delegate and became secretary of the Home Rule League, Allahabad, in 1919. In 1916, he had his first meeting with Mahatma Gandhi and felt immensely inspired by him. He organized the first Kisan March in Pratapgarh district of Uttar Pradesh in 1920. He was twice imprisoned in connection with the non-cooperation movement of 1920 to 1922.
8: In 1926, at the Madras Congress, Nehru had been instrumental in committing the Congress to the goal of independence. While leading a procession against the Simon Commission, he was lathi charged in Lucknow in 1928. On August the 29th, 1928, he attended the All-Party Congress and was one of the signatories to the Nehru Report on Indian constitutional reform, named after his father Motilal Nehru.
7: The same year, he also founded the Independence for India League, which advocated complete severance of the British connection with India and became its General Secretary.
8: We also remember nationalist Hukam Singh, who died on the 27th of May 1983. Hukam Singh took part in the anti-Simon Commission demonstrations in 1928 and was injured and arrested during a police baton charge on a procession in the streets of Montgomery.
7: Hukam Singh was born at Montgomery in Sahiwal district, presently in Pakistan. Singh was initiated into politics through the Shiromani Akali Dal and was its president for 3 years. He was also a member of the Montgomery Singh Sabha and its president for 3 years. Hukam Singh was arrested in 1924 and sentenced to about 2 years of imprisonment.
8: Partition forced Hukam Singh to cross over to India in August 1947. He became a refugee overnight. Disregarding his own safety, Singh actively took part in evacuating people from their houses and moving them to a safe place. However, his talents were soon recognized and he was appointed puni judge of the State High Court, Kapurthala, in December 1947. Hukam Singh was elected to the Constituent Assembly of India on 30th of April 1948. He actively participated in the Constituent Assembly's debates and only a year after his entry was nominated to the panel of its chairman.
7: Hukam Singh was also a member of the Provisional Parliament during 1950 to 1952. He served as a Speaker of the House in the third Lok Sabha. The conventions and rules devised by him continue to guide the working of the Parliament even today. The noble soul breathed his last on the 27th of May 1983.
1: Yes, and we're also remembering Randhir Singh, a renowned shooter, five-time Olympian and Asian Games gold medalist, who passed away at his residence today following prolonged illness. He was 79. He was also former Honorary Secretary General of the Indian Olympic Association.
0: आज मराठी लेखक तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी की पुण्यतिथि है. उन्हें तर्क तीर्थ यानी कि तर्क के मास्टर की उपाधि दी गई थी. उनकी कृति वैदिक संस्कृति चाविकास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया. उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और साहित्य अकादमी फेलोशिप भी प्रदान की गई. और आज ही तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध विद्वान कंदुकूरी वीरेशलिंगम की पुण्यतिथि है. उन्हें आधुनिक तेलुगु साहित्य में गद्य ब्रह्म के नाम से ख्याति मिली. उन्होंने जाति विरोध आंदोलन का सूत्रपात किया, विधवा आश्रमों की स्थापना की, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए बालिका पाठशालाओं की स्थापना की.
1: Yes, and like we are mentioning in the beginning of our program, Paul Gascoigne, universally known by his nickname Gaza, was born today. He's an English former professional footballer, widely regarded as the most naturally talented English midfielder of his generation. He earned 57 international caps and captured the nation's heart with his cheerful, brilliant performances in the 1990 World Cup and Euro 1996.
0: प्रमुख हिंदी साहित्यकार पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की आज जयंती है. सरस्वती के कुशल संपादक, साहित्य वाचस्पति और मास्टर जी के नाम से वे विख्यात हुए. वे एक प्रसिद्ध निबंधकार रहे. उन्हें साहित्य वाचस्पति से विभूषित किया गया. और आज प्रसिद्ध मलयाली कवि और गीतकार ओट पलाक्कल नीलकंठन वेलु कुरूप की जयंती है. उन्हें 1989 में फिल्म वैशाली के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला. आइए सुनते हैं उनकी इस फिल्म से एक गीत.

फिल्म अभिनेत्री आशा सचदेव का आज जन्मदिन है। उन्होंने 1970 से 1980 के दशक में हिंदी फिल्मों में खूब नाम कमाया। उनका असली नाम था नफीसा सुल्तान और आशा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1972 में फिल्म डबल क्रॉस से की। उनकी फिल्म हरफन मौला में उनके अभिनय को सराहा गया। आइए चलते चलते उनके गीत का ये बोल सुनाते जाते हैं।

0: और इसके साथ ही इजाजत दीजिए जागृति और अभिषेक को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं पर समाप्त करने की।
1: नमस्कार।
2: मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5 बजे ही हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: ये साथी बने गजराज
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के सूरजपुर में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। बलरामपुर वन मंडल के रामानुजगंज, वाड्रफ नगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 25 है। ये चिनिया, महावीरगंज, शिवपुर, कनकपुर, टकिया, मेंढारी, करमडीहा, भगवानपुर, नवापारा, कुंदीकला, जामदोहर, अखोरा, जवा खाण के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 20 है। ये पोड़िपा, घंघरी, सकालो, सरगवा, गुल्हाड़ी, पड़ौली, अमड़ी, किशुनपुर, मिर्गाडांड, मनोहरपुर, पंडरीपानी, डांडगांव, बरवाली, बरडांड, दांतीढाप, कंडराजा, बैगहवा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव, तपकरा और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, रानी कोम्बो, कुंजारा, लोटापानी, मयूर चूंदी, बरटोली, खड़ामाचा, चट्टान पारा, महुआडी, खुटसेरा, पतेबहाल, झिक्की, खंताडांड, परसाडांड, पेटा, सामरबार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो और कापू में हाथियों की कुल संख्या 135 है। ये आमगांव, पोटिया, ओंगना, चैनपुर, रुपुंगा, बोजिया, बनहर, औरानारा, बेहरा मार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के एतमानगर, जडगा और किंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कोदवारी, सलिहाभाठा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये बंगूरसिया, नवागांव, चक्रधरपुर, जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी, नवापारा, सरायपाली, गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये मुरुमडी, गुड़ागढ़, फुरफुंदी, दलदली, तालाझर, झालपानी, कौहा बहरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडईपानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारीपानी, डूमरघाट, कोदोमाली, मासुल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।
3: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। समय है कार्यक्रम विवरण का। आइए आपको बता दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। 8:30 पर स्पोर्ट्स कैन, 9:30 पर चर्चा का विषय है। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद यानी 5:10 पर युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी हिंदी में, जिसमें आजकल का विषय होगा टाल मटोल की आदत को छोड़ो, क्रमपत्र मिला और युगल गीत। 6:30 पर सुगम संगीत में कलाकार होंगे छाया चंद्राकर और साथी। इसी कार्यक्रम में रात्रि 8:15 पर कलाकार होंगे चंद्रमोहन वर्मा। 7:00, रात्रि 8:00 और रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। किसान साथियों के कार्यक्रम चौपाल में 7:21 पर सुनिएगा आज की बात, जिसका विषय होगा फूलों की सब्जियां, स्वाद, पोषण और सेहत का त्रिकोण। क्रम चिट्ठी मिलिस और आज की सलाह में कद्दू वर्गीय फसलों में कीट एवं रोग प्रबंधन जानकारी देंगे डॉक्टर एम एस अली हुमायूं। रात्रि 10:00 सुनिएगा फिल्म संगीत। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग मारवा। ये थी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आइए आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स कैन, ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर सुबह 7:05 पर। सुबह 8:30 पर सुनिएगा छत्तीसगढ़ी में बच्चों का कार्यक्रम बाल वाटिका, जिसमें बेरा के बाद में सुनेगा पढ़ाई संग खेलकूद जरूरी है। पर्यावरण चेतना पर आधारित बाल कविताएं, कवि होंगे श्री बिहारी राम साहू, रोचक जानकारी दुनिया के और बाल गीत। सुबह 9:40 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में सुनेगा पंथी गीत करमचर कोसरिया और साथियों के स्वरों में। गैर फिल्मी गीत गजल और कव्वाली का कार्यक्रम स्वर धारा सुनेगा कल सुबह 10:00। कलाकार होंगे भूपेंद्र सिंह और फरीदा खानम। श्रोताओं की पसंद पर आधारित कार्यक्रम ईमेल भेजें फिल्म संगीत सुने सुबह 11:05 पर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT दोपहर 12:00। श्रोताओं आइए आपको एक बार पुनः याद दिला दें, अब से कुछ ही देर बाद यानी 5:10 पर युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी हिंदी में, जिसमें आजकल का विषय होगा टाल मटोल की आदत को छोड़ें, क्रमपत्र मिला और युगल गीत। 6:30 पर सुनिएगा सुगम संगीत, कलाकार होंगे छाया चंद्राकर और साथी। इसी कार्यक्रम में रात्रि 8:15 पर कलाकार होंगे चंद्रमोहन वर्मा। किसान साथियों के कार्यक्रम चौपाल में 7:21 पर सुनिएगा आज की बात का विषय, जो होगा फूलों की सब्जियां, स्वाद, पोषण और सेहत का त्रिकोण। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है युवाओं का कार्यक्रम युवाणी।

0: कल पटकी है उम्मीदें सभी और आज का दिन यूं ही गुजर जाता है। सोचते सोचते ही निकल जाती है उम्र और इंसान बस हाथ मलता रह जाता है।
1: इन सुंदर पंक्तियों के साथ युवाणी की महफिल सजाने आ गए हैं हम। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त श्रिया चक्रवर्ती
0: और मैं काजल साहू। तो स्वीकारे हमारा प्यार भरा नमस्कार। अच्छा श्रिया, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा चेहरा आज थोड़ा मुरझाया हुआ सा है। तुम्हारा मूड भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्या बात हो गई भाई?
1: अब क्या बताऊं काजल, आज मैंने सोचा था कि सुबह जल्दी उठकर वॉक पर जाऊंगी। अलार्म भी लगाया था।
0: अच्छा?
1: लेकिन
0: फिर क्या हुआ?
1: लेकिन जैसे ही अलार्म बजा मैंने सोचा कि बस 5 मिनट और फिर जब आँख खुली तो सीधा नाश्ते का टाइम हो चुका था।
0: ओहो, और ये 5 मिनट ना वाकई बहुत खतरनाक होते हैं। पता ही नहीं चलता कि वो 5 मिनट का 50 मिनट बन जाते हैं।
1: और काजल सच कहूँ तो ये पहली बार नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ करने का सोचते तो हैं पर थोड़ी देर बात कर लेंगे ये सोचकर उस काम को टाल देते हैं।
0: ये बात तो तुमने सही कही श्रिया, हम सबके साथ ऐसा अक्सर होता है और शायद यही वो छोटी सी आदत है जो धीरे धीरे हमारे दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है।
1: दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी ऐसा ज़रूर महसूस किया होगा, कोई ज़रूरी काम हो और हम सोचें कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद इसे कर लेंगे।
0: और फिर वो थोड़ी देर ना इतना लंबा हो जाता है कि काम या तो आखिरी समय में होता है या फिर वो काम रह ही जाता है।
1: और साथियों, मज़ेदार बात तो ये है कि उस वक्त हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं लेकिन बाद में यही चीज़ हमें तनाव देती है।
0: बिल्कुल
1: सही। काजल, तुमने कभी सोचा है कि हम ऐसा करते क्यों हैं?
0: बिल्कुल श्रेया, इसके पीछे का एक छोटा सा कारण है और कई भी कारण हो सकते हैं। कभी होता है कि हमें डर लग रहा है कहीं हमसे कुछ भूल ना हो जाए, ये भी कारण हो सकता है। कभी काम इतना बड़ा लगने लगता है कि हम शुरुआत ही नहीं कर पाते।
1: और कभी कभी तो हम बस ये सोच लेते हैं कि अभी मन नहीं है।
0: वैसे दोस्तों, सच ये है कि अगर हम मन का इंतज़ार करते रहेंगे तो शायद हम कभी भी शुरुआत ही ना कर पाए।
1: और फिर इसका असर हमारे पूरे दिन पर पड़ता है, काम अधूरा रह जाता है और मन में एक बोझ बना रह जाता है
0: और धीरे धीरे ये बोझ बढ़ता जाता है। उसके बाद आत्मविश्वास की भी कमी होने लगती है और हम खुद से ही सवाल करने लगते हैं।
1: तो साथियों, अब सवाल उठता है कि इस आदत से बाहर कैसे निकला जाए?
0: साथियों, इसका जवाब बड़ा ही आसान है। इसके लिए बहुत बड़े बदलाव करने की ज़रूरत नहीं, बस शुरुआत करने की ही ज़रूरत है। जैसे तुमने आज वॉक मिस कर दी तो कल सिर्फ 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन बाहर निकल जाना।
1: अरे वाह, यानी कि 5 मिनट और की जगह 5 मिनट अभी कर देना चाहिए।
0: बिल्कुल, जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो आधा काम वहीं पूरा हो जाता है और अगर काम बड़ा लगे
1: तो उसे छोटे हिस्सों में बांट लें। धीरे धीरे हर हिस्सा पूरा होता जाएगा और काम आसान लगने लगेगा।
0: और सबसे जरूरी बात, खुद पर कभी भी ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए क्योंकि आदत धीरे धीरे ही बदलती है।
1: दोस्तों, हम अक्सर समय की कमी की बात करते हैं लेकिन असल में कमी हमारी शुरुआत करने की होती है।
0: बिल्कुल श्रिया, हर दिन में एक नया मौका हमें देते हैं, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है।
1: तो श्रोताओ, अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा काम है जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं
0: तो आज ही अभी से उसकी शुरुआत कीजिए। छोटा कदम ही सही लेकिन कदम जरूर उठाइए।

0: दसवीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ शत प्रतिशत प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: Oh, lovely. Well done.
1: Business loan approved.
3: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
4: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
3: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
4: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
5: आरबीआई कहता है
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: श्रिया, बुधवार की शाम होती है हमारे लिए बहुत खास, और तुम्हारे हाथ में इन पत्रों के बंडल को देख के ना मुझे बड़ी खुशी हो रही कि हमारे श्रोता साथियों ने इतने सारे पत्र हमें भेजे हैं।
7: बिल्कुल काजल, तो अब हम श्रोताओं को भी बता देते हैं कि अब समय है क्रम पत्र मिला का।

0: तो श्रेया बताओ, ये पहला पत्र हमें कहाँ से आया है?
1: काजल, इस बार पत्र हम तक अभी पहुंच नहीं पाए हैं। तो जो पहला ईमेल आया है हम वहां से शुरू करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ये पहला ईमेल हमें आया है धरसीवा बस स्टैंड से छेदूलाल यादव, सीता, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना यादव, रानू, खुशी, प्रवीण, कुमार साहू, इकबाल कुरेशी। ये लिखते हैं कि 20 मई को प्रसारित युववाणी कार्यक्रम में दीपक तिवारी और मल्लिका सुभाशीष ने सफलता के प्रेरणादायक विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि हमें केवल सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि स्वरोजगार की ओर भी ध्यान देना चाहिए। जीवन में सुख दुख और सफलता असफलता आते रहते हैं, इसलिए मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। यादें क्रम में मधुर फिल्मी गीत सुनने को मिले और पत्र मिला में श्रोताओं के पत्रों को शामिल किया गया। कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। शानदार प्रस्तुति के लिए मल्लिका सुभाशीष, दीपक तिवारी एवं युवाणी अनुभाग को हार्दिक बधाई।
0: साथियों, 20 मई के युवाणी कार्यक्रम को लेकर आपने जो प्यार और सराहना भेजी है उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। मेहनत, सफलता और स्वरोजगार पर दीपक तिवारी और मल्लिका सुभाशीष ने जो बातें आपको की वो आपको प्रेरणादायक लगी, ये जानकर हमें बेहद खुशी हुई। साथ ही क्रम यादें में सुनाए गए मधुर गीत और पत्र मिला में शामिल किए गए श्रोताओं के पत्रों को भी आपने पसंद किया, इसके लिए पूरी युवाणी टीम आपका दिल से आभार व्यक्त करती है। दोस्तों, आपका यही प्यार और साथ हमें हर बार कुछ नया और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। बस इसी तरह अपने पत्र और ईमेल के जरिए अपना स्नेह हम तक भेजते रहिए। बहुत धन्यवाद। साथियों, इस दिन के लिए हमें और भी ईमेल्स आए हैं। अंबागढ़ चौकी से ओम प्रकाश मसिया, से लोचनी तुसारणी, कुमेंद्र मसिया, लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज, ऋषभ मरावी, घटारानी से योगेश्वर, डुमेश्वरी, यामिनी मुस्कान, हर्षिता साहू, करही भदर से पुरुषोत्तम निर्मलकर, शारदा कुमारी, लोचन विद्यार्थी, पोटियाकला दुर्ग से संजय, सुजाता, शशांक, सीमा साहू, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन।
1: काजल, ये अगला ईमेल हमें आया है खैरागढ़ से मोतीलाल भीमटे, सुशीला, मेघा, नेहा, येशु भीमटे का। ये लिखते हैं, 22 मई की सुकून भरी शाम में कंपेयर साथी अपेक्षा शुक्ला और आनंदिता शर्मा ने युवाणी को बेहद शानदार अंदाज में प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में सभी क्रम गागर के सागर जैसे लगे। विशेष रूप से आजकल में अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने तथा आत्मविश्वास बनाए रखने की बातें प्रेरणादायक रहीं। वहीं सेहत में दांतों से जुड़ी बीमारियों के लक्षण और उपचार की महत्वपूर्ण जानकारी मिली। क्रम अपनी पसंद में सुनाए गए फिल्मी नगमे ने भी मन मोह लिया। कुल मिलाकर आज की युवाणी बेहद मनभावन रही। अपेक्षा शुक्ला, आनंदिता शर्मा एवं पूरी युवाणी टीम को हार्दिक बधाई।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमें खुशी है कि 22 मई की युवाणी की प्रस्तुति और सभी क्रम आपको बेहद पसंद आए। क्रम आजकल, क्रम सेहत और क्रम अपनी पसंद जैसे कार्यक्रमों से मिली जानकारी और मनोरंजन आप सभी श्रोताओं तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य है। आपका स्नेह और उत्साहवर्धन हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। इसी तरह अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। आप इस तरह पत्र लिखते रहिए। पत्र लिखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।
1: साथियों, ये अगला पत्र हमें भेजा है सिगारबाड़ी घुटकू से भगत राम पटेल, किशन, सोनम, मानवी पटेल। इन्होंने 24 मई के युवाणी कार्यक्रम के लिए लिखा है। ये लिखते हैं, रविवार को प्रसारित युवाणी कार्यक्रम काजल साहू और कैरल पांडे द्वारा बेहद सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आभार और धन्यवाद की भावना के साथ हुई, जिसने मन को शांति और संतोष का संदेश दिया। राग नंदिनी में राग धानी के बारे में रोचक और विस्तृत जानकारी सुनने को मिली। साथ ही उससे जुड़े फिल्मी गीत भी बेहद मधुर लगे। पायल, विशाल, वीरभान साहू और सुमिता राय बर्मन की प्रस्तुति सराहनीय रही। वहीं सवालों के आईने में श्रोताओं के पत्र और ईमेल शामिल किए गए तथा अगले अंक के रही वही सवालों के आईने में श्रोताओं के पत्र और ईमेल शामिल किए गए तथा अगले अंक के प्रश्न भी बताए गए। कुल मिलाकर पूरा कार्यक्रम ज्ञानवर्धक और मनोरंजक रहा। शानदार प्रस्तुति के लिए काजल साहू और कैरल पांडे एवं पूरी टीम को

जिससे आपका और हमारा दोनों का ज्ञान बढ़ता है। मैं और हमारी पूरी टीम आपका आभार व्यक्त करती है। आपका स्नेह और सहयोग हमें आगे भी बेहतर कार्यक्रम प्रस्तुत करने की प्रेरणा देता है। आप सभी साथियों का पत्र लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस दिन के लिए हमें और भी ईमेल्स आए हैं। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस अनिल कुमार, अजीत आयुष और नंदनी जंघेल, गेंदा टोला बाजार चौक राजनांदगांव से बीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि योगिता गजेंद्र गुप्ता, चिरमिरी से इंद्रभान अनुभव, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद, दिनेश प्रसाद लहरे। क्रम पत्र मिला यहीं तक।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
0: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
0: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
2: 10वीं या BSc पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था CPET रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
3: श्रिया, क्रम पत्र मिला तो हो गया, लेकिन इतने सारे पत्र और इतने प्यार से लिखे पत्रों के बाद तो मेरा दिल खुश हो गया है।
4: बिल्कुल काजल, मेरा भी। जब श्रोता अपनी बातें हमसे साझा करते हैं तो बिल्कुल मन में बहुत शांति मिलती है और प्रेरणा भी मिलती है।
3: बिल्कुल, और ये हमें बताता है कि हमारा जो कार्यक्रम है वो सफल हुआ, हमारी जो मेहनत है वो सफल हुई। हमने जो इतने दिन से कार्यक्रम के लिए तैयारी की, जो पत्रों में आप लिखकर हमें भेजते हैं, वो हमें बताता है कि हाँ, हमारी मेहनत रंग लाई है और हमने आप तक कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें पहुंचाई है और हमारा काम सफल हुआ।
4: बिल्कुल।
3: तो साथियों, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्रम की ओर। तो दोस्तों, कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में पूरी तरह से बयान नहीं किया जा सकता। वो बस दिल में एक प्यारी सी मुस्कान बनकर रह जाते हैं, और जब ये एहसासों को संगीत के साथ मिल जाए तो फिर हर पल और भी खूबसूरत बन जाता है।
4: दोस्तों, क्रम युगल गीत में प्रस्तुत है एक ऐसा ही मधुर गीत जो प्यार, अपनापन और खूबसूरत भावनाओं से सजा हुआ है। तो आइए सुनते हैं इस क्रम की पहली प्रस्तुति।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म कबीर सिंह से ये गीत संचेत टंडन और परंपरा ठाकुर की आवाज़ में। इसे लिखा था इरशाद कामिल ने और संगीत से सजाया था संचेत परंपरा ने।
1: और पसंद करता थे बेमितरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता, कमलकांत सारथी, विरेज व्रजकांत सारथी। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाव, रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सीएल यादव। बाजारपारा बेमितरा से भरत लाल सिन्हा, लव कुमार, लक्की सिन्हा। चूड़ी लाइन भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी, रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद।
0: दोस्तों संगीत सिर्फ सुरों और शब्दों का मेल नहीं होता, बल्कि यह हमारी भावनाओं को सबसे खूबसूरत साथी भी बन जाता है। कभी यह चेहरे पर मुस्कान ले आता है तो कभी दिल की अनकही बातों को बड़ी सहजता से कह जाता है।
1: साथियों, कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही मन एक अलग ही दुनिया में खो जाता है और यादों का एक प्यारा सा सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे ही मधुर और दिल को छू लेने वाला गीत जिसमें प्यार की मिठास, अपनापन की गर्माहट और खूबसूरत एहसासों की नरमी बहुत ही सादगी से पिरोई गई है।
0: ये गीत अपने सुरों और भावनाओं के साथ हर श्रोता के दिल में एक खास जगह बना लेता है। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: फिल्म रमैयावस्था से अभी आप सुन रहे थे ये गीत श्रेया घोषाल और आतिफ असलाम की आवाज़ में। इस गीत को लिखा था प्रिया चंचल ने और संगीतबद्ध किया था सचिन जिगर ने।
1: और पसंदकर्ता थे शीतला नगर दुर्ग से शिवचंद्राकर भगवान चंद्राकर, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, डोंगरगांव से राजपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे दिल के बेहद करीब आ जाते हैं और उनकी मौजूदगी ज़िंदगी को खूबसूरत बना देती है और हर पल में एक नई सी रौनक भर देती है। ऐसे एहसास जब संगीत में ढलते हैं ना, तो कुछ गीत सीधे दिल तक पहुंच जाते हैं।
0: दोस्तों, इस क्रम का जो अगला गीत है वो भी कुछ इन्हीं खूबसूरत जज्बातों से सजा हुआ है। तो बेहद ही सादगी और मिठास के साथ पेश है ये गीत।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म हसी तो फसी का ये गीत, चिन्मय श्रीपदा और शेखर रजवानी की आवाज़ में। इस गीत को लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत से सजाया था शेखर रजवानी ने।
1: और पसंदकर्ता थे नर्मदा धाम सुलसुली से कैलाश सुरेश, दिगेंद्र योगेश यादव, अरमरी खुर्द दुर्ग से चूरामन लाल वाडे, जैनी वाडे, दरचुआ से ददुआ भूरी रेखा मोतीलाल साहू, सिर्री गातापार से धनेश्वरी, ओम प्रभा बिंदेश्वरी, नागेश्वरी चमेली, भूमिका मोनिका और पूनम साहू।
0: दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ ऐसे रिश्ते हैं होते हैं जिनकी अहमियत हमें हर पल महसूस होती है। उनकी हंसी से दिन खुशनुमा लगने लगता है और उनकी बातों से मन को एक अलग ही सुकून मिलता है।
1: और लेकिन जब वो अपना कुछ देर के लिए भी थोड़ा सा भी दूर हो जाए ना, तो जैसे हर खुशी अधूरी सी लगने लगती है। दिल बार बार उसी एहसास को महसूस करता है और यादों का सिलसिला ना थमने का नाम नहीं लेता।
0: काजल, किसकी बात कर रही हो तुम?
1: अरे अरे, ऐसा मत बोलो, मैं बस थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट थी, एग्जाम्स थे, पढ़ाई कर रही थी दिन भर, तो ऐसी बातें निकल आती है मुंह से।
0: वाकई पर काजल, ये बात तो बिल्कुल सच है कि अगर हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा समय निकाल के संगीत में बिल्कुल ध्यान लगाना चाहिए।
1: हाँ, क्योंकि संगीत ही है जो अंतर आत्मा तक हमारी पहुंचता है और हमारी सोल को शांत करता है।
0: बिल्कुल।
1: और संगीत की खूबसूरती भी है कि वो दिलों के सबसे गहरे जज्बातों को बड़ी ही सादगी से हमारे सामने रख देता है।
0: तो इन्हीं एहसासों के साथ सुनते हैं ये अगला गीत।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे वजीर फिल्म का ये खूबसूरत तराना, जिसे स्वर से सजाया था सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। गीत लिखे थे विधु विनोद चोपड़ा ने और संगीत से क्रमबद्ध किया था शांतनु मोइत्रा ने।
1: और दोस्तों, इस गाने और पसंद थी कुल्हारी कोट पांडुका से नरोत्तम कश्यप, नीतू, मोहनीश और अनुराग कश्यप की। आर्यनगर कोहकाब भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदनी जंघेल। ग्राम सालीखुर्द धमदा दुर्ग से तोरण साहू, याचना शिवानी, जयदेव साहू। रानीगांव नगरी से खिलेश कुमार साहू, चित्रलेखा शुभम, सेजल साहू। ग्राम भानपुरी मुसरा से आत्माराम यादव, सुखदेव विदेशी, होमू, मनेश्वर यादव की।
0: दोस्तों, दिल का रिश्ता भी कितना खूबसूरत होता है। कभी किसी पर एक छोटी सी मुस्कान मन की खुशियों से भर देती है, तो कभी किसी की यादें चुपचाप दिल में घर कर जाती है। जब कोई ख़ास इंसान हमारे एहसासों का हिस्सा बन जाता है, तब हर धड़कन में एक अलग सी मिठास महसूस होने लगती है।
1: संगीत भी इन्हीं भावनाओं को बहुत खूबसूरती से हमारे सामने लाता है। दोस्तों, कुछ गीत ऐसे होते हैं जो सुनते ही दिल को सुकून देते हैं और मन को एक मीठे से एहसास से बांध लेते हैं। उनकी धुन और शब्द इतने सरल होते हैं कि हर श्रोता खुद को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता है।
0: साथियों, गीत और संगीत की ये विशेषता है कि वो हमें अपने साथ इस तरह से बांध लेता है कि हमें लगता है ये गीत सिर्फ हमारे लिए लिखा गया है। कभी हमारी परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि उस गीत को सुनकर ऐसा लगता है कि ये हमारी परिस्थिति के लिए बिल्कुल सही गीत है। और ऐसे ही कुछ गीत होते हैं जो सारे जज्बातों में घुले हुए, सिमटे हुए होते हैं। अगला गीत भी कुछ ऐसे ही प्यारे जज्बातों से सजा हुआ है। तो साथियों, आइए सुनते हैं क्रम युगल गीत का ये बेहद ही सुरीला और दिल को छू लेने वाला गीत।

0: फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से ये खूबसूरत नगमा अभी आपने सुना श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज़ में। गीत लिखे थे इरशाद कामल ने और संगीत दिया था विशाल शेखर ने।
1: और पसंद थी इंदिरा चौक खतरपुर से मिश्री लाल, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा। मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश, राहुल साहू। ग्राम भटेना पाटन जिला दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजलि, ज्योति, यश, प्रयाण, पार्थ कश्यप, कौशल, अरविंद वर्मा। पलारी रोहासी से मुकेश कुमार साहू, नंदिनी, मनीष, मयंक साहू। धरसीवा रायपुर से छेदूलाल यादव, सीता, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, कल्पना यादव। सहसपुर लोहारा दनिया खुर्द जिला कवर्धा से गुनीराम राजपूत, संतोषी, हेमप्रभा, पुष्पराज, सूरज राजपूत की।
0: दोस्तों, रिश्तों की खूबसूरती बड़ी बातों में नहीं बल्कि छोटी छोटी भावनाओं और सच्चे एहसासों में छुपी होती है। कभी किसी का साथ, कभी किसी की परवाह, तो कभी किसी की एक मुस्कान ही दिल को इतना सुकून दे जाती है कि जिंदगी और भी खूबसूरत लगने लगती है।
1: संगीत भी इन्हीं भावनाओं को बड़े प्यार से हमारे सामने लाता है। कुछ गीत ऐसे होते हैं जो सीधा दिल को छू जाते हैं और सुनते ही ऐसा लगता है जैसे हमारे अपने ही जज्बात सुरों में ढल गए हों। उनकी सादगी, मिठास और भावनाएं लंबे समय तक दिल में बनी रहती है।
0: साथियों, ये अगला गीत भी कुछ ऐसे ही खूबसूरत एहसासों से सजा हुआ है। प्यार और भरोसे की नर्म भावनाओं को बेहद खूबसूरती से पेश करता ये गीत हर श्रोता के दिल को छू लेने की ताकत रखता है। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा जो दिल को सुकून देता है।

0: फिल्म अजहर से सुन रहे थे आप ये खूबसूरत सा नगमा अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज़ में। इस गीत को लिखा था मनोज यादव ने और संगीत से सजाया था प्रीतम ने।
1: और पसंदकर्ता थे भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर चंपा करण राहुल साहू, बलौदा बाजार से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला निहारिका सिंह, पंकज सिंह सूर्यवंशी, कबीरधाम से कृष्ण कुमार सिंह रॉल, शीतला हनु हर्ष विवेक सिंह रॉल, कोरबा से जोहित यादव, विपिन आयुष, अतुल फूलजी यादव, दतरेंगी से भागवत वर्मा, गुलाबदास वर्मा। साथियों, वक्त का इशारा हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पहले जान लेते हैं कल के कार्यक्रम। कल की युवाणी सजेगी छत्तीसगढ़ी में, जिसमें आप सुनेंगे क्रम हेलो मितान और अंतस के आरो। इसी के साथ आपकी रेडियो दोस्त काजल साहू
0: और श्रिया चक्रवर्ती
1: को दीजिए इजाजत, स्वीकारे हमारा नमस्कार।

युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को है हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।

0: मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी को स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्चस्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने का दर्द में बदल गया है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट के पहले एलिमिनेटर मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से मुकाबला करेगी, वहीं हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्स और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का यही रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी सुन सकते हैं। 6:05 हुए हैं।
3: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube

सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे हो?
1: हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित
1: कब आना है?
0: अरे देख के
1: समझ। ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

आकाशवाणी का यही रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:10 होने को है, अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।

ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संध्या तिवारी के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस ला जारी राखे के दिन मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अन्य हिस्सों में बढ़त तापमान ला देखत

0: लोगन मला सावधानी बरते के दिन सलाह और प्रदेश के आने आने जिला मा खाली पड़े सरकारी जमीन मन के विकास बर राज्य सरकार है रीडेवलपमेंट कार्य योजना तैयार करही। अब समाचार विस्तार ले। केंद्रीय मंत्रिमंडल है आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस ला जारी रखे के मंजूरी दे दी है। एकर बर केंद्र सरकार कोती ले 25,530 करोड़ रुपया के आवंटन करेगी है। नई दिल्ली में मीडिया मला जानकारी देवत सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कही ने कि ये योजना राज्य एजेंसी मल्ला अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन के संगे संग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण पर मदद करही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है देश के आने आने हिस्सा में बढ़त तापमान ला देखत लोगन मला सावधानी बरते के सलाह दे है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी है लोगन मल्ले कहीं ने कि ओ मन भरपूर पानी पिए और घर ले बाहर निकलत बेरा अपन संग पानी जरूर रखें। उमन सुझाव देने कि जौन भी पैसा है ओला एक गिलास पानी जरूर पिलावें। प्रधानमंत्री है जम्मू झल्ले कही ने कि ओमन अपन परिवार वाले मन संग संपर्क में रहा और उखर हाल चाल पूछत रहा। मंझनिया के चमचमावत घाम में बाहर निकले ले बाँचे और जतका हो सके आराम करें। ओमन जम्मू झिल्ले आग्रह करी है कि जानवर और पक्षी मन पर घर बालकनी छत दुकान या ऑफिस के बाहर एक ठन छोटे बर्तन में पानी भर के जरूर रखें। प्रधानमंत्री है लोगन मन ले ये मुश्किल के दिन में पूरा संवेदनशीलता और करुणा के संग एक दूसरे के ख्याल रखे पर कही है। एति मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घलो जोरदारा गर्मी ला देखत प्रदेशवासी मन ले अपन ध्यान रखे के अपील करे है। मुख्यमंत्री यह कहने कि ज्यादा गर्मी के दौर में हर एक मन खेला अपन स्वास्थ्य के संगे संग अपन तीर तखार के लोगन मन के घलो विशेष ध्यान रखना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय है निर्वाचन आयोग डहल ने कराए गए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता ला बरकरार रखे है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागीच के पीठ आज ये मामला की सुनवाई करत कहने कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की संवैधानिक जरूरत ला आगू बढ़ाते। न्यायालय है ये तर्क ला घलो खारिज कर दिन कि ये प्रक्रिया ले मतदाता सूची में पहली ले मौजूद मनखे मन की नागरिकता के अनुमानित मान्यता खत्म हो जाते। प्रदेश के आने आने जिला में खाली पड़े सरकारी जमीन मन के विकास पर राज्य सरकार है रीडेवलपमेंट कार्य योजना तैयार करी। एकर तहत सरकारी विभाग निगम मंडल और बोर्ड के खाली जमीन मन के उपयोग करके डिजिटल लैंड बैंक बनाए जा। मुख्य सचिव विकास सिंह की अगुवाई में आज मंत्रालय में हुई समीक्षा बैठक में फैसला लेगी कि जम्मू सरकारी जमीन के जीआईएस मैपिंग करके ऑनलाइन रिकॉर्ड तैयार करे जा। उन्हें शहर मन में खाली जमीन में आवासीय योजना व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स और सरकारी कार्यालय बनाए जा। उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में कृषि वेयरहाउस और कौशल विकास केंद्र स्थापित करे जा। योजना के तहत जर्जर भवन मल्ला हटा के नवा निर्माण कराया जा और जमीन मल्ला अतिक्रमण ले बचाए बर फेसिंग और सामलात निगरानी के व्यवस्था करे जा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में काली संझा मंत्रालय में हुए राज्य मंत्री परिषद की बैठक में कतको महत्वपूर्ण फैसला लेगी। बैठक में राज्य के आने आने विभाग और निकाय मन में जमा स्क्रैप सामग्री के पारदर्शी निस्तारण पर एमएसटीसी के संग सेलिंग एजेंसी अनुबंध के बेराला अवैया 3 बच्छर तक बढ़ाए के फैसला करेगी। उन्हें छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ला सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाए के प्रस्ताव ला घलो मंजूरी देगी। इकर संगे संग बिटुमिन यानी डामर के कीमत में बढ़ोतरी ला देखत सड़क निर्माण काम प्रभावित झन हो एकर बर 1 अप्रैल ले 30 जून तक ठेकेदार मल्ला थोर बहुत कीमत में राहत दे के फैसला लेगी। राज्य सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अरुण कुमार पांडे ला प्रधान मुख्य वन संरक्षक नियुक्त करे है। श्री पांडे है रिटायर आईएफएस अधिकारी वी श्रीनिवास राव के जगह ली है। इस संबंध में वन और जलवायु परिवर्तन विभाग डहले आदेश जारी कर दिए गए है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचा था। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बाढ़वो बांचे समाचार कोती। केन्द्रीय कोयला खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे काली रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने भेट करी। बैठक में छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन बढ़ाए, ऊर्जा सुरक्षा, खनन क्षेत्र में आधारभूत संरचना और रेल लॉजिस्ट कनेक्टिविटी के विस्तार में गोटबात हुई। दोनों नेता मन स्वच्छ ऊर्जा, कोयला, गैस और सौर ऊर्जा विकास के माध्यम ले निवेश और रोजगार के नवा मौका बढ़ाए पर जोर दी। मुख्य सचिव विकास जिला सहकारी समिति मल्ला मजबूत बना के किसान मल्ला आत्मनिर्भर बनाए पर जोर दिन है। रायपुर में राखेगी राज्य सहकारी विकास समिति के बैठक में उमन हर ग्राम पंचायत में सहकारी समिति संचालित करे के निर्देश दिन। बैठक में प्राथमिक कृषि साख समिति यानी पैक्स ला दुग्ध मत्स्य पालन और लघु वनोपज गतिविधि ले जोड़े ऊपर गोटबात हुई। ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधा बढ़ाए बर माइक्रो एटीएम और रूपे कार्ड उपलब्ध कराए के समीक्षा घलो करेगी। मुख्य सचिव है सहकारी शक्कर कारखाना में इथेनॉल संयंत्र के निर्माण में तेजी लाए के निर्देश दिए। गौरेला पेंड्रा मारवाही जिला में पाछू रतिया अज्ञात लोगन मन एक जिन सराफा व्यापारी के गोली मार के हत्या कर दी। ये घटना पेंड्रा के कोटमी मुख्य बाजार के बताए जावा थे। मिले खबर के मुताबिक बदमाश मन भीड़ वाले इलाका में व्यापारी पर गोली चलाई और मौके फरार हो गए। घायल व्यापारी अस्पताल ले जाएगी जी डॉक्टर मन ओला मृत घोषित कर दी। पुलिस नाकाबंदी करके आरोपी मन के तलाश शुरू कर दे। ये घटना के विरोध में आज गौरेला पेंड्रा मारवाही जिला में बंद के ऐलान करेगी जिला सबो प्रमुख संगठन मनापन समर्थन दिन। घटना के बाद ले कोटमी मुख्य बाजार में सुरक्षा बल मल्ला तैनात करेगी। बस्तर में आवासीय खेल अकादमी में प्रवेश बर चयन परीक्षा काली और परम दिन यानी 28 और 29 मई के जगदलपुर स्थित धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर में बिहने 7 बजे ले राखी जाही। ट्रायल में सुग्घर प्रदर्शन के आधार में खिलाड़ी मन के चुनाई करी जाही। आवासीय खेल अकादमी में एथलेटिक्स, तीरंदाजी और फुटबॉल जैसन खेल मन शामिल करेगी है। अकादमी में 13 से 17 बच्चर आयु वर्ग के लयिका मन प्रवेश ले सकत है। छत्तीसगढ़ सरकार अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी मन के महंगाई भत्ता में 2% के बढ़ोतरी के आदेश जारी करे है। सामान्य प्रशासन विभाग डहले जारी आदेश के मुताबिक अब आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी मन ला 58% के जगह 60% महंगाई भत्ता मिली। बाढ़ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 ले प्रभावी माने जाही। राज्य के 900 ले ज्यादा लघु वनोपज सहकारी समिति के माध्यम ले ये दिन तेंदुपत्ता इकट्ठा करे के काम करे जावत है। प्रदेश में अब तक 13,52,000 ले ज्यादा मानक बोरा तेंदुपत्ता के इकट्ठा कर ले गए है। तेंदुपत्ता संग्रहण में बिलासपुर वित्त सबले आगू हवे जिहा 3,00,000 ले ज्यादा मानक बोरा तेंदुपत्ता इकट्ठा करे गए है। एखर बाद सरगुजा, कांकेर और रायपुर वित्त के जगह हवे। राज्य सरकार डहले तेंदुपत्ता संग्रहण के दर 5,500 रूपया प्रति मानक बोरा निर्धारित करेगी है और संग्राहक मन के खाता में सीधा भुगतान करे जावत है। अब थोरकी समाचार सार में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI बिलासपुर ले रायगढ़ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 49 में यात्री मल्ला तुरते मदद देवर डायल नंबर 1033 आधुनिक आपातकालीन चिकित्सा एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत करे है। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण रेरा हा बताई है कि कुछ एक अनाधिकृत मनखे मन खुद ला रेरा के अधिकारी या कर्मचारी बता के लोगन मन ले पैसा के मांग करत है। प्राधिकरण ने आम लोगन मन ला ऐसा साइबर ठग मन ले सतर्क रह के सलाह दी है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के तहत कक्षा 6वीं में प्रवेश पर प्रस्तावित प्रक्रिया कोनो कारण स्थगित कर दी गई है। और प्रदेश में दिन पड़ा ज्यादा गर्मी ला देखत नवा रायपुर के नंदनवन जंगल सफारी और पर्यटक मन पर 28 और 29 मई के बंद रखे गए है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घंव फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस ला जारी रखे के दिन मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है देश की आने आने हिस्सा में बाढ़त तापमान ला देखत लोगन मला सावधानी बरते के दिन सलाह। और प्रदेश की आने आने जिला में खाली पड़े सरकारी जमीन मन के विकास पर राज्य सरकार रीडेवलपमेंट कार्य योजना तैयार कर ही। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यह सिरावत है। जय जोहार।
2: यम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। सर्वकारेण सार्वजनिक वितरण प्रणाल्याः आधुनिकीकरणार्थं 25,50,000 कोटिरूप्यकाणां केन्द्रीय परिव्ययेन सह सार्थक PDS योजनायाः विस्ताराय स्वीकृत

0: दिनेषु परस्परं करुणा प्रदर्शनार्थं साग्रहं प्रार्थितवान्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन राष्ट्रियपात्रता सह प्रवेशपरीक्षा प्रश्नपत्र गोपन भंग प्रकरणे अपरौ द्वौ अभियुक्तौ निगडितौ। अनेन तावत् केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन अस्मिन् प्रकरणे दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर, अहिल्यानगरेभ्यः एतावता त्रयोदश आरोपिणः निगृहीताः। अस्मिन्नेव क्रमे लातूर वास्तव्यः कश्चन चिकित्सकः डॉक्टर मनोज शिरूरे इत्येषः नीट प्रश्नपत्र भेद प्रकरणे निगडितः। अन्वेषणाभिकरणानुसारं कोचिंग संस्थापकस्य पुत्रेण सह त्रयाणां छात्राणां कृते अभियुक्त पीवी कुलकर्णी इत्यमुना रसायनशास्त्रस्य प्रश्नान् प्रापयितुं मुख्यभूमिका निर्व्यूढा। अपरः निगृहीतः अभियुक्तः तेजस हर्षद कुमार शाहः वर्तते, यः पुणे नगरस्य डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल अकादमी इति कोचिंग संस्थायां भौतिकशास्त्रस्य प्राध्यापकः अस्ति। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन एतावता देशस्य 49 स्थानेषु सहसान्वेषणं विहितं, यत्र अनेके आपत्तिजनकाभिलेखाः, अङ्कीयसङ्गणकाः, दूरभाषयन्त्राणि च स्वायत्तीकृतानि। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः सबलं प्रोक्तवती यत् देशस्य विकासाय पूर्वोत्तरक्षेत्रस्य विकासः सर्वथा अनिवार्यः वर्तते। अद्य गंगटोकनगरे सिक्किम विश्वविद्यालयस्य दीक्षान्तसमारोहं सम्बोधयन्ती राष्ट्रपती मुर्मुः छात्रान् स्वकीयविचारैः, नवोन्मेषेण, परस्परविश्वासेन च राष्ट्रनिर्माणे योगदानं विधातुं परामर्शं प्रदत्तवती। मुर्मू महोदया अवदत यत् शिक्षा एव सशक्तिकरणस्य परम मार्गः अस्ति।
1: नॉर्थ ईस्ट का विकास देश की समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ के युवाओं में असीम प्रतिभा है। सिक्किम सहित अन्य राज्यों से आए हुए विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि आप सब एक दूसरे के संपर्क में रहे और मिलजुल कर राष्ट्रीय विकास में योगदान देने का भावना में आगे बढ़े।
0: कनाडा यात्रायाः द्वितीय दिवसे भारतस्य वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः कनाडा देशस्य टोरंटो नगरे वरिष्ठ व्यापारिक नेतृभिः, संस्थागत निवेशकैः च सह उच्चस्तरीयोपवेशनं विहितवान्। यात्रा प्रसंगे श्री गोयलः कनाडा देशस्य अन्ताराष्ट्रिय व्यापार मंत्रिणा मनिंदर सिद्धू इत्यमुना सह साक्षात्कृत्य भारत कनाडा देशयोः वर्धमान पूरकताम् अधिकृत्य चर्चां कृतवान्, तथा च सुदृढ़ सर्वकारोद्योग सहयोगेन चालितस्य, अधिक सशक्तस्य, पूर्वानुमान योग्यस्य च व्यापार पारिस्थितिकी तंत्रस्य आवश्यकतायामपि बलं प्रदत्तवान्। आईपीएल क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायं मोहाली नगरस्य न्यू चंडीगढ़ क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति। एषा स्पर्धा सायं सार्धसप्तवादने समारप्स्यते। इतः पूर्वं गतरात्रौ धर्मशाला नगरे आयोजिते द्वन्द्वे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन गुजरात टाइटन्स दलं 92 धावनांकैः पराजितम्। इति वार्ताः।
2: हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज कलाकार हैं छाया चंद्राकर और साथी।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31

0: कई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: सुगम संगीत में आज कलाकार हैं छाया चंद्राकर और साथी। लीजिए सुनिए छाया चंद्राकर और साथियों के स्वर में ये संगीत।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार बारी बखरी के गोट स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। औ तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे।

0: सुगम संगीत में अभी आप छाया चंद्राकर और साथियों को सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाल केंद्र है। 6:45 हुए हैं, अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाल केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21 एक

0: का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
1: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
2: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
3: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
2: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
3: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
2: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
3: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
1: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
4: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
1: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्थक पीडीएस को जारी रखने की दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की दी सलाह। प्रदेश के विभिन्न जिलों में अनुपयोगी और खाली पड़ी सरकारी जमीनों के विकास के लिए राज्य सरकार रीडेवलपमेंट कार्ययोजना तैयार करेगी। और गौरेला पिंडरा मारवाही जिले में कुछ बदमाशों ने सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या की। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों का समर्थन करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में मदद करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया को वैधता को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक गिलास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से यह भी कहा कि दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनियों, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी भीषण गर्मी के मद्देनजर लोगों से अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने आसपास के लोगों का भी विशेष ध्यान रखने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कहा कि अत्यधिक गर्मी के इस दौर में पर्याप्त पानी पिए और तेज धूप में जाने से बचें। उन्होंने अपने घर, दुकान, कार्यालय और सार्वजनिक स्थानों के आसपास राहगीरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने की भी अपील की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल शाम मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों और निकायों में जमा स्क्रैप सामग्री के पारदर्शी निस्तारण के लिए MSTC के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध की अवधि अगले 3 वर्षों तक बढ़ाने का फैसला किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा बिटुमिन यानी डामर की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए सड़क निर्माण कार्य प्रभावित न हो इसके लिए 1 अप्रैल से 30 जून तक ठेकेदारों को सीमित और आंशिक मूल्य राहत देने का निर्णय लिया गया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में अनुपयोगी और खाली पड़ी सरकारी जमीनों के विकास के लिए राज्य सरकार रीडेवलपमेंट कार्ययोजना तैयार करेगी। इसके तहत शासकीय विभागों, निगम मंडलों और बोर्डों को की खाली जमीनों का व्यवस्थित उपयोग कर डिजिटल लैंड बैंक बनाया जाएगा। मुख्य सचिव विकास शुल्क की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी सरकारी जमीनों की GIS मैपिंग कर ऑनलाइन रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। वहीं शहरों में खाली जमीनों पर आवासीय योजनाएं, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स और सरकारी कार्यालय विकसित किए जाएंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, वेयरहाउस और कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस बीच मुख्य सचिव विकास शुल की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में परियोजना निर्माण और क्रियान्वयन समिति की भी बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि महानदी और इंद्रावती भवन स्थित मल्टी लेवल पार्किंग के दूसरे और तीसरे तल पर आधुनिक कार्यालयों का निर्माण किया जाएगा। वहीं नवा रायपुर के सेक्टर 24 में संयुक्त शासकीय भवन बनाया जाएगा। आम लोगों और कर्मचारियों की सुविधा के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के तहत 43 नई ई बसें चलाई जाएंगी। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने एक वक्तव्य में कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध ऑनलाइन प्रश्नपत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। उम्मीदवारों को अपनी आपत्तियों के साथ संक्षिप्त स्पष्टीकरण और 3 प्रमाणिक स्रोतों से प्राप्त सहायक दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं।
6: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
5: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारतीय थल सेना ने अग्निवीर के विभिन्न पदों की भर्ती के लिए हुई परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसमें छत्तीसगढ़ के 1163 युवाओं ने सफलता प्राप्त की है। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस भर्ती परीक्षा के परिणाम भारतीय थल सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं और इन्हें सेना भर्ती कार्यालय नवा रायपुर के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया गया है। चयनित सभी अभ्यर्थियों को आगामी दिशा निर्देशों और प्रारंभिक प्रक्रियाओं के लिए कल 28 मई को सुबह 7 बजे सेना भर्ती कार्यालय रायपुर में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्यालय शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पास नवा रायपुर में स्थित है। केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कल रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। बैठक में छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन बढ़ाने, ऊर्जा सुरक्षा, खनन क्षेत्रों में आधारभूत संरचना और रेल लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी के विस्तार पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने स्वच्छ ऊर्जा, कोयला, गैस और सौर ऊर्जा विकास के जरिए निवेश और रोजगार के नए अवसर बढ़ाने पर जोर दिया। मुख्य सचिव विकासशील ने सहकारी समितियों को मजबूत बनाकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया है। रायपुर में आयोजित राज्य सहकारी विकास समिति की बैठक में उन्होंने हर ग्राम पंचायत में सहकारी समिति संचालित करने के निर्देश दिए। बैठक में प्राथमिक कृषि साख समितियों यानी पैक्स को दुग्ध, मत्स्य पालन और लघु वनोपज गतिविधियों से जोड़ने पर चर्चा हुई। राज्य सरकार ने भारतीय वन सेवा के अधिकारी अरुण कुमार पांडे को प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख नियुक्त किया है। श्री पांडे IFS अधिकारी वी श्रीनिवास राव का स्थान लेंगे। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। बस्तर में आवासीय खेल अकादमी में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा कल और परसों यानी 28 और 29 मई को जगदलपुर स्थित धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर में सुबह 7 बजे से आयोजित की जाएगी। ट्रायल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। आवासीय

0: खेल अकादमी में एथलेटिक्स, तीरंदाजी और फुटबॉल जैसे खेलों को शामिल किया गया है। अकादमी में 13 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बालक प्रवेश ले सकते हैं। गौरेला पिंडरा मारवाही जिले में बीती शाम कुछ बदमाशों ने सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना पिंडरा के कोटमी साप्ताहिक बाजार की है। बदमाशों ने बीच बाजार में व्यापारी पर गोली चलाई और जेवर लूटकर मौके से फरार हो गए। घायल व्यापारी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इस घटना के विरोध में आज गौरेला पिंडरा मारवाही जिले में बंद का आह्वान किया गया, जिसे सभी प्रमुख व्यापारी संगठनों ने अपना समर्थन दिया। घटना के बाद से कोटमी मुख्य बाजार में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने बिलासपुर से रायगढ़ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 49 पर यात्रियों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए डायल 1033 अत्याधुनिक आपातकालीन चिकित्सा एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण रेरा ने बताया कि कुछ अनधिकृत व्यक्ति स्वयं को रेरा का अधिकारी या कर्मचारी बताकर लोगों से धनराशि की मांग कर रहे हैं। प्राधिकरण ने आम नागरिकों को ऐसे साइबर ठगों से तर्क रहने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के अंतर्गत कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए प्रस्तावित प्रक्रिया को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। बलरामपुर में जिला प्रशासन ने जरहाडी में स्थित आदर्श सेवा कृषि केंद्र में निरीक्षण के दौरान गोदाम से 1150 बोरी अवैध यूरिया जब्त कर गोदाम को सील कर दिया है। प्रदेश में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए नवा रायपुर स्थित नंदनवन जंगल सफारी पर्यटकों के लिए 28 और 29 मई को बंद रहेगा। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने बताया कि यह निर्णय वन्य प्राणियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में कृषि विभाग की टीम ने खाद बीज और कीटनाशक विक्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 6 निजी संस्थाओं के लाइसेंस निलंबित किए गए। बलरामपुर जिला प्रशासन ने आवश्यक वस्तुओं के अवैध भंडारण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ग्राम राधाकृष्ण नगर स्थित एक दुकान से लगभग 400 लीटर डीजल, 70 लीटर पेट्रोल और 32 बोरी PDS चावल जब्त किया है। और गरियाबंद जिले के उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के जल स्रोतों में उदबिलाओं की प्रामाणिक उपस्थिति दर्ज की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्थक PDS को जारी रखने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की दी सलाह। प्रदेश के विभिन्न जिलों में अनुपयोगी और खाली पड़ी सरकारी जमीनों के विकास के लिए राज्य सरकार रीडेवलपमेंट कार्ययोजना तैयार करेगी। और गौरेला पिंडरा मारवाही जिले में कुछ बदमाशों ने सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी है, अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7 बजे हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

0: ആകാശവാണി അറ്റ് 90.
1: चित्रपट संगीत में लीजिए सुनिए फिल्म माई नेम इज खान में राहत फतेह अली खान, शंकर महादेवन और ऋचा शर्मा को, गीत के बोल निरंजन अयंगर के और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

श्रोताओं एक सूचना सुनिए, आगामी शुक्रवार 29 मई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा भूमि के आवश्यक दस्तावेजों को बनाने की प्रक्रिया एवं रखरखाव। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे श्री सौरभ कश्यप, नायब तहसीलदार रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 4003482, 4003483, 4003484। रायपुर का STD कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार 29 मई 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण शुक्रवार को ही संध्या 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे हैं, लीजिए सुनिए के और जी साहित्य को फिल्म मक्खी में, गीत के बोल नीलेश मिश्रा के और संगीत MM करीम का।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी का, ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल।

0: विनीता दीदी राम राम।
1: राम राम निधि। संगे संग चौपाल सुनैया जम्मू संगवारी मन ल घलो हमर दुनो के
0: राम राम। दीदी
1: हाँ
0: अभी तो नौतपा चलत है ते पाई के मनमाना गरम करत है।
1: वो तो है
0: और दिन त दिन रतिया घला तात तात हवा रही थे।
1: एकदम सही कहा था निधि। और देखिए ताप जो है दिनों दिन बढ़त जावा थे और ऐसा गर्मी में तो देख हम सब अपन अपन स्वास्थ्य के ध्यान रखन तेने ज्यादा वाजिब है ना। हल्का सुपाचे भोजन करन और साफ शुद्ध पानी पियत रहन है ना।
0: ठौका कहे विनीता दीदी और बहुत जरूरी होए माही घर ले बाहर निकलन।
1: हाँ
0: है ना। और बिहनिया जल्दी काम ला निपटा के घर में रहना ही वाजिब है।
1: बिल्कुल सही कहे।
0: तहां दिन भर तो भाई जान चलत है।
1: हाँ हाँ बिल्कुल जान चलत थे। और एक बात है निधि कि देख हम मनखे जो है अपन जो खत कर लेथन है ना। फिर दिगर जो जीव जंतु है पशु पक्षी है चिड़ै चिरगुन माल मवेशी ओमन तो मूक प्राणी होते जोन कुछ बता तो नहीं सकाय फिर जनाथे तो उहू मन ला ना।
0: हाँ दीदी सही के हेस यही पाए के ना घर के खुला जगह मना चिरई चुरगुन मन बर दाना पानी जरूर रखन।
1: हाँ
0: जी अच्छाइया में रखो और घर के बाहर कोनो भी होए है ना जीव प्यासा झन रहे।
1: हाँ
0: है ना तेखर बर धमेला होगे जन चौड़ा मुंह के बर्तन रहते।
1: हाँ
0: जन, जन, जन चिरई चिरगुन मन पानी पी सके तैसन चौड़ा बर्तन मा बने साफ पानी जरूर रखन।
1: बिल्कुल सही कहे निधि। और देखे एक बात हुई निधि कि देख घर के बाहर में जो जैसे खुला जगह रहते ना तो मैं संभव हो छायादार सेट सही माने छैया बना देन है तेकर से का होते बाहर में जन रहैया पशु माल मवेशी होते ओ मन छैया मिल जाते है ना। और तोरी मोरी झन करो कोनो भी जीव होए सबो छैया मिल जाते ते पाए के ईसन संभव होए तो ईसन करना चाहिए।
0: और दीदी घर के पशु धन ला घलो बिनिया चरे बर छोड़ देना चाहिए। तहां घर के गाय कोठा मा ओला रखना चाहिए।
1: सही कहे
0: दीदी। पहली तो तरिया पार सड़क पार मा कई ठन मन मतलब बड़े बड़े रुख राही दिखाए।
1: बिल्कुल राय
0: वो समय
1: पुरखा के मसल लगाए
0: रही से। हां जेकर फल के फल हमन खा लेवन और रुख के छैया मा थिरा लेवन।
1: बिल्कुल सही कहे निधि। और आप तो सब सब गए निधि अब तो यही कही सकथन कि देख तो यह मतलब बहिया ले गए काबर कि अब नदिया तरिया सुखावत है पटावत है और रुख राई कटावत है ना। मनखे के सुवारत के बलि चढ़ गई ये सब है ना। और देख निधि तो वो रिकिम ले एकर जिम्मेवार तो हम मनखे ही होए ना है ना। और देख निधि हम गोट बात ला आगू बढ़ावन तो उबार जही है हम संगवारी मन हमारा सुनिन अब उखरो सुने के पारी आगे।
0: हाँ।
1: तब वो रिकीम ने देखा आज बुधवार आए
0: और चिट्ठी मिली इसके क्रम घलो आगे है ना।
1: संगवारी मन के जो भेजे चिट्ठी है ओला पढ़ भाई झटकुन।
0: दीदी ये पहली पाती जेन हवे तेन है 20 मई बुधवार भर। और ये पाती माँ हमार संगवारी मन लिखे हमें के ए दिन के चौपाल मा क्रम आज की सलामा किसान मन भर मछली के लाभदायक प्रजाति के सही चुनाव ये संबंध मा विशेषज्ञ जो बसंत सिंह द्वारा बहुत बढ़िया जमन मतलब जानकारी मिलीस।
1: हाँ।
0: अतका सुघर उपयोगी जानकारी दे खातिर हमर ए संगवारी मन चौपाल प्रभाग ला और विशेषज्ञ मन ला बधाई दे हवे। ये संगवारी मन है लोरमी चचड़ी ले कमलकांत मरावी प्रमीला नेहा पुष्पराज और ऋषभ मरावी मन।
1: तो देख ऐसे है निधि संगवारी हो देख ए बात तो हम सब जानथन कि जैसे हो ही बीज वैसे हो ही चीज है ना। फिर वो कोनो फसल के बीजा हो या फिर मछली के बीज के बात करन है अच्छा प्रजाति के बीज रहे में फसल अच्छा होते कैसे निधि है ना। वैसे कहा तो मछली के बढ़वार भी अच्छा होते तेकरे बारे में बसंत सिंह जी जो है मछली के अच्छा प्रजाति के उपयोग के बारे में विस्तार ले बताइन तो उन संगवारी मन ला उपयोगी लगी से उन चिट्ठी लिखी नेखर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
0: दीदी अगला पाती हवे 21 मई गुरुवार खातिर 21

पनीर घी ये सब दे पाए कि किसान खेती के संगे संग एखर ले लगे लिए दूध के व्यवसाय माने डेयरी के व्यवसाय भी करते तो एखर बर बरोबर सही जानकारी भी जरूरी होते है ना। तेखर बारे में विस्तार ले डॉक्टर वर्मा जी जोन है ए दिन बताइन है जोन संगवारी मन बर उपयोगी लगी से इसे कहा थे मन चिट्ठी के माध्यम ले चिट्ठी खातिर बहुत बहुत धन्यवाद निधि भी संगवारी मन के चिट्ठी तो बांचे है ना। फिर ओखर पहली चिट्ठी पढ़े पहली सुन लेथन ये संदेश।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
0: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
0: 47 बच्चर ले सौलभ सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
2: दीदी, अब हम अपन संगवारी मन की चिट्ठी पाती ला जब पढ़ा थन तो हमारे संगवारी मन 22 मई खाती शुक्रवार भर अपन पाती ला ईमेल के माध्यम से घलो पठवे हमें।
3: हाँ।
2: संगवारी मन के लिखना है कि इसने 22 मई के चौपाल कार्यक्रम मा क्रम रही से हेलो चौपाल के फोन इन कार्यक्रम।
3: हाँ।
2: और ये दिन के विषय रही से खेती किसानी के समय किसान ला होवैया चर्म रोग और सावधानी। ये विषय में किसान भाई मन के समस्या के समाधान फोन द्वारा करके संग एकर बारे में विस्तार ले बताइन चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मृत्युंजय सिंह जौन हमर पर बहुते उपयोगी और जरूरी जानकारी रही से तेखर पर डॉक्टर साहब और चौपाल प्रभाग ला देहे हमर संगवारी मन बधाई के पातीला। ये संगवारी मन है नागर कोहराले, जगराम साहू, जामुन देवी साहू, राजू लल्ला, पूजा प्रांजल, समीक्षा और आराध्या साहू मन है।
3: तो देख निधि, किसान खेती बुतत करते है ना, तब बरसात आई जैसे तहां खेती बुता जोर धर लेते है नी। तो ऐसन में का है, किसान जो है चिखला माटी पानी रह रहते है ना भाई, जब खेती काम करते तो अपन काम करा तो ऐसा में काम करते रहते। ऐसा में कतकुन जो है चमड़ी ले जुड़े समस्या आ जाते, जैसे केंदुआ है, छीला हो जाते, खुजली है, एलर्जी ऐसा ना कतकुन समस्या आ जाते। तब एक बारे में डॉक्टर साहब जो संगवारी मन के समस्या के समाधान फोन ले भी करीन और विस्तार ले जानकारी भी देन जो संगवारी मन ला उपयोगी लगी से। तो संगवारी मन चिट्ठी लिखी ने खर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दीदी, हमर संगवारी मन हम मनला क्रम खाती जोन पाती भेजते ना तेकर ले पता चलते हमर संगवारी मन हमर कार्यक्रम में बड़ ध्यान ले सुना थे गुना थे और हमर तीर पाती पटोवत थे।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
2: तो ये तो बहुत अच्छा बात है। और 23 मई खातिर हमर संगवारी मन अपन पाती ला भेजे हमें। 23 मई के चौपाल मा किसानवाणी के अंतर्गत आज की सलाह क्रम मा गर्मियों में मुर्गियों की देखभाल एवं प्रबंधन ये संबंध में विशेषज्ञ डॉक्टर तरुण साहू द्वारा दी गई जानकारी बहुत उपयोगी लगी। अतका सुगर उपयोगी जानकारी दे खातिर चौपाल प्रभाग और विशेषज्ञ महोदयला बहुत बहुत बधाई दे हैं हमर ये संगवारी मन। आप मन हो सिरमुंदा ले सूरज कुमार दामले, हेमा दामले और कांतिबाई दामले मन।
3: तो देखने थी कोनो भी पशु हुए, जीव जंतु हुए है ना, मुर्गी बकरी ऐसा ये सब तो मौसम के अनुरूप जिसे हम मनखे बर जरूरी होते वैसे ये जीव जंतु मन बर घलो उखर रहन सहन आहार है ना टीकाकरण सब जरूरी होते है ना। तो भाई अभी तो गर्मी अतेक करत है ना, तो ऐसा में जैसे मुर्गी पालक है तो मुर्गी पालक मन बर उखर बरोबर देखभाल और प्रबंधन जरूरी हो जाते। तिही ला विशेषज्ञ द्वारा विस्तार ले बताए गए रही से जौन संगवारी मन ला जरूरी और उपयोगी लगी से और ये जानकारी बर चिट्ठी लिखी एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हमारे संगवारी मन के पाती है 26 मई मंगलवार बर घलो। 26 मई मंगलवार के चौपाल के अंतर्गत किसान वाणी मा क्रम रीस हेलो किसान वाणी यहू फोन इन कार्यक्रम हवे। विषय रही से खरीफ के पहली कृषि यंत्र के रख रखाव और संबंधित योजना। इस संबंध में संगवारी मन के पूछे समस्या के समाधान करे के संगे संग विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कुमार नायक द्वारा विस्तार ले जानकारी घलो देगी। कुल मिला के ये कार्यक्रम मन मनला बहुत अच्छा लगी और बेरा के संगे संग ये जानकारी बहुत उपयोगी घलो रही से। एकर बर विशेषज्ञ संघ चौपाल प्रभाग ला बधाई दे है हमर ये संगवारी मन।
3: कौन संगवारी
2: ये है? मन है तेंदु भाटा, मगर लोडले, उमेन कुमार निषाद, महेश्वरी, देविका, यशस्वी, भास्कर।

0: नूतन सुरेन और किशन मन ह।
1: तो देख निधि, जब खेती किसानी के दिन आते ना है, तब चौमास में सबो किसानी बूता चलत रही थे, ऐसा में काहे बनिहार नहीं मिले है, तब ये जो उन्नत नवा नवा कृषि यंत्र होते ना वो बहुत उपयोगी होते है नी। ओला फिर से दूसर साल उपयोग करना है तो बरोबर बरोबर व्यवस्था करके रखे पड़ते है ना, और जब फिर ओखर उपयोग करना है तो फिर निकालबे तब वो बरोबर ओखर जाँच के ओखर रख रखाव के ओला दुरुस्त करना, ये सब जरूरी होते
0: है ना। खेती
1: सही ओकर उपयोग होते तो तभी कृषि यंत्र के उपयोग सही ढंग ले करे जा सकते है ना। तो यही रख रखाव के संबंध में बने ढंग ले समझावत संगवारी मन के समस्या के समाधान फोन द्वारा करीन है विशेषज्ञ मन हो, जो संगवारी मन बेरा के लगी से उपयोगी लगी से चिट्ठी खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो निधि ये तो रही से क्रम चिट्ठी मिलीस, और देख हम बात करत रहे ते कहत रहे कि पहली नदिया तरिया के मेरा पेड़ पौधा
0: लगावत
1: और सड़क पार में पेड़ पौधा लगे रहा है, फिर अब सब मनखे अपन सुवारत में जो पेड़ पौधा काटत है और ओखर परिणाम आज हम खुद देखत हन है ना। तो काबर न ये सब चेते के समय है, तो अवैया दिन जो उन्हें बरसात के होही तो ओमा हम सब एक एक पेड़ घलो लगावन, वो पेड़ जो उन्हें सुवारत के पेड़ लगावन, जिसे लीम के बर के पीपर के आमा के है ना, तो ऐसा ढंग ले लगावन पेड़ जिन फल घलो देवे छैया घलो देवे, जैसे हमारे पुरखा के मन लगाइन तेकर उपयोग हम करें हाँ। तो हम लगावन तो हमारा अवैया
0: पीढ़ी
1: है ना। तो देख इसने एक गीत सुनथन पंचराम मिर्झा कुलवंतीन बाई और संगवारी मन के स्वर में।

0: परता भुइयां मेड़ पार में पेड़ लगाओ जी। कतका अच्छा ये गीत में संदेश दिन है पंचराम मिर्जा कुलवंतीन भाई और संगवारी मन है।
1: ओ दीदी देखो पेड़ लगाए के महत्ता ला तो हम जान गे, हमारे संगवारी मन घलो जान गे। और ये बखत मा पानी के बड़ महत्ता रही थे और
0: गर्मी मा।
1: और जब हम बात करते हैं खेती किसानी के वहू मा हमन मन ला पानी लगते।
0: बिल्कुल भाई, पानी जिन गानी है पानी खेती किसानी।
1: हाँ, तो भाई खेती किसानी मा प्रमुख फसल के संगे संग कतको संगवारी मन हमर और दीगर फसल घलो लेते।
0: हाँ।
1: और ये फसल में जैसे रिकिम रिकिम को कोनो बागवानी के कामला कर रहे थे तो और कोनो साग भाजी लेवे थे।
0: अच्छा।
1: है ना, तो ये जम्मो हमन काम तो करत रही थन। और अभी के बेरा में जैसे कि आज हमर क्रम है आज की सलाह, ये मां आज हमन जानकारी पाबो कि कद्दू वर्गीय फसलों में जो न कीट और रोग प्रबंधन एकर बारे में विस्तार ले जानकारी देवे थे डॉक्टर एस एम अली हुमायूं। आप मन कीट वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले हवो। अब आप मन संग गुड बात करे हैं रिचा वर्मा, त सुनथन क्रम आज की सलाह।
2: संगवारी हो, बहुत से किसान भाई मन हा धान के संगे संग साग सब्जी के घलो उत्पादन करते। फिर कई बार ऐसे होते कि वो साग सब्जी में बहुत से कीट आते या तो ऐसे समस्या आते जेकर प्रबंधन ओमला जल्दी से पता नहीं चले। तो ऐसा सब समस्या के समाधान करे खातिर आज हमन हा गोट बात करबो। गोट बात करे खातिर हमर बीच उपस्थित है डॉक्टर एस एम अली हुमायूं जी। आप मन हो कीट वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। आप मन के स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: नमस्कार मैडम। नमस्कार किसान भाइयों
2: जी। जैसे कि आज के हमारे विषय है कि कद्दू वर्गीय फसलों में कीट एवं रोग प्रबंधन, तो यही विषय में आप ले हम प्रश्न करना चाहबो कि छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप ले कौन कौन से कद्दू वर्गीय फसल मुख्य रूप ले जाते।
3: देखिए छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है वो थोड़ी सी गर्म और शुष्क जलवायु है और इस तरह की जलवायु में जो है कद्दू वर्गीय फसलों की बहुत अच्छी खेती की जा सकती है। और मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में जो है किसानों के द्वारा लौकी है, करेला है, कुमड़ा है और अपना तरबूज, खरबूज, खीरे की खेती जो है मुख्य रूप से की जा रही है। बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे नदी के किनारे का जो बेल्ट है, महासमुंद हो गया, आरंग हो गया और भी जहाँ नदियों का किनारा रहता है वहाँ पे किसान भाई जो हैं अर्ली खीरे की, तरबूज की, खरबूज की खेती जो है प्रारंभ कर देते हैं। और जहाँ पे पॉली हाउस की व्यवस्था है वैसे किसान भाई जो हैं उसमें पॉली हाउस में जो है जनवरी में ही जो है पौध तैयार कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है कद्दू वर्गीय फसलों की खेती की जा रही है और इसका मार्केट मूल्य भी बहुत है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ का जो तरबूज है वो विदेश तक के निर्यात किया जाता है।
2: जी। अच्छा, एक चीज़ और देखे ले मिलते कि जैसे कद्दू वर्गीय फसल हावे तो ओमा जो फल लगे रही थे वो फल हा जल्दी सड़े ले लग जाते, इसे समस्या भी देखते और बहुत जन किसान मन के ये समस्या सामने आते, तो वो कौन से कारण रही थे या कौन से कीट रही थे जेकर कारण ये सब होते।
3: देखिए क्या होता है कद्दू वर्गीय जो फसलें हैं वो बेल वाली फसलें होती हैं और किसान भाइयों से हमेशा गलती ये हो जाती है कि बेल वाली फसलों के लिए वो पर्याप्त रूप से जो है तार बांध के या लकड़ी लगा के जो है बेल को आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं कराते हैं। वो बेल को ऐसे ही बढ़ने देते हैं, किसी भी चीज़ से जो है कभी बेल बढ़ती है तो अपना रस्सी से बांध दिए, कुछ कर दिए, तो इस तरह से ना करें। क्योंकि होता क्या है जो फल और जो पौधे का टुकड़ा ज़मीन में टकराया हुआ रहता है, ज़मीन से सटा हुआ रहता है, वैसे फल जो हैं सड़ने की स्थिति में ज़्यादा होते हैं। क्योंकि
2: ऐसा में किसान मन हाँ का व्यवस्था करिए।
3: देखिए वो सड़ने की वजह जो रहती है उसका कारण क्या होता है, एक फल मक्खी होती है
2: जी।
3: जो पौधे के लगने के बाद से जैसे ही फल शुरू होते हैं वो अंडा देना प्रारंभ कर देती है। वो इतने सेंसिटिव होती है मक्खी कि उसकी खुशबू, जो फल की खुशबू रहती है, फूल की खुशबू रहती है, उससे वो आकर्षित हो जाती है और उसकी एक आदत होती है कि वो जैसे ही फल लगते हैं उसके ऊपर वो अंडा दे देती है। और अंडे के ऊपर जो है एक मोम की लेयर, वैक्स की लेयर, सीमेंट की लेयर लगा देती है जिससे वो अंडे सुरक्षित हो जाते हैं, बाहर धूप से गर्मी से उनको कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे ही अंडे परिपक्व होते हैं उसमें से जो इल्लियाँ निकलती हैं वो सीधा फल के अंदर छेद करके अंदर चली जाती हैं जिससे वो फलों के अंदर के जो गूदे रहते हैं उसको खाना शुरू करती हैं। किसान भाइयों को पता भी नहीं चलता, फल भी धीरे धीरे बढ़ता रहता है और इल्लियाँ छोटी रहती हैं तो उनका भोजन छोटा रहता है, थोड़ा सा रहता है, लेकिन वो खाते खाते खाते खाते अंदर पहुँचती हैं। क्योंकि कद्दू वर्गीय फसलें क्या रहती हैं, मोटी रहती हैं, उनका गूदा मोटा रहता है तो वो सड़ने में भी जो है दो चार दिन का समय लगता है। और वो इल्लियों के खाने की वजह से जितना नुकसान होता है उसके साथ साथ सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होता है उसमें जो है बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, बैक्टीरिया जो रहते हैं वो ग्रोथ करने लगते हैं और जो फल हैं वो पूरे के पूरे सड़ने लगते हैं। और जब फल सड़ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि उनका बाजार मूल्य किसान भाइयों को नहीं मिल पाता। उसका नियंत्रण एक ही तरह से किया जा सकता है कि आप वैसे फलों की पहचान करें और उन फलों को तुरंत नष्ट करें, और फल लगने के समय पर जो है फल मक्खी के लिए जो है एक ट्रैप, जिसे हम आकर्षण के लिए एक ट्रैप लगाते हैं, मिथाइल यूजेनॉल करके एक केमिकल आता है, वो रंगहीन गंधहीन केमिकल होता है, उसमें कोई रंग नहीं होता, उसमें कोई गंध नहीं होती, लेकिन वो जो है नर कीट जो है उनको आकर्षित करने के लायक, हम सूंघेंगे तो उसको हमको गंधहीन लगता है वो, लेकिन कीड़ों का जो सेंस ऑर्गन रहता है वो उसको जो है पहचान लेता है। उसमें जो है मादा कीट की जो है खुशबू रहती है, जिससे नर मक्खियाँ जो हैं वो आकर्षित होकर आती हैं। तो मिथाइल यूजेनॉल जो रहता है वो एक अनुपात, और साथ में एक कोई सा उसमें इंसेक्टिसाइड, जैसे स्पाइनोसाइड हो गया, जैसे 1 ml आप यूजेनॉल इस्तेमाल कर लिए तो 1 ml जो है आपको स्पाइनोसाइड इस्तेमाल करना है। ऐसा जो है 15-20 जगह प्रति हेक्टेयर आप रख दें तो उसमें जितने भी नर कीट हैं वो आके उसमें फंस जाते हैं और आप उनको नष्ट कर सकते हैं। इस तरह से क्या होता है कि जो फल मक्खी रहती है उनके एडल्ट्स को अगर आप नियंत्रित कर लेते हैं तो आगे आने वाली जनरेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है, या उनको नियंत्रित किया जा सकता है। तो इस तरह से किसान भाई जो हैं इस फल के सड़न को रोक सकते हैं।
2: जी, और एक चीज़ और देखे ले मिलती कि जैसे लौकी कुमड़ा में एक आजकल लाल कीट के जो एक प्रकार के हवे कीट वो है बहुत ज़्यादा हानि पहुँचावत हवे, तो ऐसा में किसान भाई मन हा एकर ले बचे बर का प्रबंध करे और कैसे एकर ले बचे?
3: देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि किसानों को जो है गर्मी, क्योंकि ये गर्मी की फसल है और इसे जो है फरवरी मार्च में लगाया जाता है, तब तक के थोड़ी सी धूप जो है तेज़ हो जाती है, तो सबसे पहले तो किसान भाई इसकी गहरी जुताई कर लें तो उससे फल मक्खी से भी बचाव होगा, क्योंकि फल मक्खी जो रहती है वो उसका जो प्यूपा रहता है वो मृदा में जाके बनता है। उसी तरह से जो ये लाल कीट है, लाल भृंग जिसे किसान भाई बोलते हैं, तो ये हल्के नारंगी रंग का, लाल रंग का ये भौंरा होता है छोटा सा, और गहरी जुताई करेंगे तो इसके भी अंडे प्यूपा जो रहते हैं वो भी जो हैं धूप से ख़त्म हो जाते हैं। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, इनका प्रबंधन किसान भाइयों को पहले करना पड़ता है, क्योंकि ये इनका जो भोजन रहता है ये मुख्य रूप से नई पत्तियां और फूल रहते हैं, और जो इनकी इल्लियाँ रहती हैं उनका भोजन जो रहता है वो ज़मीन के अंदर जो बीज अंकुरित हो रहे हैं वो, जड़ें जो रहती हैं पौधे की वो, ये उनका मुख्य भोजन रहता है। तो इसका प्रबंधन करने के लिए किसान भाइयों को जो है पहले से सतत निगरानी और ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो गहरी जुताई इसका सबसे अच्छा उपाय है। साथ ही साथ अगर ये कीड़े आपको पौधे पर उड़ते हुए दिखते हैं, इसकी पहचान क्या होती है, क्योंकि अलग लाल रंग के होते हैं दिख जाते हैं, नारंगी रंग के जैसे, सिंदूर कलर के जैसे होते हैं, ये अलग से दिख जाते हैं। तो किसान भाई क्या कर सकते हैं, कीड़ा अगर

0: दिख रहा है तो उसका नियंत्रण करना है। अब पत्तियों पे उसकी पहचान कैसी की जा सकती है, पत्तियों को जैसे पौधे बड़े होते हैं तो पत्तियों पे जो है ना ऐसा जाली जाली बन जाती है, ये कीड़े जो होते हैं पत्तियों को खुरच के भी खाते हैं, तो जाली के जैसा, जैसे सूख के अपन किसी पत्ती को जो है कहीं धूप में रखते हैं उसके बाद उसमें जालियाँ जो बन जाती हैं ना, उस तरह का निशान दिखता है। मतलब हम जो पट्टी बांधते हैं चोट पे किस तरह से जाली जाली रहती है ना, उस तरह की पत्तियाँ दिखने लगती हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए नीम ऑयल का इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। सबसे पहले 5 ml नीम ऑयल जो है वो 1 लीटर पानी में घोलें, उस हिसाब से वो अपना घोल तैयार करें। 200 ml का करना है, 200 लीटर का करना है, 200 लीटर करें, 100 लीटर करना है, जैसी उपयोगिता उनकी। तो 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल का उपयोग वो कर सकते हैं। फिर अगर वो रसायन की तरफ जाते हैं तो रसायन के तरफ जाने के लिए किसान भाई क्या कर सकते हैं, स्पाइनोसेड नाम की दवा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी जो है 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह से लाल भृंग से भी जो है बचा जा सकता है।
1: जी, और कद्दू वर्गीय फसल में एक पत्ती मन में, जैसे आप पत्ती के जालीदार दिखते हैं, तो इसने ही आजकल देखते हैं कि पत्ती मन में पाउडर जैसे जो जमे रही थे वो कहाँ रही थी।
0: देखिए ये एक तरह की बीमारी है, फफूंद जनित बीमारी है, और जितने भी कद्दू वर्गीय पौधे हैं उनमें ये बहुत प्रमुख रूप से आती है। उसकी पहचान क्या होती है कि जो उसका नाम ही वो है पाउडरी मिल्ड्यू या चूर्णी लासिता जो बोला जाता है, चूर्ण जो बोला जाता है वो पाउडर के जैसा दिखता है। सीधी सीधी पहचान है कि पत्तियों पर जो है ऐसा पाउडर छिड़के जैसा या राख जमे जैसा जो है निशान दिखने लगता है। उससे होता क्या है कि ये फफूंद जनित है, और फफूंद जो है आर्द्रता में बढ़ती जाती है। पत्तियों के ऊपर जो है अगर पाउडर जम जाता है तो पत्तियां अपना भोजन बनाना कम कर देती हैं। भोजन बनाना कम करने के साथ साथ ये फफूंद भी है, फफूंद रहती है तो ये बढ़ती जाती है एक पौधे से दूसरे पौधे, पत्तियों से पत्तियां। तो इसमें ध्यान रखना है कि उचित दूरी किसान भाई जो है हमेशा बना के रखें पौधे से पौधे की और कतार से कतार की, क्योंकि ये जो फसलें होती हैं ये बेल वाली होती हैं, तो ये बेल बढ़ने के लिए इनको जगह होना, बहुत ज़्यादा सघन लगा देने से क्या होता है वो धूप नहीं पड़ पाती, प्रॉपर हवा नहीं निकल पाती जी। तो उसमें आर्द्रता बनी रहती है और ये उस कंडीशन में ज़्यादा बढ़ती है। तो होता यह है कि पहले पत्तियों पर होती हैं, फिर जो फूल आते हैं वो मुरझाने लगते हैं, वो सिकुड़ के गिर जाते हैं, जो फल लगे रहते हैं वो जो रहते हैं वो शेप उनका जो आकार है वो विकृत होने लगता है, ठीक से उनका शेप नहीं होता। और हम जानते हैं कि कद्दू वर्गीय फसलों का जो है जितने वो अच्छे दिखते हैं उतनी जल्दी वो बिकते हैं, है ना। खीरा लौकी कुमड़ा अगर जो है विकृत रहेगा किसी भी आकार का रहेगा तो कोई भी लेना नहीं चाहता उसको। तो बात तो ये ऐसी हो जाती है कि पौधे में अगर ये बीमारी आई तो मान के चलिए कि फल जो है वो उसका शेप बिगड़ेगा, वो छोटे हो जाएंगे या वो झड़ के गिर जाएंगे। तो इसके लिए जो है किसान भाई जो हैं सबसे पहले ये करें कि अगर पिछली बार वो बीमारी वहाँ आ चुकी थी तो गहरी जुताई कर लें। उसके बाद किसी पौधे पे अगर ये बीमारी दिखती है तो तुरंत उस पौधे को उठाकर नष्ट कर दें। फिर अगर रसायन की तरफ हो जाते हैं तो कार्बंडाजिम नाम की दवा, बहुत प्रचलित दवा है, उसका इस्तेमाल जो है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से किसान भाई कर सकते हैं।
1: जी जी, जावद आप ले एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। जैसे आप मन बताए बहुत से रोग के बारे में बताए, तो एकर अलावा भी का कद्दू वर्गीय फसल में और भी दूसर रोग लगते का, और अगर लगते तो एकर लिए सावधानी कैसे रखे।
0: देखिए ये जो पाउडरी मिल्ड्यू रोग है इसके अलावा जो है कद्दू वर्गीय में एक डाउनी मिल्ड्यू जो एक बीमारी होती है वो आती है, उसमें भी जो है फफूंद से ही होता है। उसमें सबसे पहले जो है नई पत्तियां जो रहती हैं, ये पुरानी पत्तियां, उनमें जो है त्रिकोणीय आकार के धब्बे बनना शुरू होते हैं, और उनका भी वही है, वो धब्बे बढ़ते जाते हैं, पत्तियां पीली पड़ती जाती हैं, फूल मुरझाने लगते हैं, और फूल मुरझाने के साथ साथ जो है फूल जो है झड़के गिरने लगते हैं, तो आगे फल लगने की संभावना भी एकदम कम हो जाती है। इसकी पहचान भी किसान भाई वो कर सकते हैं, त्रिकोणीय आकार के धब्बे रहते हैं। फिर इसमें जो है एक वायरस का अटैक आता है जो एफिड नामक एक कीड़ा जो माहू रहता है उसकी वजह से आता है। उसकी पहचान भी यही है कि नई पत्तियों पे सबसे पहले दिखता है, पीले रंग की पत्ती हो जाएगी और नई पत्तियां पूरी मुरझाई हुई एंठी हुई निकलती हैं
1: जी।
0: तो ऐसे पौधों को भी तुरंत निकाल के नष्ट कर दें, और ये सावधानी रखें कि दवा का उपयोग जल्द

0: से जल्द करें, क्योंकि ये वायरस रहता है, वायरस एक पौधे से दूसरे पौधे जहाँ जहाँ कीड़ा जाके बैठेगा और जहाँ जहाँ वो अपना रस चूसेगा वहाँ ये मान के चलिए कि वायरस फैलेगा ही फैलेगा। तो सबसे पहले तो उस पौधे को नष्ट कर दें। नष्ट करने का मतलब यह है कि खेत से बाहर कर लें, वहीं पर निकाल के उखाड़ के फेंकें ना, क्योंकि वायरस है वो पौधा सूखने में भी जो है 4-5 दिन लगता है, तो हो सकता है कीड़े उसमें भी बैठें, रस चूसें और वो फिर जाके स्वस्थ पौधे को भी नुकसान पहुँचाएँ। तो ये सब सावधानी रख के किसान भाई जो हैं कद्दू वर्गीय फसलों का प्रबंधन कर सकते हैं।
1: जी, अभी सुन रहे हैं सुघर जानकारी कद्दू वर्गीय फसलों में कीट एवं रोग प्रबंधन। जानकारी देवत रही है डॉक्टर SM अली हुमायूं जी, आपमन हो कीट वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। आपमन के बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: संगवारी हो, कद्दू वर्गीय फसल में कीट एवं रोग प्रबंधन ये विषय ले जुड़े जानकारी देवत रही है विशेषज्ञ डॉक्टर SM अली हुमायूं, कीट वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। और आप मन संग गुड बात करत रही से रिचा वर्मा।
3: ओ निधि, अब सूचना पढ़ दे थन। संगवारी हो, अब यह शुक्रवार 29 मई के प्रसारित हो यह हेलो चौपाल कार्यक्रम के विषय हो ही भूमि के आवश्यक दस्तावेज के बनाने में प्रक्रिया एवं रख रखाव। आप मन के समस्या और जिज्ञासा के समाधान पर हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ हुई श्री सौरभ कश्यप, नायब तहसीलदार रायपुर। आप मन के जिज्ञासा और शंका के समाधान पाए बर हमारे तीर फोन कर सकते हो। हमारे फोन नंबर है 400-3482, दूसर फोन नंबर है 400-3483 और तीसरा फोन नंबर है 400-3484। रायपुर के STD कोड है 0771। कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग शुक्रवार 29 मई के 11:30 से 12 बजे तक करे जाही। संगवारी हो, ये कार्यक्रम के प्रसारण शुक्रवार के ही संझा 7:30 में करे जाही। वो आप मन के फोन कॉल के हमला अगोरा रही है तो रही से सूचना।
2: दीदी अब देख, सूचना तो बता देन, फिर अभी गर्मी तो बोलत रहेस ना, तो ये बखत में हमन मतलब साग भाजी मिठावे नहीं।
3: बिल्कुल
2: हाँ, बस मिठाते तक
3: आमटाहा जी
2: हाँ और भाजी
3: हाँ।
2: तो फिर दीदी ऐसा नहीं, कोनो भी मौसम रहे हमन मतलब स्वाद संग अपन पोषण के घलो हमला ध्यान रखना।
3: बिल्कुल सही
2: है ना, तभी हमन मौसम के आनंद ले सकबो। और हमार तीर तखार में कतको ठंगना साग भाजी रहते जेकर फूल मन में घलो पोषण भरपूर रहते।
3: फर तो फर फूल मन में घला रहते
2: तो जैसे मुनगा खोगे, मखना खोगे, तो ये मन में कैल्शियम ले भरपूर, जैसे मुनगा के हम बात कर रहे थे नो में विटामिन सी और कैल्शियम ले भरपूर रहते होकर फूल है जिन जोड़ के दर्द, अब देख हर उम्र में जोड़ के दर्द हो जाते तेन मतलब ये सब चीज खाना
3: चाहिए
2: और परिवार में घलो खवाना चाहिए। अब कई ठन जीनी से बोला हमन ला बनाए के वक्त यू ध्यान रखना चाहिए, भाई स्वाद लग पाना है फिर ज्यादा तेल झन डाल देवन, मसाला झन डाल देवन, ज्यादा मसाला तेल करे ले काय ओकर पोषण ना
3: माने ओकर पौष्टिकता बना के रखना है ना।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
3: तभे ओकर माने मतलब है खाए के है ना। और निधि, अब संगवारी मन अगोरा करत है कृषक प्रश्न मंच क्रम के अंतर्गत, आज के प्रश्न बता दे संगवारी मन ला।
2: संगवारी हो, प्रश्न लिख लो, कद्दू वर्गीय फसल मा फल के सड़े के का कारण होते। पांचवा हफ्ता आज के दिन पूछे गए प्रश्न ओकर उत्तर घलो बता देतन। प्रश्न रही से छत्तीसगढ़ में मछली पालन पर लाभदायक प्रजाति कौन कौन से, सही उत्तर है कतला, रोहू, मृगल और कॉमन कार्प और तिलपिया। सही उत्तर पाती ईमेल पठोए संगवारी मन है गर्रा पार बांधा बजाल दे मानवेंद्र साहू गंगाराम और सुलोचना राकेश साहू मन, देहान बांधा बजाल दे रविशंकर निषाद मंगलिन पवन पेमिन और दुर्गेश, पथरिया भरे वाले चंदूलाल सिंगरौल नारायणी सिंगरौल मन।
3: तो ये सब संगवारी मन बहुत बहुत बधाई, घर जवाब जो है सही है ना। और निधि अब एक बढ़िया सही गीत सुनते लता खापटे और नारायण गिर के स्वर में सुनता ना ये गीत।

0: लता खापाटे और नारायण गीर के स्वर में सुने अभी ये सुग्घर सन गीत।
1: दीदी हाँ देख गोट बात करें सुग्घर गीत संगीत घलो सुने और जानकारी घलो पाएं।
0: बिल्कुल।
1: अब दीदी ऐसा नहीं है कि गोट बात तो हमारे कभी सिरावे नहीं।
0: हाँ
1: बेरा कहा थे
0: निधि संग बैठ गए तो का पूछना है
1: आता हो गए फिर दीदी
0: जाए के बेरा हुआ था निधि काली कार्यक्रम बता संगवारी मल्ला
1: बस संगवारी हो काली के कार्यक्रम आप मतलब बता देथन कि काली संजय चौपाल मा गोटबात संघ की सनवाणी में आप मन सुनू क्रम आज की सलाह विषय हो ही टमाटर के प्रमुख रोग एवं प्रबंधन विषय मा जानकारी दी ही डॉक्टर नरेंद्र लागपाले संघ मा मनोरंजन के खातिर आप मन गीत संगीत घलो सुनू तो आज के कार्यक्रम ले अपन संगी निधि
0: और विनीतल देव विदा राम राम, राम।

0: किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी का। ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजे हैं, प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए विशाल ददलानी और नंदिनी श्रीघर को फिल्म रावण में, गीत के बोल पंछी जालौनवी के और संगीत विशाल शेखर का।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार की मंझनिया 1:30 से

दो बजे तक घर द्वार बारी बखरी के गोठ स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मन ला तको सुनाओ घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे हैं, लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह को। फिल्म फैंटम में गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत प्रीतम का।

लीजिए अब सुनिए विशाल मिश्रा और असीस कौर को फिल्म नोटबुक में, गीत के बोल अक्षय त्रिपाठी के और संगीत विशाल मिश्रा का।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज कलाकार हैं चंद्रमोहन वर्मा। लीजिए सुनिए चंद्रमोहन वर्मा और साथियों के स्वरों में ये संगीत।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे चंद्रमोहन वर्मा और साथियों को। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:30 हुए हैं। स्पोर्ट्स कैन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की स्पोर्ट्स लाइंस पर। राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। आईपीएल के एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी, गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराया। एचएस प्रणॉय ने सिंगापुर ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। 27 पदकों के साथ भारत ने अंडर 23 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप का समापन किया। अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप कल से वियतनाम के दानांग में, और भारत को मिली एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं निशानेबाजी से, जहां ईशा सिंह ने न सिर्फ कई कीर्तिमान बनाए बल्कि पदकों पर भी निशाना साधा। म्यूनिक में ISSF राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने कई कीर्तिमान अपने नाम किए। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में ईशा ने 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने किम येजी के 42 हिट के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया।
1: Oh, Isha, can we get one more? Just one more. Oh, nonetheless, a new world record, a new junior world record has been set. And there we go, Isha Singh, delighted. She's a gold medalist here in Munich. History in front of us.
0: में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लामा मिनचेवा और कोरिया के शीर्ष खिलाड़ी जेन यांग को हराकर

0: पहला स्थान हासिल किया 38 हिट के साथ। डोरीन वेनेकैम्प दूसरे और 31 के साथ। मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रही। मैच के बाद ईशा ने कहा कि मैंने अपने प्रोसेस पर ध्यान दिया।
1: I focused on myself, my process, and I did my best to execute what I was doing in my training. And yeah, I think I would tell that to anyone who wants to perform their best.
0: अब सीधे लिए चलते हैं आपको न्यू चंडीगढ़, जहां आईपीएल का रोमांचक मुकाबला जारी है। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 12वें ओवर में 2 विकेट पर 163 रन बना लिए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से मुकाबला करेगी और हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 12 ताबड़तोड़ छक्के लगाए और 5 चौके के साथ उन्होंने 29 गेंद पर 334.48 के स्ट्राइक रेट से 97 रन की पारी खेली। इस पारी के दौरान उन्होंने क्रिस गेल के एक ही सीजन में 59 छक्के का भी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। आरसीबी ने कल क्वालिफायर 1 में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर दमदार जीत दर्ज की।
2: धर्मशाला में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी आरसीबी ने धमाकेदार अंदाज में शुरुआत की। हालांकि टीम को 21 के स्कोर पर वेंकटेश अय्यर के रूप में पहला झटका लगा। इसके बाद देवदत्त पड्डिकल ने विराट कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 72 रन जोड़कर टीम को 93 के स्कोर तक पहुंचाया। 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर कोहली को जेसन होल्डर ने बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। कोहली 25 गेंद में 6 बाउंड्री के साथ 43 रन बनाकर आउट हुए। इसी ओवर की चौथी गेंद पर होल्डर ने पड्डिकल को भी अपना शिकार बनाया। पड्डिकल ने 30 रन का अहम योगदान दिया। आरसीबी ने 94 के स्कोर तक अपने 3 विकेट गंवा दिए थे। यहां से कप्तान रजत पाटीदार ने कुणाल पांड्या के साथ 4th विकेट के लिए 95 रन जोड़कर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। कप्तान पाटीदार ने टिम डेविड के साथ 25 रन और जितेश शर्मा के साथ 12 गेंदों में 40 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी करते हुए टीम को 254 के स्कोर तक पहुंचा दिया। कप्तान रजत पाटीदार ने 9 गगनचुंबी छक्के और 5 चौकों की मदद से 93 रन की नाबाद पारी खेली। विपक्षी खेमे से कगिसो रबाडा और जेसन होल्डर ने 2-2 विकेट झटके। 255 रन के विशाल लक्ष्य के जवाब में गुजरात की शुरुआत निराशाजनक रही। टीम को 17 के स्कोर पर साई सुदर्शन के रूप में पहला झटका लगा। फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज साई सुदर्शन महज 14 रन पर हिट विकेट होकर आउट हो गए। कप्तान शुभमन गिल भी 2 रन ही बना सके और अनुभवी भुवनेश्वर कुमार का शिकार बने। व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट जॉश बटलर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 29 रन बनाए, लेकिन जल्द ही जॉश हेजलवुड ने उन्हें बोल्ड कर दिया। गुजरात के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के आउट होते ही टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। पावर प्ले के भीतर ही गुजरात की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। आलम ये रहा कि टीम ने 88 के स्कोर तक अपना 8वां विकेट भी खो दिया था, जिसके बाद राहुल तेवतिया और मोहम्मद सिराज ने 68 रन की साझेदारी करते हुए टाइटंस को सम्मानजनक टोटल तक पहुंचाने में मदद की। राहुल ने 4 छक्कों के साथ 68 रन बनाए, लेकिन टीम को जिता नहीं सके। गुजरात की पूरी टीम 3 गेंद शेष रहते 162 रन पर ही सिमट गई। आरसीबी की तरफ से जैकब डफी ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए। कप्तान रजत पाटीदार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कप्तान रजत ने कहा कि हम शुरू से ही मुकाबले को आक्रामक होकर खेलना चाहते थे।
3: इट वाज अ सुपर गेम फॉर अस, द वे एवरीवन वाज स्ट्राइकिंग विद द इंटेंट, सो आई थिंक दैट वाज देयर इन एवरी बैट्समैन, सो वी हैड अ चैट इन द मीटिंग एंड या वी हैव टू कीप अ गुड बॉडी लैंग्वेज एंड द अटैकिंग माइंडसेट, द वे वी प्लेड, द वे वी डोमिनेट इन दिस गेम, आई थिंक दैट वाज सुपर। स्टार्टिंग आई टेक सम फ्यू बॉल्स, 8 to 10 balls टू सी हाउ द विकेट इज बिहेविंग, व्हाट द बॉलर इज डूइंग, सो I try that as many as ball I play and I always like to put baller under pressure.
2: अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आरसीबी को खिताबी मुकाबले में कौन सी टीम चुनौती पेश करेगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: इस हार के बावजूद जीटी के पास फाइनल का टिकट हासिल करने का एक और मौका होगा, क्योंकि गुजरात 29 मई को क्वालिफायर 2 में एलिमिनेटर मैच के विजेता टीम के साथ खेलेगी। अब सीधे रुख करते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर, जहां एचएस प्रणॉय ने कोर्ट में अपना दमखम दिखाया। स्टार भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणॉय ने सिंगापुर ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। प्रणॉय ने आज इंडोनेशिया के 5वीं वरीयता प्राप्त जोनाथन क्रिस्टी को हराया। वहीं भारतीय प्रशंसकों की निगाहें आज होने वाली लक्ष्य सेन के मुकाबले पर भी होंगी। एक नज़र आज के खेल प्रदर्शन पर।
4: विश्व चैंपियनशिप 2023 और एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता 33 वर्षीय प्रणॉय ने एक घंटे से अधिक चले मुकाबले में इंडोनेशियाई खिलाड़ी पर 10-21, 21-12, 21-18 से जीत हासिल की। प्रणॉय ने पहले गेम में धीमी शुरुआत की और 10-21 से पहला गेम हार गए। दूसरे गेम में जबरदस्त वापसी करते हुए उन्होंने 21-12 से गेम जीता। निर्णायक गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच प्रत्येक अंक के लिए कड़ी टक्कर देखने को मिली। शुरुआत में क्रिस्टी 6-3 से आगे थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने आखिरी 5 अंक जीतकर मुकाबला अपने नाम किया। क्रिस्टी के खिलाफ पिछले 5 वर्षों में यह प्रणॉय की पहली जीत है। इससे पहले उन्होंने 2021 इंडोनेशिया ओपन में क्रिस्टी को हराया था। प्रणॉय अब अगले दौर में सिंगापुर के पूर्व विश्व चैंपियन लॉ किंग यू से भिड़ेंगे। ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो की भारतीय मिक्स डबल्स जोड़ी ने भी वांग टीएनसी और लिम चियू सियन की मलेशियाई जोड़ी को 21-14, 20-22, 21-13 से हराया। किदांबी श्रीकांत और मालविका बंसोड़ पहले दौर में ही हार कर बाहर हो गए। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
0: बैडमिंटन से चलते हैं रेसलिंग कोर्ट की ओर, जहां रेसलिंग में कल भारतीय कुश्ती खिलाड़ियों ने कई पदक अपने नाम किए। भारतीय पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती टीम वियतनाम के दनांग में हुए अंडर 23 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में चैंपियन बनकर उभरी है। भारत कुल 27 पदक के साथ पहले, किर्गिस्तान दूसरे, जबकि कजाकिस्तान तीसरे स्थान पर रहे। आइए जानते हैं प्रतियोगिता में कैसा रहा खिलाड़ियों का प्रदर्शन।
5: भारतीय टीम ने फ्रीस्टाइल में ऐतिहासिक जीत के साथ अपने कॉन्टिनेंटल कैंपेन का शानदार अंत किया। भारतीय टीम ने फ्रीस्टाइल, महिला कुश्ती और ग्रीको रोमन कैटेगरी में 11 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। चैंपियनशिप जीतने वाली फ्रीस्टाइल टीम ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य सहित 9 पदक के साथ अपना कैंपेन खत्म किया। अक्षय टी ढेरे और विक्की ने स्वर्ण पदक जीतकर शुरुआत की। इस लय को कुमार मोहित और चंद्रमोहन ने आगे बढ़ाया। दीपक राठी, पुनीत कुमार और लैकी ने कड़ी मेहनत से रजत पदक जीतकर टीम की ऐतिहासिक सफलता में योगदान दिया, जबकि दीपक बेरवाल और मोर सचिन ने कांस्य पदक अपने नाम किए। भारत के महिला पहलवानों ने पूरे टूर्नामेंट में दबदबा बनाया और शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 पदक जीते। महिला टीम ने शानदार 6 गोल्ड मेडल जीते, जिसमें मुस्कान, तपस्या, भाग्यश्री, पुलकित, मानसी और काजल सभी ने अपने अपने टाइटल मुकाबलों में तकनीकी बेहतरी दिखाई। नेहा और स्वीटी ने रजत पदक जीते, जबकि अमृता और अहिल्या ने कांस्य पदक के साथ अपना कैंप खत्म किया। ग्रीको रोमन कैटेगरी में भारतीय पहलवानों ने टूर्नामेंट की शुरुआत में ही 8 मेडल जीतकर एक मजबूत नींव रखी। सुमित 63 किलोग्राम डिवीजन में स्वर्ण पदक जीतकर सबसे आगे रहे। सूरज और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। नीरज पटेल, सचिन, रोहित बुरा, रोहित और हरदीप ने कांस्य पदक जीतकर इस शानदार प्रदर्शन में और इजाफा किया। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा, अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप उठाना भारतीय कुश्ती के लिए एक बड़ी कामयाबी है और पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। अंडर 23 प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के लिए अब सबकी निगाहें अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप पर होंगी। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: तीनों स्टाइल में हमारे एथलीटों ने साबित कर दिया कि भारतीय कुश्ती का भविष्य बहुत उज्जवल है। अब सीधे रेसलिंग से चलते फ्रेंच ओपन की ओर। दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी यानिक सिन्हा ने फ्रेंच ओपन टेनिस में शानदार वापसी करते हुए क्लेमेंट टैबोर को हराया। 4 बार की चैंपियन इगा स्वैतिक ने फ्रेंच ओपन महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। स्वैतिक ने 35वीं रैंकिंग वाली सारा बेजलेक को 6-2, 6-3 से हराया। 11वीं वरीयता प्राप्त पेलिंडा बेचिच ने कैटी मैकनेली को 6-4, 6-0 से हराकर अगला दौर में प्रवेश किया।
5: सिनर ने अपने पहले राउंड के मुकाबले में फ्रेंच वाइल्ड कार्ड क्लेमेंट टैबोर को 6-1, 6-3, 6-4 से हराकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। लाल बजरी पर सिनर की इस पहली जीत ने उन्हें सदी में लगातार 30 या उससे ज्यादा मैच जीतने वाले पुरुषों की सूची में शामिल कर दिया है, जिसमें रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच भी शामिल है। इस 24 साल के खिलाड़ी ने पूरी शाम बेसलाइन से खेल पर अपना दबदबा बनाए रखा। उन्होंने 3 सेट में कुल 40 विनर्स लगाए और उन्हें एक
6: भी ब्रेक पॉइंट का सामना नहीं करना पड़ा। तीसरे सेट के बीच में एक बहुत ही शानदार पल आया जब सिनर ने बेहद आसानी से अपने रक्षात्मक खेल को आक्रामक खेल में बदल दिया। पहले उन्होंने बेस लाइन के काफी पीछे से एक फोरहैंड स्क्वैश शॉट लगाया और उसके कुछ ही पलों बाद फिसलते हुए एक शानदार बैकहैंड विनर लगा दिया। रोम में मिली उनकी हालिया जीत ने उन्हें नोवाक जोकोविच के बाद करियर गोल्डन मास्टर्स पूरा करने वाला दूसरा खिलाड़ी बना दिया है और ऐसा करने वाले वह अब तक के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: प्रतियोगिता में भारतीय प्रशंसकों की निगाहें यूकी भांबरी पर होगी जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरीवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में होगा जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। जाने माने निशानेबाज और खेल प्रशासक राजा रणधीर सिंह का आज 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और पूर्व अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री सिंह ने अपने शानदार करियर में 5 बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वे भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व महासचिव होने के साथ साथ भारत और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रशासन में कई महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे हैं। अब वक्त हो गया है कार्यक्रम में उस शख्सियत की बात करने का जिन्होंने अपने खेल, अपने सोच और अपनी दमदार आवाज से भारतीय क्रिकेट को एक नई पहचान दी। 27 मई 1962 में जन्मे रवि शास्त्री ने भारतीय क्रिकेट को एक बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में नई ऊंचाइयां दी। 1985 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट में चैंपियंस ऑफ द चैंपियंस बनकर उन्होंने दुनिया को अपना दमखम दिखाया।
7: After 28 years, the bodies start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. That's huge. That is a piggy. It's out of here. This is in the air again. Clears long off. 3 in a row. It's 4 in a row.
0: स्पोर्ट्स कैन की ओर से रवि शास्त्री को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
8: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित। यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
9: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
10: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
8: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
11: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
8: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
3: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुँचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक PDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Centre approves extension of Sarthak PDS scheme to modernise public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heat wave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Isha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. And India to host 2027 Asian Relays and 2028 Asian Indoor Championships. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved the continuation of the scheme to modernise the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme, called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement regarding the Cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
3: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं.
4: थ्री मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे. फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज एफसीआई वेयरहाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स. सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड ए डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल. थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी.
3: पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं?
2: The minister said the scheme will work towards fulfilling the government's commitment to 81.35 crore persons covered under the National Food Security Act. Prime Minister Narendra Modi has said the government is committed to ensure that food grains reach every needy person in the country on time through PDS. In a social media post, the Prime Minister said the CCEA's decision will make the delivery, logistics and transportation arrangements under the PDS more transparent and efficient, while also speeding up the resolution of complaints. Home Minister Amit Shah also hailed the approval of Sarthak PDS Phase 2 by the Union Cabinet. Normal life has been severely affected due to the intense heat waves sweeping several parts of the country, including central and northwest India. People are facing difficulties as temperatures continue to remain abnormally high during both day and night. In Rajasthan, Sri Ganganagar recorded a maximum temperature of 48.2 degrees Celsius today, while several cities including Jaisalmer, Bikaner and Churu witnessed temperatures above 46 degrees Celsius. Night temperatures also remained high in many parts of the state. We have a report.
5: Rising day and night temperatures have affected normal life. During the daytime, movement of people on roads and in markets has become limited. In various districts, the administration is making arrangements at multiple levels to deal with the heat. Meanwhile, Chief Minister Bhajanlal Sharma has urged the people of the state to prioritize their health and the safety of their families in view of the rising temperatures and heat wave conditions. He has appealed to the people to follow the guidelines issued by the administration and the health department. Jitendra Dwivedi, Akashwani News, Jaipur.
2: The India Meteorological Department, IMD, has said severe heat wave conditions are expected to continue over central and northwest India during the next 2 to 3 days. The weather agency has issued red colour warning for severe heat wave conditions over east Madhya Pradesh and Vidarbha tomorrow. Heat wave conditions are also expected over Delhi, Chandigarh, Rajasthan, Chhattisgarh, Haryana, Himachal Pradesh, Konkan, Goa, Odisha, Punjab, Telangana and Uttar Pradesh tomorrow. Amid soaring temperatures being witnessed in different parts of the country, Prime Minister Narendra Modi has urged citizens across the country to take all possible precautions. In a social media post, Mr. Modi advised people to keep themselves hydrated and carry water if stepping out of the home. He called upon people to regularly check on elderly parents, grandparents and loved ones during the heat wave and remind them to stay hydrated, avoid stepping out during peak afternoon hours and take adequate rest. Our correspondent has filed this report.
6: During the Union Cabinet meeting today, the Prime Minister discussed the prevailing heat wave conditions with all the ministers. Information and Broadcasting Minister Aswani Vaishnaw said steps were deliberated to provide relief and ensure the safety of citizens amidst the heat wave, specifically focusing on the types of facilities and measures that can be implemented.
3: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में
4: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिस्कस द करंट हिट वेव सिचुएशन इन द कैबिनेट मीटिंग विद ऑल मिनिस्टर्स फॉलोइंग द प्राइम मिनिस्टर्स कॉल फॉर नेशनल प्रिपेयर्डनेस डिस्कशंस वर हेल्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटीज एंड रिलीफ मेजर्स डिफरेंट मिनिस्ट्रीज कैन प्रोवाइड टू हेल्प पीपल ड्यूरिंग द एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस.
3: किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई.
6: स्पीकिंग टू आकाशवाणी न्यूज प्रोफेसर एट द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन इन द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इन न्यू दिल्ली डॉक्टर नवल किशोर विक्रम एडवाइज्ड पीपल टू टेक अटमोस्ट प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट हीट रिलेटेड इलनेस.
7: अवॉइड एज मच एज गेटिंग एक्सपोज्ड टू द एक्सट्रीम हीट. इफ यू कांट अवॉइड देन यूज प्रोटेक्शन सच एज एन अम्ब्रेला कैप समथिंग लाइक दैट. डिहाइड्रेशन इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम. थिंग टू प्रिवेंट दिस कीप ऑन हाइड्रेटिंग योरसेल्फ. Keep on taking fluids every 1 hour or so if you are outside.
6: Medical experts have also advised people to take special care for vulnerable groups such as children, the elderly and individuals with pre-existing health conditions. With Anupam Mitra, Anand Kumar for Akashwani News, Delhi.
2: Meanwhile, the IMD has predicted heavy rainfall over parts of northeast India, Bihar, Tamil Nadu and Puducherry tomorrow. The Supreme Court today upheld the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rolls being conducted by the Election Commission of India, ECI. The court held that the Election Commission has the power to conduct SIR under Article 324 of

लीजिए अब सुनिए निखिल डिसूजा और अमित त्रिवेदी को फिल्म आयशा में गीत के बोल जावेद अख्तर के और संगीत अमित त्रिवेदी का।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म सिमरन में अरिजीत सिंह को गीत के बोल प्रिया सरैया के और संगीत सचिन जिगर का।

0: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। चर्चा का विषय है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।
1: चर्चा का विषय है।
2: सीमाएं सिर्फ नक्शों पर खींची गई रेखाएं नहीं होती, ये किसी देश की पहचान होती हैं, उसकी सुरक्षा, उसकी संस्कृति और उसके भविष्य की सबसे मजबूत दीवार होती हैं। लेकिन जब इन्हीं सीमाओं को पार कर अवैध घुसपैठ देश के भीतर प्रवेश करती है तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं रह जाता, सवाल उठता है जनसंख्या संतुलन का, सामाजिक ढांचे का, रोजगार, संसाधनों और राष्ट्रीय पहचान का। क्या बदलती जनसंख्या तस्वीर भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को प्रभावित कर रही है? क्या सीमाओं से शुरू होने वाली ये चुनौती अब शहरों और गांवों तक पहुंच चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले वर्षों में ये भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए गंभीर संकट भी बन सकती है? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है में। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। हमारा आज का विषय है जनसंख्या परिवर्तन का सामाजिक आर्थिक ढांचे पर प्रभाव। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर और सीमा सुरक्षा की चुनौतियों को बेहद करीब से देखने वाले पूर्व बीएसएफ प्रमुख और असम के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी नमस्कार।
4: नमस्कार
2: प्रकाश जी। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय भारत के सामने है वो दूसरे देशों से आए लोग हैं। दो तरह के लोग हैं, एक शरणार्थी हैं और दूसरे घुसपैठिए हैं। इसको लेकर जो हमारे बॉर्डर स्टेट हैं वहां पर कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है, क्या लगता है? चूंकि आप खुद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख रह चुके हैं, असम एक ऐसे राज्य के आप डीजीपी थे जहां पर इस तरह की बहुत बड़ी समस्या है, कैसे देखते हैं आप इसे भारत के नजरिए से?
4: देखिए, भारत के नजरिए से तो बहुत साफ है और अलग अलग समय पे बड़े बड़े हस्तियों ने इस विषय पे रोशनी डाली है कि ये देश की सामाजिक ढांचे के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, तीनों ही दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठिए जो है आज से नहीं, ये स्वतंत्रता के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से ही शुरू हो गया था। पर यह है कि इसकी प्रक्रिया अगर हम 1971 के बाद देखें, 1971 में बांग्लादेश बन गया तो उसके पहले जो कुछ उत्पीड़न हुआ था पाकिस्तान आर्मी द्वारा, उस समय आप जानते हैं लाखों की तादाद में बांग्लादेशी आए थे और यहाँ पे उन्होंने शरण ली थी। बाद में बहुतों को वापस भेजा गया, कुछ गए, शायद कुछ नहीं भी गए होंगे। परंतु 1971 के बाद भी ये समस्या ऐसा नहीं है कि इसका समाधान हो गया। हम लोग ये समझते थे कि अब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया और भारत के सहयोग से हुआ है तो अब हिंदू वहां पे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे, मुस्लिम तो वहां पे रहेंगे ही। परंतु बहुत सारे कारण ऐसे हुए जिसकी वजह से ये

0: घुसपैठ की समस्या बराबर बनी रही। सबसे बड़ा कारण जो था आर्थिक था। वो बांग्लादेश तो बन गया पर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो इतनी बड़ी जनसंख्या को सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके, सबको रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके। नतीजा ये हुआ कि आर्थिक कारणों से बहुत भारी संख्या में 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद भी यहाँ पलायन होता रहा, लोग आते रहे सीमा पार से और जितने बॉर्डरिंग स्टेट से वहां पे बढ़ते गए। इस समस्या से सारी सरकारें अवगत थी। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के बाद 4 टास्क फोर्सेस बनी थी बॉर्डर की समस्या देखने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी की, डिफेंस की, इंटेलिजेंस की, और चारों टास्क फोर्स बड़े हाई पावर्ड बॉडीज थी। इसमें एक बॉर्डर मैनेजमेंट वाली जो बॉडी थी वो माधव गोडबोले उसका नेतृत्व कर रहे थे, जो भारत सरकार के गृह सचिव थे और बड़े योग्य आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो अगस्त 2000 में प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में ये लिखा कि हर वर्ष करीब 3 लाख बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और इस समय वर्तमान में यानी 2000 में उनकी संख्या 1 करोड़ 50 लाख है। ये 2000 की बात है, उसके बाद भी बढ़ता ही रहा होगा। आज की तारीख में 3 करोड़ हो गया हो, 3.5 करोड़ हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता। अलग अलग समय पे भारत सरकार ने इसका अलग अलग एस्टिमेट दिया है। 2001 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने चारों टास्क फोर्सेज के रिपोर्ट को इवेल्युएट किया था, उसका आकलन किया था और इन्होंने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठियों को होना देश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर बाद में आ जाइए 2005 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया, सोनोवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था एक 2005 में। उसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज ए डेमोग्राफिक एग्रेशन और एक्सटर्नल एग्रेशन में इसको उन्होंने क्लासिफाई किया था, ये एक्सटर्नल एग्रेशन है ऑन इंडिया, और कहा था इसके लिए भारत की संप्रभुता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये समस्या आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। और अगर आप और पहले जाना चाहें तो 1998 में जब जनरल सिन्हा आसाम के राज्यपाल थे तो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 8 नवंबर 1998 में एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें लिखा था कि असम में जो घुसपैठ हो रही है उससे जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहे हैं, हो सकता है कि कालांतर में मतलब बहुत कुछ वर्षों बाद बांग्लादेश ये मांग करे कि असम के जो सीमावर्ती मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश हैं इन्हें बांग्लादेश में मिला दिया जाए क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो ये तो स्थिति है, ये आज से नहीं, कम से कम 1998 से बराबर चेतावनी हमको मिल रही है। अब 26-27 साल हो गए हैं। वर्तमान सरकार को इस बात का श्रेय तो हम देंगे कि इन्होंने इस समस्या की नोटिस ली है और मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में कहा है कि एक डेमोग्राफिक कमीशन बनाएंगे, तो इस समस्या को गंभीरता से उसको स्टडी करके अपने रिकमेंडेशन देगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई अवसरों पर कहा है कि घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
2: जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी हाँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और अब न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवेलकर सेवानिवृत्त समिति के अध्यक्ष होंगे। जनगणना आयुक्त के अतिरिक्त 3 विशिष्ट विशेषज्ञ श्री दुर्गा शंकर मिश्रा सेवानिवृत्त IAS, श्री बालाजी श्रीवास्तव सेवानिवृत्त IPS और डॉक्टर शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी समिति के सदस्य सचिव होंगे। ये समिति 1 वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आवश्यकता पड़ने पर गृह मंत्रालय समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त 2025 को घोषणा की थी उच्च स्तरीय कमेटी की, अब उसका गठन हो गया है और घुसपैठियों के बुरे दिन की शुरुआत भी इसी के साथ हो गई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना।

0: आज मैं बड़ी शांति से निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए।
1: प्रफुल्ल जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि सीमावर्ती जिलों और देश के कुछ चुनिंदा महानगरों में अचानक आई इस जनसांख्यिकी बदलाव के संकेत जो मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को ये प्रभावित कर रहा है?
2: जी निश्चित, वैसे तो ये अचानक नहीं आया है, लेकिन समस्या के रूप में अचानक उसको अभी देखा जा रहा है। जैसे हमने हाल ही में देखा, नोएडा में अचानक से एक इरप्शन हुआ मूवमेंट के रूप में, और बहुत सारे सोसाइटीज में, क्रिमिनल एक्टिविटीज में जब भी नाम आता था तो शुरू में इसके बारे में चर्चा जरूर होती थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता था। हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, अभी IMDT एक्ट 1983 में बना, उस एक्ट का नाम ही था इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल। इसका मतलब पहली बार तो समस्या उस समय से शुरू कम से कम मानी गई कि इलीगल माइग्रेंट्स है। अब इसमें दो तरीके के अलग अलग थे, एक जो 1971 से पहले या 1971 के बाद, फिर 1990 के दशक में भी, 92 के बाद खास करके अयोध्या के आंदोलन के रिएक्शन में वहां पे जो मंदिर गिरा गए, और केवल हिंदू ही नहीं, हिंदू बुद्धिस्ट वहां की सो कॉल्ड जिनको हम माइनॉरिटीज बांग्लादेश के संदर्भ में कह सकते हैं, ऐसे लोग भारत में उनको शरण लेनी पड़ी, जिनके लिए CAA जैसा प्रावधान करना पड़ा। लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसने इलीगल इमिग्रेंट्स की या इलीगल माइग्रेशन की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इसके आधार पर खड़ी कर दी। प्रकाश सिंह जी ने जैसे बताया, कुछ कारण तो पर्यावरणीय, कुछ कारण आर्थिक भी रहे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, आप यदि इंटरनेशनल इंडेक्स निकाल लो तो बहुत सारे पैरामीटर्स में असम के सीमावर्ती जिले या बंगाल के सीमावर्ती जिले उनकी तुलना में बांग्लादेश की इकोनॉमी उस समय बहुत अच्छा कर रही थी। तो ऐसे में उनको क्या माइग्रेट होने की जरूरत पड़ी? मुझे लगता है कि इसके पीछे आर्थिक और पर्यावरणीय एनवायरमेंटल कारणों की वजह से, क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे हैं बांग्लादेश के जहां पे बाढ़ की स्थिति आती है और वहां से माइग्रेशन होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक सोची समझी राजनीति थी, एक सोची समझी रणनीति भी थी। काउंटरफिट करेंसी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, जब कालियाचक की पुलिस चौकी को जलाया गया था बंगाल में, तो उस समय उजागर हुआ था, ये साफ साफ दिखाता है। या इलीगल जो आर्म्स का ट्रेडिंग है उसका एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग का ये एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है, यही रास्ता है जहां म्यांमार से बांग्लादेश में गए हुए रोहिंग्या रेफ्यूजीज भी सीधे आकर उसी रूट से कोई जम्मू कश्मीर तक, कोई हैदराबाद तक पहुंच गया। वो यदि रेफ्यूजी थे तो वो वहीं पे शरण ले सकते थे, उनको जम्मू कश्मीर तक जाने की क्या जरूरत थी, किसने पहुंचने के लिए उनको मदद की? उनके कार्ड्स भी बन जाते थे वहां, बॉर्डर क्रॉस करने से पहले उनको सारे आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स बनाने की प्रक्रिया एक चलाने का प्रयास शुरू हुआ, और उसके बहुत सारे नेटवर्क भी भारत के अन्य शहरों से एक्सपोज हुए। क्या हुआ दुर्भाग्य से, 1980 के बाद, मुझे याद है उस समय ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पार्लियामेंट में था 2005 में शायद, और उस समय वो लेफ्ट गवर्नमेंट को और बुद्धदेव भट्टाचार्य को घेर रही थी, और उस समय वो पूछ रही थी कि कब तक इन इलीगल माइग्रेंट्स को वोट बैंक बनाकर अपने लिए पोसोगे। दुर्भाग्य से वही ममता बनर्जी बाद में वही नीति आगे बढ़ाने लगी, तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है, वहां की सांस्कृतिक स्थिति खराब होती है, वहां के रिसोर्सेस पर अतिरिक्त भार पैदा होता है, और ये इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा भी मिलता है। तो एक समग्र दृष्टि से आंकड़े अलग अलग होंगे, क्वेश्चन ये है कि पहली बात किस कारण से इसको बढ़ावा मिला, दूसरा उसको रोकने की, तीसरा जो भारत में आ गए हैं उनको आइडेंटिफाई करने की। तो डिटेक्शन इज द फर्स्ट स्टेज, एक्सेप्टेंस एंड डिटेंशन जब तक डिटेक्ट नहीं होंगे उसके बाद तो बाकी सारी प्रोसेस आएंगी कि उनको वोटर्स लिस्ट से डिलीट करना है या डिपोर्ट करना है, ये तो बाद की स्टेज है। उनको वर्क परमिट्स भी दिए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम आइडेंटिफाइड हो कि विदेशी मूल का नागरिक है, बिना पासपोर्ट के आया है, और हमारे पास उसका एक ठोस डेटा है, और पूरे विश्व भर में ये होता है, उसमें भारत को अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमने यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये दो अलग अलग बॉर्डर्स पार्टीशन के बाद एक्सेप्ट किए हैं, तो वैश्विक नियमों के अनुसार उनको भारत में आना है तो वीजा लेकर ही आना चाहिए, लीगल तरीके से ही आना चाहिए, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन उसका रास्ता नहीं हो सकता। तो इसके नेटवर्क को डिसमेंटल करना, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भी एक महत्वपूर्ण विषय है, और मुझे लगता है आने वाले

0: समय में ये जो समिति बनी है वो उस दिशा में 1 साल के अंदर समग्र रिपोर्ट भी देगी और इसके आधार पर नीति भी बनेगी।
1: जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि शरणार्थी और घुसपैठियों को अलग अलग तरह से देखना चाहिए, क्योंकि दोनों के साथ अलग तरह की चुनौतियां हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों को एक पेज पर रखकर नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे संविधान को जानते हैं, जो हमारे इतिहास को जानते हैं, हमारे देश की राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, उन्होंने कम से कम ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है, घुसपैठ कर आते हो, अलग अलग उद्देश्यों से आते हो तो आपको जरूर घुसपैठ का लेबल लगेगा और वो लगाना चाहिए शासन में। फिर कुछ लोग दलील करते हैं कि अगर वो भारत में ही रहना चाहते हैं तो हम क्यों सीमित करते हैं। कुछ सीमित नहीं करते हैं, इसके लिए भी कानून है। किसी भी धर्म का व्यक्ति एप्लीकेशन करे और एप्लीकेशन करके वैध तरीके से पासपोर्ट लेकर वीजा लेकर आए, हम उनके क्रेडेंशियल देखकर उनको नागरिकता देंगे। ये रास्ता खुला ही है, मगर आप अवैध तरीके से घुसपैठ करोगे तो सीमाएं पोरस नहीं हो सकती, सीमाओं से घुसपैठ नहीं होनी चाहिए और उनको संभालना भी चाहिए।
1: प्रकाश जी, चूंकि इन चुनौतियों को आपने काफी करीब से देखा है और अक्सर देखा जाता है कि सीमा पार करने के बाद जो घुसपैठिए हैं वो स्थानीय आबादी में घुल मिल जाते हैं, सुरक्षा बलों और स्थानीय राज्य पुलिस या खुफिया एजेंसियों के बीच जो तालमेल है उसको आप कैसे देखते हैं इस समस्या के निराकरण में?
3: देखिए, ये तालमेल तो बहुत जरूरी है, पर मेरा अपना अनुभव यह है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज है अगर वो डिटरमिंड है तो इसका बहुत तरह से उपाय है। मैंने एज आईजी बीएसएफ पंजाब कुछ ऐसा काम किया है, इसको 25 साल तक तो उसको गोपनीय रखा मैंने, उसके बाद उसकी किताब में मैंने खोल कर रख दिया। बहुत सारे भारी बांग्लादेशी जो थे, भारी मुसलमान बांग्लादेश से चलते थे और वो पंजाब में आ जाते थे और पंजाब में गुरुद्वारों में लंगर खाते थे, फिर जब उनको मौका मिला तो बॉर्डर पार करते थे। अब मेरे जाने के पहले बीएसएफ क्या करती थी, उसको बॉर्डर पे रोकती थी, उनको पंजाब पुलिस को हैंडओवर करती थी, पंजाब पुलिस 2-4 दिन रखते थे, उसके बाद कहते थे हम आतंकवाद से लड़ें कि इनको कलकत्ते पहुंचाएं, ये छोड़ दो इनको, फिर थोड़े दिन बाद फिर वो वापस जा रहे हैं। तो मैंने अपने जिम्मेदारी पे बिना किसी होम मिनिस्ट्री के सैंक्शन के चिदम्बरम साहब से जब मैंने पूछा तो उनका, यू विल बी डूइंग दिस एट योर ओन रिस्क, आई कैन नॉट परमिट दैट ऑफिशियली। मैंने अपने कहा जितने लोग हैं इनको अपने बीएसएफ के कैंप्स में रात भर रखो और जब अंधेरी रात हो तो इनको सीमा से पार से इनको पाकिस्तान भेज दो। मैंने कम से कम 25-30 हजार आदमी तो भेज दिए। इसका उपाय हर आदमी अपने लेवल पे काम कर सकता है। मैंने पर इसका ढिंढोरा नहीं पीटा, कोई इनाम नहीं मांगा, इसका ढोल नहीं बजाया, चुपचाप ये काम हो गया। फिर 25 साल बाद मैंने कहा कि मैंने इस तरह का काम मैंने किया था। पर यह है कि अभी भी इस समस्या का देखिए कुछ निदान हमें ढूंढना पड़ेगा। कुछ सुझाव तो गोडबोले साहब ने अपने कमेटी की रिपोर्ट में दे रखा है, मैं कहूंगा कि उस रिपोर्ट को फिर से अध्ययन किया जाए सरकार द्वारा, और जिन समस्याओं के लिए डेमोग्राफी कमीशन बन रहा है उन समस्याओं पे गोडबोले साहब ने बहुत गहन चिंतन किया है। इसके अलावा देखिए, अभी जैसे प्रफुल्ल जी ने कहा उनको हमें डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करके उसके बाद उनको डिपोर्ट करना है। अब डिपोर्टेशन में दिक्कत आ सकती है, बांग्लादेश उसको नहीं मानेगा तो उसका क्या करना होगा ये हमें बाद में देखेंगे। पर अगर मान लीजिए एक संख्या कोई आपने रखी है, जो होल्डिंग सेंटर्स बनाए हैं उनको कहिए कि भाई अगर तुम हिंदुस्तान में रहना है तो हम तुम्हें रहने देंगे, पर तुम्हें अपना सिटीजनशिप कार्ड या आधार कार्ड तो सरेंडर करना पड़ेगा और तुम्हें एक बांग्लादेश का एक कार्ड दिया जाएगा कि तुम बांग्लादेश के नागरिक हो, इस देश में तुम्हें 2 साल रहने की और काम करने की इजाजत दी जाती है, 2 साल बाद फिर हम इसको रिव्यू करेंगे कि तुम्हारा क्या किया जाए। और पर इन आदमियों को जिनको ये बांग्लादेश का कार्ड दिया जाता है, ये हमारे आई कार्ड से रंग में फर्क होना चाहिए, केवल कार्ड को देखकर ही मालूम हो जाए कि ये बांग्लादेश का ये आदमी, और इस आदमी को 2 कंडीशन होनी चाहिए कि तुम हिंदुस्तान में रह सकते हो और अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हो, परंतु तुम वोट नहीं दे सकते और कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते। ये 2 कंडीशन उस पर इम्पोज की जाए और उसको सख्ती से लागू किया जाए कि मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीदोगे और तुम्हारा नाम इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं होगा। तो इसपे हमें थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन भी रखना पड़ेगा और कालांतर में मैं कहता हूं कि इस पे हमें बांग्लादेश से सख्ती से कहना पड़ेगा, देखिए आपके अभी भी हमारे पास 2.5 करोड़ 2 करोड़ जितना भारत सरकार का आकलन हो इतने आदमी है, या तो आप इन्हें वापस लीजिए या इसके बदले में हमें जमीन दीजिए, और वो जमीन हम मांगे ठीक चिकन नेक के अगल बगल रंगपुर डिवीजन में मांगे, हमारा चिकन नेक की समस्या भी हल हो जाएगी और इन आदमियों को हम वहां बसाएं या जहां भी बसाएं, पर हम कहीं इतने आदमियों को रहने के लिए इतने वर्ग फुट हमें जमीन चाहिए, इतनी जमीन आपको देना पड़ेगा, सख्ती तो करनी पड़ेगी, या तो इनको वापस लो, तो एक स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा हमें और उसकी भी शायद नौबत कालांतर में आएगी। पर यह है कि इस समस्या का हमें निदान ढूंढना है, वरना ये तो हमारे ऊपर बोझ है आज की तारीख में।
1: जी प्रफुल सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो अवैध रूप से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जब स्थानीय श्रम बाजार यानी लेबर मार्केट में शामिल होते हैं तो रोजगार, सब्सिडी, राशन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सीमित सरकारी संसाधनों पर इस

0: का जो असर पड़ रहा है वो एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए चुनौती है, और वो कितनी गंभीर समस्या बनते जा रही है भारत जैसे देश में जहां की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है।
1: देखिए, आज की भाषा में जैसे कहा जाता है कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, और डेमोग्राफी इज डेस्टिनी ये मोर रिलेवेंट हो जाता है जब आपकी डेमोक्रेसी हो, क्योंकि उस डेमोक्रेसी में आपको सरकार चुनने का भी अधिकार मिल जाता है और उस सरकार से दिए हुए योजनाओं का लाभ लेने का भी। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले और एक बिंदु मैं श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं।
0: जी,
1: 1983 में जो IMDT एक्ट बना, जनरल सिन्हा की रिपोर्ट में उस पर बहुत डिटेल में ये दिया था, और वेंकैया नायडू उस समय मंत्री थे, मुझे स्मरण है, शायद ठीक बता रहा हूं, तो उन्होंने पार्लियामेंट में उसको लेकर स्टेटमेंट भी दिया था, गोडबोले कमेटी ने भी उसका रेफरेंस लिया था। IMDT एक्ट ने एक बहुत बड़ा लूपहोल था। IMDT एक्ट में जो इलीगल व्यक्ति जो आया है वहां से, उसको अपनी नागरिकता प्रूव करने का कोई भी बंधन नहीं था। जो कंप्लेन उसके विरोध में करेगा कि ये बाहर से आया हुआ है और ये भारत का नागरिक नहीं है, उस पर ओनस था कि वो ये प्रूव करे कि ये भारत का नहीं है। और ऐसे में भारत में स्वाभाविक रूप से मानसिकता होती है, और इसने भारत में एक कॉम्पिटिटिव वोट बैंक पॉलिटिक्स को जन्म दिया। शायद मुझे पता नहीं है, जानबूझकर रखा गया था उस समय का, उसका क्या लॉजिक था, क्या कारण थे, लेकिन इसने इस समस्या को बढ़ाया। अब आपने जो पूछा कि सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो खाद्यान्न से जुड़ी हुई हो या अन्य योजनाओं का लाभ हो, इन सबके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन होता है, जिसका हक ये मारते हैं? भारत का जो गरीब तबका है, उसके अधिकारों का, उनके रिसोर्सेस का एक तरीके से ये इलीगल माइग्रेंट जो है, जो रोजगार के नाम पर या अन्य किसी नाम पर आते हैं, मैं नहीं मानता रोजगार पर, भारत के लोग नहीं जाते क्या रोजगार के लिए बाहर? लेकिन क्या वो इलीगल बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं? बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं तो भी भारत उनको स्वीकार करता है। ऐसी कुछ घटनाएं बाहर के देशों में हुई तो हमने कहा कि भाई हम उनको कोई भारत बढ़ावा नहीं देता है। तो हमको वही नीति हमारे पड़ोसी देशों के बारे में या भारत और नेपाल के बीच में, बहुत सारे लोग आते जाते हैं लेकिन उसके लिए भी एक प्रावधान बना हुआ है, एक आई कार्ड दिखाकर वो आते हैं, वर्क परमिट के नाते यहाँ पे रहते भी है। तो मुझे लगता है इसका जो परिणाम होता है वो स्थानिक संसाधनों पर होता है, सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के कारण होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर होता है, और खास करके असम में जो समस्या आई, स्थानिक संस्कृति, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जंगलों के, और अभी पूर्वोत्तर के बहुत राज्यों में ये आ रहा है, जहां पे भारत के सामान्य व्यक्ति को भी जाने के लिए एक परमिट लेना पड़ता है, इनर लाइन परमिट जिसको कहते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पर आकर बैठ गए हैं, वहां के जंगल संसाधनों का नुकसान कर रहे हैं। तो ये हमारा मल्टीपल रिसोर्सेस का एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन भी है, उन पर स्ट्रेन भी है। तो मुझे लगता है कि ये भी डायमेंशन हमको, जब हम रिलीजियस इम्बैलेंस तो है ही, वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है जिसके कारण समाज में एक तनाव पैदा होता है, लेकिन सांस्कृतिक और आर्थिक साधनों के आधार पर भी ये घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या सीमावर्ती क्षेत्र में बनी हुई है, जिसके कारण इस समिति का गठन करना पड़ा है।
0: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भी कहा है कि बाहर से आए हुए लोग देश की समस्या के साथ साथ असम के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आई थिंक चैलेंज हैज बिकम मोर ग्रेव, द डेमोग्राफिक पैटर्न इज चेंजिंग फास्ट। टुडे ऑलमोस्ट 40% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन विल बी फ्रॉम दोज हु हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। Legalities apart, today Assamese is marginalized in our own land, our culture is marginalized in our own land, economy is fast shifting to those people who were never associated with our culture and with our history. So the challenge continue, but one good thing is that there is a collective spirit today to face the challenge, and I am sure that our new generation will fight, will keep on fighting. And God will bless us, we'll survive.
0: प्रफुल जी, आप बहुत समय से भारत के अलग अलग विषयों पर पैनी नजर रखते हैं। ये जो समिति बनी है और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से इसकी घोषणा की थी, क्या लगता है कि इस समिति के बनने से क्या कुछ बदलने वाला है निकट भविष्य में?
1: देखिए, मुझे इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव लग रहा है बंगाल की चुनाव के बाद, मुझे लगता है एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन से भी ज्यादा इसमें अलग अलग स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन की बड़ी समस्या रहती थी। बांग्लादेश से एंटर कर रहे हैं असम में जा रहे हैं, असम से एंटर कर रहे हैं बिहार तक पहुंच रहे हैं या

0: झारखंड तक पहुंच रहे, और ऐसे में फिर एक राज्य दूसरे राज्य पर ये चीज झकेल देता था कि ये तो हमारी समस्या नहीं है, ये तो आपको रोकना है, और फिर ये वहां का राज्य ये केंद्र पर कि ये तो आपको बीएसएफ के लेवल पर हैंडल करना चाहिए, लेकिन बॉर्डर की जो लैंड है वो पोरस रखेंगे, उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे बीएसएफ को। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स सिनारियो था। आज अभी राजनीतिक स्तर पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री ये निर्णय ले पाए, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण आज ये है कि इस सीमावर्ती क्षेत्र में झारखंड छोड़कर लगभग सारे हिस्सों में सत्ताधारी दल एक ही है, और या वो एनडीए का हिस्सा है या भाजपा से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में ये समन्वय ऐसे ही हुआ था। नक्सलवादी समस्या के बारे में तुरंत बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते थे, और फिर छत्तीसगढ़ का ये कहता था, नहीं मध्य प्रदेश की समस्या है, मध्य प्रदेश वाला कहता था तो उसने क्राइम तो हमारे यहाँ पे नहीं किया है, वो तो महाराष्ट्र भाग गया है। तो ऐसे में पहली मीटिंग जब की थी गृहमंत्री, मुझे याद है चारों राज्यों के गृहमंत्री और डीजीपी को लेकर मीटिंग की थी। अब ये समन्वय संभव हो पाएगा, केंद्र सरकार ने जब ये समिति बनाई है तो मुझे लगता है समिति एक तो इसका समग्रता से अध्ययन करेगी, पिछले रिपोर्ट्स के आधार पर इसका एक जिसको हम कह सकते हैं एक क्लियर पिक्चर इसके कारण सामने आएगा। दूसरा मुझे लगता है कि इसके समस्या के निराकरण के लिए भी नीतिगत सीधा सीधा एक मुझे लगता है कि क्लियर कट पिक्चर सरकार के सामने भी आएगा कि नीतिगत विषय में इसको आगे कैसे बढ़ाना है, और समन्वय के नाते कौन कौन सी एजेंसी इसकी क्या क्या भूमिका रहेगी, ये भी स्पष्टता इस समिति के गठन के कारण आने की संभावना है। तो आने वाले जैसे शब्द तीन चले, डिटेक्ट डिलीट एंड डिपोर्ट, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम डिटेक्शन और आने वाले कालखंड में इसको फिर से और आगे ना बढ़े, ये इलीगल माइग्रेशन ना बढ़े, जो है उनको डिटेक्ट करके क्या करना है वो तो है ही, लेकिन वो ना बढ़े इसके लिए क्या हो, इसके लिए निश्चित रूप से हमको एक नीतिगत दिशा मिलने की संभावना इस समिति से बनेगी, यह मेरा विश्वास है।
1: जी हाँ बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल अगर होगा तो इस चुनौती से पार पाया जा सकता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित कर, कलेक्टर को सूचित करें, एसपी को सूचित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें।
1: प्रकाश जी, एक और सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि 2014 के बाद इस समस्या को लेकर वर्तमान केंद्र सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की हैं और उसी दिशा में इस समिति का गठन भी है, कैसे देखते हैं पिछले 12 वर्षों के मौजूदा सरकार के प्रयासों को घुसपैठियों और ये जो डेमोग्राफिकल चेंज है इससे पार पाने की दिशा में?
3: देखिये, समस्या की गंभीरता को समझा गया है, उसको स्वीकारा गया है और उसके निदान के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, ये तो यहाँ तक तो सार्थक है। अब हमें अपनी लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी से ये काम लेना पड़ेगा, और ये काम मतलब वर्तमान सरकार लेने में सक्षम है। उन्होंने नक्सलियों को कहा कि हम मार्च 2026 तक खत्म कर दें, उन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस समस्या के लिए भी उनको कुछ टारगेट रखना पड़ेगा और इसकी मंथली ईयरली या क्वार्टरली कुछ इसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। हम पहले ये एस्टिमेट बनाए कि हर स्टेट में कितने कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उसके बाद हर स्टेट में कहें कि इस महीने में आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, इनको कितने को डिटेक्ट किया, कितने होल्डिंग सेंटर में है, किनको डिपोर्ट करने के लिए क्या कार्रवाई की, इसका रेगुलर मॉनिटरिंग होनी पड़ेगी। इसमें सख्ती बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार करने में सक्षम है, इन्होंने नक्सल समस्या पे विजय पा ली है, तो इस समस्या का भी ये समाधान प्रभावी ढंग से ढूंढ सकते हैं, इसके लिए सख्ती करनी पड़ेगी और मैं समझता हूँ कि सरकार ये सख्ती कर सकती है।
1: प्रफुल्ल जी, कार्यक्रम के अंत में एक और सवाल बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया और फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क, आपको क्या लगता है ये घुसपैठ को बढ़ाने में कितनी भूमिका निभा रहे हैं?
0: देखिये, मैंने जैसे पहले कहा कि इसकी जुड़ी हुई एक इकोनॉमी है, ये केवल फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क नहीं है, ये फेक करेंसी नेटवर्क है, ये ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, इसमें आर्म्स के ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है और एक क्रिमिनल सिंडिकेट के रूप में ये काम करता है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से जिम्मेदार है, और आज के जमाने में सोशल मीडिया इसको एम्पलीफाई करता है ह्यूमैनिटेरियन के नाम पर। जैसे ही ऐसी कुछ केसेस होती है, डिपोर्टेशन के लिए कुछ बात बढ़ती है, तो सोशल मीडिया में एक्टिविज्म चलता है, राजनीतिक कारण

0: से भी चलता है, कुछ धार्मिक कारणों से भी चलता है, कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरसीज के द्वारा भी चलता है। तो ऐसे में एक बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी देश के लिए किसी भी इलीगल माइग्रेंट्स के विरोध में सख्त कदम लेना। और आज जब टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग एक अच्छा उपयोग हो सकता है गवर्नेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे सीसीटीवी कैमरे के रूप में, चाहे सेंसर्स के रूप में, हम बहुत सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सिंडिकेट्स डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि जब अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज के बारे में सोचा जाएगा तो इसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मीडिया एक्टिविज्म के एस्पेक्ट्स और अन्य जो इससे जुड़े हुए सिंडिकेट और क्रिमिनल एस्पेक्ट्स है, इस पर भी मुझे लगता है ये समिति सोचेगी भी और उस पर कुछ उपाय योजना भी सरकार को बताएगी।
1: सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ जवानों की जिम्मेदारी नहीं होती, ये पूरे राष्ट्र की सामूहिक चेतना का विषय है। जनसंख्या परिवर्तन और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे केवल आंकड़ों की बहस नहीं है, इनका सीधा संबंध देश की सामाजिक स्थिरता, आर्थिक संसाधनों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से है। आज की चर्चा ने यह साफ कर दिया है कि चुनौती केवल सीमा पार से आने वालों की नहीं बल्कि उस सोच की भी है जो राष्ट्रीय हित से ऊपर व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ को रख देती है। जरूरत है सजग नीति की, मजबूत सीमा प्रबंधन की और सबसे बढ़कर जागरूक समाज की। प्रफुल्ल केतकर जी आपका, प्रकाश सिंह जी आपका, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है।
4: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

सुरमा फिल्म में अभी आप दिलजीत दोसांझ और तापसी पन्नू को सुन रहे थे। गीत के बोल गुलजार के थे और संगीत था शंकर एहसान लॉय का। लीजिए अब सुनिए आतिफ असलम और चिन्मय श्रीपदा को, फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो में। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत प्रीतम का।

लीजिए अब सुनिए राहत फतेह अली खान और असीस कौर को फिल्म सिम्बा में, गीत के बोल रश्मि विराग के और संगीत तनिष्क बागची का।

लीजिए अब सुनिए फिल्म हसी तो फसी में सनम पुरी और श्रेया गोयल को, गीत के बोल कुमार के और संगीत विशाल शेखर का।

लीजिए अब सुनिए फिल्म बरेली की बर्फी में आयुष्मान खुराना को गीत के बोल आरको के।

फिल्म गोल्ड में अभी आप यासर देसाई को सुन रहे थे। गीत के बोल और संगीत आर्को का था। लीजिए अब सुनिए फिल्म बरेली की बर्फी में आर्को का लिखा गीत आर्को की आवाज में।

चित्रपट संगीत के आखिर में लीजिए सुनिए फिल्म परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण में यासर देसाई और जीत गांगुली को, गीत के बोल रश्मि विराग के और संगीत जीत गांगुली का।

फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी का, ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग मारवा, तबला संगति आनंद गोपाल बंदोपाध्याय की।

0: अभी आप पंडित हरि प्रसाद चौसर अभी आप पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग मारवा सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को है, हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपये लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
1: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उज जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।